मेहनत करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में भी हमें उतना उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे यही एक चीज़ की गुजारिश करूंगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अगर आप योग को अपनाएंगे तो आपको पैसे की बचत के साथ साथ समय की बचत तो होगी और आपको स्वस्थ शरीर भी पूर्ण रूप से लाभ होगा। मोटापे को दूर करने के साथ साथ यह आपके पेट के से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को, विशेषतः कब्ज में भी यह लाभप्रद है। आइए दोस्तों, अब मैं इसकी सावधानी आपको बता दूं। यह प्राणायाम का अभ्यास स्वच्छ व साफ वातावरण में दरी, चटाई या चादर बिछाकर करना चाहिए। यदि पेट संबंधी किसी भी प्रकार का कोई गंभीर रोग हो तो यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। मैं गर्ल्स के लिए बता दूं, स्पेशली गर्ल्स वुमेन्स के लिए, कि कोई भी प्राणायाम जब हम पीरियड्स में होंगे तो यह प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि उस समय अग्निसार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार, भ्रामरी, भस्त्रिका, यह प्राणायाम मुख्यतः हमारे पेट से संबंधित प्राणायाम है, जिसमें दबाव हमारा सीधा और सीधा इंटरनल ही पड़ेगा। इस वजह से पीरियड्स के दौरान मैं बार बार अपनी सीरीज में ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, ये सारे प्राणायाम जो हैं, एक्सरसाइज हैं, वो पीरियड के दौरान नहीं करेंगी और गर्भावस्था में भी ये प्राणायाम नहीं करने हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हैं जिनकी सीरीज में अलग से आपको फिर से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्राणायाम हैं जो गर्भावस्था में होने चाहिए और जो नहीं होने चाहिए। अग्निसार प्राणायाम पूर्णता करने पर, जैसा कि मैं पहले भी आपसे इस बात के लिए बता चुकी हूँ, प्राणायाम पूर्णता पर दोनों हाथों की हथेलों में घर्षण करके आँखों पे व चेहरे पर लगाते हुए आँखों को बंद करके पूर्णता प्राणायाम की स्थिति में जाते हुए लंबी

नमस्कार, सुप्रभात प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी सुबह की पहली किरण, जहां हर शब्द में शांति है, हर भाव में विश्वास है। आज की पहली किरण समर्पित है उस प्रकाश को जो युगों से अंधकार को दूर करता आया है, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म का जीवंत स्वरूप, प्रभु श्री राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, राम एक विचार थे, राम एक मार्ग थे और वो आज भी हैं, हम सभी के मन में, हम सभी के आदर्श के रूप में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आज हम बात करेंगे श्री राम प्रभु को सबसे ज्यादा जिसके लिए लोकप्रियता मिली, जी हाँ, और उनको एक और उपाधि मिली, वो थी मर्यादित होने की, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसका अर्थ है वह पुरुष जो पुरुषों में आदर्श स्वरूप हो, जिन्हें धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के लिए उच्चतम मानदंडों का पालन करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अर्थ है वो आदर्श पुरुष जिन्होंने धर्म, सत्य, सदाचार और मर्यादा के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए जीवन जिया और एक श्रेष्ठ शासक, पुत्र, भाई, पति और मनुष्य के रूप में हर किसी के लिए एक आदर्श स्थापित किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है मर्यादाओं के पालन में सर्वश्रेष्ठ। मर्यादा का अर्थ है सीमा, नियम, कर्तव्य, धर्म और गौरव के साथ सदाचार। पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या पुरुषों में उत्तम। अब आइए जानते हैं कि आखिर में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों गया? क्योंकि इन्होंने वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा, राजपाट, परिवार और सुख का त्याग किया। इन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए शासन किया, जिससे रामराज का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इन्होंने एक आदर्श पति, पुत्र और भाई के रूप में सभी रिश्तों को निभाया, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त करके सभी सद्गुणों से युक्त अपना जीवन यापन किया। संक्षेप में कहूं तो श्री राम ने अपने आचरण और जीवन शैली से मानवता के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और आदर्श बना सकता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हम सभी के हृदय में वास करते हैं, श्री राम प्रभु।

मर्यादित होने के कई सारे गुण हैं, जिसमें एक गुण ये भी है कि प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के उपरांत भी उन्होंने एकमात्र धर्म पत्नी यानी माता सीता का सदैव अनुसरण किया, जिनसे विवाह उन्होंने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर किया था। हालांकि कुछ कम प्रचलित कथाओं जैसे जैन रामायण में उनका उल्लेख अन्य पत्नियों के साथ भी मिलता है, पर मूल वाल्मीकि रामायण और धार्मिक मान्यता के अनुसार वे सीता के प्रति निष्ठावान रहे और उनका जीवन एक पत्नी व्रता का प्रतीक है जिसमें अन्य रानियों का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम की एकमात्र पत्नी देवी सीता थी जो राजा जनक की पुत्री थी, जो की आदर्श पत्नी और धर्म पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और जैन रामायण जैसे ग्रंथ में राम के कई विवाह जैसे उत्तरा, वरुणी और लक्ष्मी के साथ बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा यानी एका पत्नी व्रता का पालन किया और उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जहाँ वे केवल सीता के प्रति समर्पित थे। तो आइए हम भी अनुसरण करते हैं सियावर रामचंद्र का।

यूं तो श्री राम के बहुत सारे गुण हैं, पर श्री रामचंद्र की खासियत उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, आदर्शवादी व्यवहार, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता में निहित है, जिन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में हर रिश्ते में अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपने शांत, सौम्य और तेजस्वी चरित्र के कारण चंद्र कहलाए, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है।

अब मैं चर्चा करना चाहूंगी श्री राम प्रभु के उन गुणों के बारे में जो आज भी अनुसरण किए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रचलित गुण मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। वे हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करते थे, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा, उन्होंने हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किए, जैसे पिता की आज्ञा का पालन यानी वनवास, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रेम और एक निष्ठावान मित्र यानी सुग्रीव और निषादराज की मित्रता, धैर्य और सहनशीलता, कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे वनवास और सीता के हरण में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, विनम्रता और सौम्यता। राजा होकर भी वे अत्यंत विनम्र और मिलनसार थे, उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उन्हें चंद्र यानी चंद्रमा कहा गया। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक, वे एक न्यायपूर्ण और प्रजा के हित चाहने वाले राजा थे। सत्यनिष्ठा और वचन के धनी, वे अपने वचनों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह पिता के वचन का पालन हो या फिर मित्र के साथ किया गया वादा। परोपकारी, वे दूसरों का भला करने वाले संत हितैषी थे। तेजस्वी और शक्तिशाली, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और दानवों का नाश करने वाले थे, लेकिन उनका तेज सौम्यता से युक्त था। कुशल संचारक और अनुशील, वे स्पष्ट बोलते थे और हर परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लिया करते थे। तो इतने सारे गुणों से युक्त रहा जीवन हमारे प्रभु श्री राम का। उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों से कुछ तो चुरा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं श्री राम प्रभु के एक और गुणगान यानी भजन की ओर।

श्रोताओं, आपने श्री राम प्रभु का एक नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में सुना होगा, रामचंद्र। आखिर इसका मतलब क्या है? रामचंद्र का मतलब है राम जैसा चंद्रमा, जो भगवान राम यानी विष्णु के अवतार और रामायण के नायक, और चंद्रमा यानी चंद्रमा शब्द को मिलाकर बना है। ये नाम दिव्य, शांत, आकर्षक और पवित्र गुणों का प्रतीक है, जो भारत में एक लोकप्रिय नाम और उपनाम है। राम दो शब्दों से मिलकर बना है, रमना यानी आनंद देना, और दूसरा रम यानी समा जाना, जिसका अर्थ है परमात्मा या सर्वव्यापक। चंद्र जिसका अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता, सौंदर्य और चमक। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा होगा।

श्रोताओं, ये नाम यानी रामचंद्र भगवान राम की शांति, सुंदरता और दिव्य गुणों को चंद्रमा के साथ जोड़ता है, जो उन्हें सुखदायक और आकर्षक बनाता है। ये नाम धार्मिकता, वीरता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। ये दक्षिण भारत में एक आम नाम है, एक उपनाम है, खासकर तमिलनाडु और केरल में, और पूरे भारत में लोकप्रिय भी है। ये भगवान राम के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

वैसे तो श्री राम एक पूरा युग अपने अंदर समेट के चलते हैं। त्रेता युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता माने गए हैं प्रभु श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक बनकर सीता के साथ 14 साल का वनवास किया और रावण का वध किया, जिससे वे आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में पूजे जाते हैं।

प्रोटागन जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कुटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए,

इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे राघव, दशरथी और रामलला, जिनमें सबसे प्यार से अगर हम किसी नाम से बुलाते हैं इन्हें तो वो है रामलला, क्योंकि आज भी हम उन्हें एक तन्हे से, सौम्य प्यारे से कोमल बालक के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और दुष्ट रावण का संहार किया। संक्षेप में कहें तो भगवान राम हिंदू धर्म के एक केंद्रीय चरित्र हैं, जो नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है।

राम यानी अयोध्या की पावन भूमि पर जन्मा एक बालक जिसके चेहरे पर करुणा, हृदय में धैर्य और आचरण में धर्म था। वनवास मिला पर राम ने प्रश्न नहीं किया, सिंहासन छूटा पर सत्य नहीं छोड़ा, राज्य गया पर मर्यादा नहीं गई। वन में रहकर भी राम राजा थे क्योंकि उनका राज मन पर था, किसी अन्य पर नहीं। श्रोताओं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज का राम। आज के युग में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रामू। पिता ने वादा किया था मेले ले जाएंगे पर अचानक काम आ गया। रामू उदास हुआ पर बोला, पापा आप काम कीजिए, देश और घर पहले है। माँ ने पूछा, बेटा गुस्सा नहीं आया? रामू बोला, राम जी ने भी तो वनवास स्वीकार किया था। यही है आधुनिक युग का राम, कर्तव्य पहले, भावना बाद में।

श्रोताओं, श्री राम के जीवन से जो सीख मिलती है वो कुछ यूं है, माता पिता का सम्मान करें। आज के बच्चे सवाल करते हैं, राम ने स्वीकार किया था, सत्य का साथ दें। आज लोग सुविधा देखते हैं, राम ने धर्म देखा था, त्याग की भावना। आज मेरा अधिकार चलता है, राम ने मेरा कर्तव्य सिखाया। नारी सम्मान, सीता के लिए समुद्र पार किया, आज समाज को वही सम्मान चाहिए। तो अगर अपने जीवन को किसी काबिल बनाना है तो थोड़े से आदर्श हमें श्री राम के जीवन से अपने जीवन में उतारने चाहिए।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

पता कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे आप सभी को, मुझे और हर उस शख्स को जो कहीं भी कुछ भी सिखा चुका है, बता चुका है, और जिससे किसी को कुछ भी एहसास हुआ है कि उसे कुछ मिला है, उन सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 5 सितंबर है, आज के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे के नाम पर शायद हमको वो टीचर्स याद आ जाते हैं जिन्होंने कभी हमारे स्कूलिंग टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में, डिग्री कोर्सेज में हमको टीच किया है, ट्रेन किया है। साथ ही साथ टीचर के मायने, लेकिन जब हम जानने चलते हैं तो उसके मायने बड़े वास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फिर मायनों में सिमट नहीं पाता टीचर्स का, बस उतना ही सा टर्म, और न जाने क्या क्या मिल जाता है, बहुत कुछ है ना। सो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें कि फ़िलहाल ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं और ऐसे बहुत सारे प्रकृति में लोग हैं, चीज़ें हैं जिन्होंने शायद हमको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, और वो हमारे लिए किसी टीचर से कम नहीं है। यानी हर वो शख्स, हर वो सिचुएशंस जहाँ से हमने कुछ सीखा है और उसके बाद हम आगे बढ़े हैं, सो डेफिनेटली ऐसी जगहों पर, ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हाँ वो हमारे टीचर्स हैं। सो भाई ये जो टीचिंग की जो स्किल्स है, वैसे तो बहुत कुछ मार्केट में आप सुनते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीचर हर वो चीज़ है, वो शय है जिससे आपको सेंस होता है कि आपको कुछ मिला है, डेफिनेटली। सो उन सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड यस, फ़िलहाल आज जो डे है वो सैटरडे है, और इसी सैटरडे में अब हम चल रहे हैं यस आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और जानते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए सैटरडे स्पेशल कौन सी ऐसी बातें लेकर आया है जो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हुए और हम सीधे चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और जानते हैं कि भाई आज का ये थॉट ऑफ द डे जो सैटरडे स्पेशल बन करके आपके लिए आया है, वो दरअसल आपके लिए लाया क्या है और आपको पैगाम क्या दे रहा है आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

वैसे एक मुझे तो लगता है कि लेसन देने वाला ये थॉट भी होता है। सो ये जो थॉट ऑफ द डे बताने का सेगमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं टीचर ही है, और मैं बड़े दिल से इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ सच में मुझे नया मिल जाता है। मुझे लगता है लाइफ में हमारे कुछ नया ऐड हो चुका है बिकॉज ऑफ थॉट ऑफ द डे। सो चलिए बता देते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे ऐसा क्या पैगाम लेकर आया है जो आपके लिए एक टीचर की फीलिंग रखता है। सो देखिए, आज का थॉट कहता है कि आप हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आप हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन जो आपको सचमुच देखता है उसके लिए आप हर मायने में अनमोल हैं। जी हाँ, आप हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन जो आपको सचमुच देखता है उसके लिए आप हर मायने में अनमोल हैं। बहुत बड़ा थॉट ऑफ द डे है, बहुत ही प्यारी बात कही है। हम अक्सर अपने अधूरेपन को लेकर के सोचते रहते हैं, रीथिंक करते हैं, कितने लोग इतना फीडबैक देते हैं, हमारे अंदर है ही क्या। लेकिन जब सच में ये बात सच आती है कि वो शख्स जो हमको सच में हम जैसे हैं उस तरह देखने की कोशिश करता है या जानता है, वो हमारी बुराइयों में भी खुश है, हमारी अच्छाइयों में भी, क्योंकि पता है कि एक इंसान में ये सारी चीज़ें होती हैं और उसमें खुद भी है, तो आप में क्यों नहीं। और वो उसके लिए आप पूरी तरह से मुकम्मल होते हैं, आप उसके लिए हर मायने में बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उसके लिए बेशकीमती होते हैं, जो आपको समझ चुका होता है, क्योंकि वो आपका हर फेस देख चुका है, आपका हर चेहरा देख चुका है। और जब आप किसी का हर चीज़ देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इजीली उनको अपना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा खुद के साथ होता है, जब तक हम खुद को खुद ही नहीं जान पाते हैं तब तक हम भटका ही करते हैं। लेकिन जब हमको एहसास होने लगता है कि हम ऐसे हैं, हम इस तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों से भागते हैं, हमारे लिए ये बेहतर है, उसी दिन के बाद से हम कंप्लेंट्स करना बंद करते हैं, लोगों पर ब्लेम लगाना बंद कर देते हैं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी उठाते हैं और एक बेहतर पाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि आप हर किसी के लिए पर्याप्त तो नहीं होंगे, कि कोई ना कोई कमी बताएगा, अरे यार तुम्हें बस ये होता तो बढ़िया होती, तुम्हारी जॉब बस बढ़िया होती तो फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट थी, तुम्हारी ये स्किल्स अच्छी होती तो तुम अंग्रेज़ी बोल लेते तो बहुत अच्छे होते, तुम्हारे अंदर अगर ये होता ना तो बाकी सब बड़ा मज़ेदार है। लेकिन वो लोग जो सच में आपको समझते हैं, जो सच में आपको समझते हैं, ज़रा गौर करिएगा, जो सच में आपको समझते हैं उनके लिए आप बेशकीमती हैं, उनके लिए आप अनमोल हैं, उनके लिए आप, अब चाहे सोना कहिए, हीरा कहिए, सारी चीज़ें छोटी है, उनके लिए आप अपनेपन से हैं। और शायद यही वो बात है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को समझे कि हाँ सच में ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमको समझ रहे हैं हम उनके लिए अनमोल हैं, और हम हर किसी के लिए हो भी नहीं सकते, इसलिए एक्सपेक्ट ही करना बेवकूफ़ी होगा। सो चलिए भाई, बहुत ही प्यारी सी बात मुझे लगता है आज के थॉट ऑफ द डे ने कन्वे कर दी है, बता दी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे समझ रहे हैं और किसको कैसे समझ पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसी कड़ी में अब हम लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा वाला म्यूज़िकल ब्रेक, क्योंकि म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस से आने वाले हैं, और ना सिर्फ आने वाले हैं बल्कि आपको आपके जो भेजे गए मैसेजेस हैं, आपकी जो भेजी गई विशेज हैं चैट बॉक्स पर, उसको भी पढ़ने वाले हैं। अब चैट बॉक्स क्या है, कहाँ पे हम मैसेजेस पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स जो लोग हमको सुनते हैं स्मार्टफोन से और एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं अपना 89.6 FM की एप्लीकेशन, और जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं ऐप स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, उनके पास एक्सेस होता है कि वो चैट पर आ करके हम तक अपनी बात को पहुंचा दे, है ना। तो भाई, जो कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी आपने कहा है, आपके मन के अंदर का है, वो सब कुछ हम समझ रहे हैं और वो हम सब कुछ आप तक पहुंचाने भी वाले हैं। तो चलिए, फ़िलहाल आपको ले चलते हैं इस गाने की तरफ। और चूँकि आज बारिश को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, मुझे लगता है बारिश इस सॉन्ग के ज़रिए शायद सुनने के बाद आ जाए, होता है ना, एक उम्मीद होती है।
तो इस खूबसूरत से सॉन्ग को एंजॉय करेंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में, वापस से आएंगे, आने के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, और जब मैं याद करता हूँ तब क्यों, आप तो तब तो आ ही जाते हो ना। सो बारिश से ज़्यादा मुझे तो लगता है मेरे याद करने पे, मेरे यहाँ से कहने पर आपके मैसेजेस आ जाते हैं, आपकी प्रेजेंस दिखने लग जाती है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है चैट पर आए हुए कुछ मैसेजेस को पढ़ने का और बताने का, क्या कुछ लिख भेजा है आपने अपने मॉर्निंग वाले शो के मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम पर।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

जी रवि तक्षक जी अल्पज्ञ लिखते हैं, आइए महामहिम रेडियो, बड़ी बेसब्री से इंतजार है आपका, गुड मॉर्निंग गुंडा कहनो को, वाओ क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इसके बाद सविता दुबे जी मौजूद हैं, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। और उसके बाद लिखते हैं, इस समय जितने भी रेडियो ज्ञानस्थली से जुड़े रेडियो टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू। रवि जी लिखते हैं कि रवि तक्षक अल्पज्ञ, सुबह की पहली किरण हो या चाय की पहली चुस्की, हर चेहरे पर मुस्कान लाए ज्ञानस्थली की ये धुन सुरीली सी प्यारी, गोंडा की धड़कन गोंडा की आवाज़, हर सुबह सजाए खुशियों का

यू सो मच रवि तक्षक जी, बहुत प्यारे वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद आशु जी लखनऊ से हैं, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। आज प्रीति जी का जन्मदिन है, ऑल राइट, सो प्रीति जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिक्षक दिवस की भी हार्दिक बधाई दी, थैंक यू। प्रीति जी खुद भी आ गई हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीति जी। बर्थडे गर्ल आज आप हो गई हैं, आप वैसे भले ही मम्मी हो लेकिन आज आप हम सब लोगों के लिए बर्थडे गर्ल हैं, सो स्माइल करिए, यस अपने लिए ताली बजाइए। अरविंद फ्रॉम मनकापुर लिखते हैं, जो खुद जलकर हमें उजाला देते हैं वही गुरु कहलाते हैं, अज्ञान मिटाकर ज्ञान का दीप जलाने वाले समस्त गुरुजनों को शत शत नमन, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद शिक्षक दिवस की अरविंद। एंड अनूप जी हमारे लिखते हैं, टीचर्स आर द एंजल्स हु एनलाइटन our lives with the light of knowledge and wisdom, wishing you immense joy, happiness and prosperity because teachers like you deserve the best, happy teachers day to all of you, okay? Thank you so much, बहुत प्यारे विशेष है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी ने भी विश कर दिया है हमारी प्रीति जी को, और थॉट ऑफ द डे हार्ट टचिंग, नो वर्ड टू से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रीति जी ने बोला, ऑसम थॉट, किसी के लिए हो या ना हो बट अपने आप में मैं बहुत ही पर्याप्त हूँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही, थैंक यू सो मच। आशु जी को जो थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड यस हमारी प्रीति जी का आज बर्थडे है, तो भाई चलिए इनके बर्थडे को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाना है, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपकी प्रेजेंस, आपकी हाजिरी भाई FM पर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि जिस दिन आप नहीं आते उस दिन हम सब लोगों को कंसर्न होता है कि आज प्रीति जी नहीं आई है, सब खैरियत तो आप उनमें से एक है, सो थैंक यू सो मच टू यू आशु जी बताने के लिए कि आज प्रीति जी का बर्थडे है। और यस भाई, अगर बर्थडे है तो कहीं ना कहीं बर्थडे सॉन्ग भी बनता है, ताकि जो विशेज हैं वो प्रॉपरली हमारी प्रीति जी तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम प्रीति जी को डेडिकेटेड हम सब लोगों की तरफ से ये खूबसूरत सा बर्थडे सॉन्ग प्ले करके आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और अच्छा दिन इसलिए रहता है क्योंकि आज आपका बर्थडे भी रहता है और आज ही यस शिक्षक दिवस भी रहता है, यानी टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे जो है वो हम सेलिब्रेट जब इसके साथ मिल करके करते हैं, यानी कहीं ना कहीं जब 89.6 FM की पूरी फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं और किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये दिन अपने आप में ख़ास हो जाता है, और आज तो वैसे भी बहुत खास है।

हाँ जी, आप जिए 1000 साल के और दिन हो 50,000, क्या बात है। और इन लाइंस के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वाओ क्या बात है, मतलब आज आपका बर्थडे स्पेशली सेलिब्रेट किया है हम लोगों ने। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीति जी, और आप मुबारक हो, आज बर्थडे गर्ल बन गई हैं। और यस, काफ़ी एंजॉय कर रही हैं और फैमिली के साथ आज प्लीज़ एंजॉय करिएगा। और बहुत सारी खुशियां हम लोगों की तरफ से आपको दुआओं में भेजी जा रही हैं, झोला भर भर के प्लीज़ उसको रिसीव कर लीजिएगा। एंड यस, हमेशा हम आपके बेहतरी की कामना करते हैं, आपके सुकून की कामना करते हैं, आपके अपनेपन की कामना करते हैं, और हर वो चीज़ जो आपको बेहतर फील कराती है वो आपको ज़रूर अचीव हो, ज़रूर मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आशु जी, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, हम सभी लोग आज जो है वो शिक्षक दिवस तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ चूंकि आज प्रीति जी का बर्थडे भी है सो उसका सेलिब्रेशन भी लगातार चल रहा है। एंड यस, फिलहाल वक्त है अगले खूबसूरत गाने को एक साथ सुनने का, वापस से आ करके हम बातचीत करने वाले। और हाँ, आज 10 से 11 के बीच हर वो बात अपने शिक्षक के लिए, अपने गुरु के लिए आप कहिए, डायरेक्ट सीधे कॉल मिलाइए 6393 पर, और अपने कहे हुए बताए हुए जो वर्ड्स हैं उनको ज़रा सोचिए, जो आपने मन में कहा है वो अभी रेडियो पे कहना है, अपने टीचर को लेकर के, आपके जो भी टीचर हों, जो भी रहे हों, या जिस किसी ने भी आपको लेसन दिया हो उसके बारे में, जो कुछ आपकी सीख रही हो उसको प्लीज़ ज़रूर हमसे साझा करिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुबह उठते ही नाश्ता करना जरूरी है क्या? नहीं, ये सवाल है मेरा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये कैसा अजीब सवाल है, सुबह उठते ही जाहिर सी बात इंसान नाश्ता करता है। नहीं नहीं, दरअसल सुबह उठते ही नाश्ता करना और सुबह उठने के बाद नाश्ता करना, ये दो अलग अलग बात है। तो आइए आपको आज हम बताते हैं कि सुबह उठते ही नाश्ता करना क्या ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर आपको अब हम ही देने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो सवाल बड़ा ही आसान सा कि सुबह उठते ही नाश्ता करना ज़रूरी है, तो चलिए बताते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी। जी हाँ, सुबह उठने के बाद एक गिलास सादा या फिर गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, चाहे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपको गुनगुना पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी सकते हैं तो सादा पानी भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा रात भर के बाद जब बॉडी को हाइड्रेट करने में ये मदद करता है, क्योंकि 12-14 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आप जो भी लेटे होते हैं पानी पीने से बाद से और उठने तक के बीच का जो ये वक्त होता है, इसमें बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सो हाइड्रेट करने के लिए ये पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि डिहाइड्रेशन दूर करता है ये, एंड पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है। और तीसरी बात यह कि बॉडी के दिन की शुरुआत के लिए यह तैयार कर देता है, यानी जो बॉडी अब रेडी है काम करने के लिए, डे हो गया है, उसको तैयार कर देता है ये सबसे पहला वाला जो पानी होता है। दूसरी बात है कि फौरन भारी नाश्ता नहीं करना होता है। जी हाँ, उठते ही भारी नाश्ता करने से जो है पाचन पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। सो अपने बॉडी के हंगर सिग्नल्स को समझना होता है। हर किसी की बॉडी का अलग होता है, इसीलिए हर दिन और हर वक्त भूख की ज़रूरत भी अलग होती है, यानी हर किसी का अलग अलग होता है कितनी क्या भूख लगी है। तो ऐसा नहीं कि इतना ही खाना इतना ही करना, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत हैवी जो है वो नाश्ता उठते ही फौरन ना हो। इसके अलावा भूख लगे तो हल्का ऑप्शन क्या हो सकता है? सो मेवे हो सकते हैं, 4 से 5 भीगे हुए बादाम या अखरोट भी आप ले सकते हैं, अगर मान लीजिए हल्का सा ऑप्शन आपको चाहिए खाने में। किशमिश, कुछ थोड़ी सी किशमिश हो सकती है। फल की बात करें तो सेब है, पपीता है, केला है, इसके जैसे कोई भी ताज़ा फल है तो ये हम ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको भूख नहीं है तो तुरंत कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर भूख है तो ही बता रहे हैं उठते ही, अदरवाइज आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत फौरन का फौरन उठने के बाद नहीं है। इसके अलावा बॉडी के जो साइन है उसको समझना होता है और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो करना होता है, अचानक से नहीं। उसके बाद लेना होता है बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। सो उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो आपका कहीं ना कहीं पौष्टिक और संतुलित नाश्ता जो है वो कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो और कॉर्नकोर्न हो। सो इसमें क्या है, ओट्स दलिया जैसे एक ऑप्शन है। सो ये फाइबर से भरपूर होता है और पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ओट्स दलिया। दूसरा पोहा ऑप्शन आपको हमेशा पसंद आया होगा, मुझे भी बहुत पसंद है ये पीले पीले पोहे। सो ये हल्का होता है प्लस पौष्टिक होता है और आसानी से पच जाता है। इसके अलावा उपमा भी आपने सुना होगा, सो आपको एनर्जी देने वाला और पेट के लिए हल्का होता है उपमा। इसके अलावा मूंग दाल चीला, सो प्रोटीन से भरपूर और वेट मैनेजमेंट में मददगार होता है उबले अंडे हैं, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज होते हैं जिनको हम स्लाउड्स कहते हैं, विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स का पावर हाउस कहलाता है। सो नाश्ते में कलर, पोषण और वैरायटी रखना होता है ताकि बॉडी को सभी ज़रूरी पोषक तत्व जो हैं वो मिल जाए। इसके अलावा उठते ही कॉफ़ी चाय के बारे में क्या ख्याल है? सो खाली पेट चाय या कॉफ़ी कुछ लोगों में एसिडिटी और जलन या गैस या पाचन से परेशानी बढ़ा देती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पानी पीना है और बॉडी को हाइड्रेट करना है। 30 से 60 मिनट के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सहनशीलता के हिसाब से चाय और कॉफ़ी जो भी है आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो पानी ही लेना है। चाय कॉफ़ी जो है सीमित मात्रा में और बिना ज़्यादा चीनी के लेना होता है। सो करना क्या रहता है, खाली पेट चाय या कॉफ़ी कुछ लोग में चूँकि एसिडिटी, जलन और पाचन की परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने बताया कि कुछ वक्त बाद, लगभग 1 घंटे बाद आपको लेना होता है। सबसे पहले आपको पानी लेना होता है। आप सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हो, पानी पीते हो या चाय कॉफ़ी आप पीते हैं या फल मेवे खाते हैं या सीधा आप नाश्ता करते हैं? चलिए, आपकी जो आदत इस नाश्ते से जुड़ी हुई है उसको लेकर के आप हमको ज़रूर बता सकते हैं कि भाई आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले करते क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी है कि भाई आप अपनी दिनचर्या में क्या, किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिससे पता ये चलता है कि आगे जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होने वाला है
और आप चीज़ों को कैसे करने वाले हैं, क्या हेल्दी है आपके लिए और क्या नुकसानदायक है, ये बात भी समझा जाना ऑफ कोर्स ज़रूरी हो जाता है और ये भी आप समझ ही जाने वाले हैं। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत हो गई है। तो अब हम रुख करते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ और अगला जो सॉन्ग आ रहा है वो आपके 89.6 FM पर आपके लिए गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आरजे अदनान की तरफ से है। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड यस, फिलहाल मुझे ये कहना है कि भैया आज आप कॉल कर सकते हैं 10 से 11 के बीच लाइव कॉल इन प्रोग्राम में, क्योंकि आज है शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। और ऑफ कोर्स आपके लाइफ के जो भी टीचर्स हैं उनके बारे में जो भी आप थॉट रखते हैं या उनकी कोई भी एक ऐसी बात जिसको आज भी आप फॉलो करते हैं यानी ज़िंदगी के आज इस मोड़ पर भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट से आप कॉल करके बता सकते हैं 10 से 11 ऑफकोर्स गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आरजे अदनान के साथ, ताकि हम भी अपनी बातों को कह सकें कि भाई हमारे टीचर्स को लेकर हमारे जज्बात क्या हैं और वो सीख क्या है जिसको आज भी हम कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। सो चलिए, फ़िलहाल उन लोगों के लिए ये ख़ास ख़बर आने वाली है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो वर्क कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सो फिलहाल इंस्टाग्राम से जुड़ी एक अपडेट है जो कि आप तक पहुंचानी है, क्या है आइए आपको सीधे ले चलते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Aajya Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल चूंकि हम लगातार एआई के इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं और एआई जनरेटेड कंटेंट्स भी बहुत सारे देखते हैं, इवन स्टार्टिंग में तो हम शायद सोचने भी पड़ गए थे कि भैया ये एआई जनरेटेड कंटेंट्स रियल हैं और एआई जनरेटेड हैं। सो अभी भी मुझे लगता है कि जैसे मेरे फादर हैं, कई बार कई ऐसी वीडियो जो स्क्रॉल करते हैं वो एआई जनरेटेड समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि भाई बिल्लियाँ जो हैं वो सच में बर्तन धो रही हैं। उनको समझाना पड़ता है कि पापा ये एआई जनरेटेड है। फिलहाल एआई जनरेटेड वीडियोस के इस दौर में एक डिसीजन लिया है इंस्टाग्राम ने। सो इंस्टाग्राम ने एआई से बनाए गए लोगों वाले प्रोफाइल को लेकर के अपने नियमों में बदलाव किया हुआ है और प्लेटफॉर्म अब मौजूदा एआई क्रिएटर लेबल का नाम बदलकर एआई जनरेटेड प्रोफाइल करने जा रहा है। ऐसे प्रोफाइल जो एआई से बने हैं, इंसान को दिखाते हैं और इसकी जानकारी नहीं देते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर रोक लग सकती है। यानी एआई कंटेंट पर एआई लेबल नहीं लगाया तो इंस्टाग्राम कंटेंट की रीच रोक सकता है। हालांकि प्रोफाइल पर सही एआई लेबल लगाने वाले क्रिएटर्स की रीच कम नहीं की जाएगी। यानी अब जो कंटेंट होगा, जो प्रोफाइल पर आप इमेज लगा रहे हैं, उस पर आपको लिखना पड़ेगा एआई जनरेटेड, अदरवाइज अगर नहीं आपने किया तो आपकी रीच को कम कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ताकि लोगों को, आम लोगों को पता चलता रहे कि भाई ये जो है ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या एआई जनरेटेड ये प्रोफाइल है। क्योंकि लगातार हम ऐसे देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अब एआई जनरेटेड आ गए हैं। जब से एआई प्रचलन में आया है, स्पेशली वीडियो फॉर्म में, कई लोग जो है अब वो एआई के ज़रिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन कई बार भ्रांतियाँ बनी होती कि भाई ये सच में रियल है या फिर कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड है। तो अभी बता दिया है कि एआई प्रोफाइल के जो नियम हैं उसमें बदलाव हुए हैं और लेबल लगाना ही ज़रूरी होगा, लेबल नहीं लगाया तो रीच को घटा दिया जाएगा, ऐसा कहना है इंस्टाग्राम का। फिलहाल ऐसी डिसीजन पर, ऐसी सिचुएशन में आप अगर समझते हैं तो भाई आपका क्या मानना है, आप कैसे देखते हैं इस नियम में जो बदलाव हुआ है, इसको कैसे देखते हैं कि ये कितना सही है और क्या बाकी कंटेंट्स पे भी अब ऐसे ही लागू होना चाहिए? यानी जो भी कंटेंट्स मार्केट में आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, रील्स में आते हैं, क्या उन पे ये लिखा जाना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है और इससे क्या सच में लोगों को फ़ायदा होने वाला है? ये आप ज़रा सोचिएगा और उसके बाद हमको बताइए। एंड यस, फिलहाल हम ले रहे हैं एक अगला म्यूज़िकल ब्रेक। सो अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे और साथ ही साथ वापस से जब आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखने वाले हैं और तब तक वक्त हो चलेगा आपके लाइव कॉल इन प्रोग्राम का, क्योंकि आज है सैटरडे और आज ही है टीचर्स डे। सो आप भी कॉल करके हमको बता सकेंगे अपने टीचर्स के बारे में, उनकी दी गई शिक्षा के बारे में, आज भी जिन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, कहीं से भी आपको सीखने को, समझने को मिला हो तो सीधे सीधे उन पॉइंट्स को आप जो है वो डिफाइन करेंगे। 6 93 316 429 पर ये रहेगा आपका नंबर और इसी पे आपको कॉल करना होगा और यहीं से आप जो है वो बता सकेंगे कि भाई हाँ, यस, आपके जो गुरुजन हैं वो आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात बताई थी जो आज भी आप फॉलो लगातार करते चले जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले चौक आरजे अदनान आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज बात उनकी हो रही है जिन्होंने हमें चौक और डस्टर के साथ ज़िंदगी का सही मैथ्स और केमिस्ट्री सिखाया है। सो हम सभी के, आप सभी के प्यारे गुरुओं शिक्षक दिवस की एक बार वापस से उन सभी को मुबारकबाद। एक बात अगर मैं बताऊं तो स्कूल की वो लास्ट बेंच अगर आपको शायद याद हो जहां से सबसे ज़्यादा शैतानियां होती थी, लेकिन वहीं से सबसे बड़ी सीख भी मिली। सो आज का दिन उन्हीं टीचर्स के नाम जिन्होंने हमारी बदमाशियों को भी सहा और हमें इंसान भी बेहतर बनाया। सो वो डायलॉग जो सबने सुना है, तो चलिए ऑफ कोर्स कौन सा बहुत फेमस सा डायलॉग है जो टीचर मारते थे और आपने भी सुना होगा। दो तीन डायलॉग है जिसमें से आप बताइए कौन सा आपने सबसे ज़्यादा सुना है। इज दिस अ क्लासरूम और अ फिश मार्केट, ये क्लासरूम है या कोई मछली बाजार। एंड साइलेंस, क्लास के बाहर तक आप लोगों की आवाज़ आ रही है। एंड तीसरा डायलॉग, ये जो पीछे बैठ के हंस रहे हैं, खड़े होकर पूरी क्लास को बताओ क्या बात है। कसम से वो सारे दिन याद आ जाते हैं जब 6th, 7th, 8th में सब हम लोग बदमाशियां करते थे और पीछे बैठ कर के पीछे वाली बेंच से ये सारी हरकतें हमारी होती रहती थी। सो ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत कॉमन रहे हैं कि ये कोई मछली बाजार है या क्लासरूम है या फिर साइलेंस, क्लास के बाहर तक आप लोगों की आवाज़ आ रही है, और तीसरा ये जो पीछे बैठ के हंस रहे हैं, खड़े हो जाओ और पूरी क्लास को बताओ क्या बात है। सो इन तीन डायलॉग्स में आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा डायलॉग जो है आपके टीचर सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिला है। ऑफ कोर्स नंबर वही है 6393931649। सो ये नंबर है, इस पर आप हमको कॉल करिए और हमको फटाफट से बताइए कि भैया आपके टीचर ने सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन बोली है, कि ये कोई मछली बाजार है क्या जो तुम लोग शोर कर रहे हो, और दूसरा ये कि साइलेंस, क्लास के बाहर तक आप लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, और तीसरा ये जो पीछे बैठ के हंस रहे हैं ना, पूरी क्लास को बताओ क्या बात है। सो ये डायलॉग्स मुझे लगता है बहुत कॉमन से हैं और आप सभी ने, हम सभी ने सुना ही सुना है। सो फटाफट से आप भी कॉल करके हमको बता सकते हैं कि हाँ ये डायलॉग आपके गुरुजन ने बोला है और आप इसको काफ़ी बार सुन चुके हैं। तो चलिए, ऐसा कोई भी जो डायलॉग आपने सुना हो वो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं 6393 316 429 पर। स्टे ट्यून्ड।

0: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। तो कौन सा डायलॉग बोला भैया कि आखिर ये कोई मछली बाजार है क्या जो तुम लोग शोर कर रहे हो, या फिर इसके अलावा साइलेंस क्लास के बाहर तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। तीसरा है ये जो पीछे बैठकर हंस रहे हैं, खड़े होकर पूरी क्लास को बताओ कि आखिर बात क्या है। सो इस तरह के कई डायलॉग्स, स्पेशली 3 जो मैंने बताए, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा आपने सुना ये आप बताने वाले। फिलहाल कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
1: गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर डे।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज पहचानी सी लग रही है, कौन है भाई?
1: जानी पहचानी सी
0: जानी, अरे ये तो हमारी बर्थडे गर्ल है भैया, हैप्पी बर्थडे। सारा मजा तो ये लूट ले जाती भैया, टीचर्स डे का सारी विशेष इनको मिल जाती, बर्थडे वाली भी।
1: डबल डबल कल ट्रिपल हो गया सर, जन्माष्टमी की रात से सब विश करने लगे।
0: अरे वाह,
1: 12 बजे भगवान जी का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद ही सब हमें बोलने लगे।
0: क्या बात है। सो इतना ज्यादा भैया, इतना बड़ा दिन जो है वो आपके नाम पे डेडिकेटेड रहता है, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, ये जो 3 डायलॉग्स बताए हैं, उनमें से कौन सा ये जो है आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिला है, या इसके अलावा कोई और रहा हो जो आपने सबसे ज्यादा सुना हो?
1: सर फिर से आप दिला दीजिए, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, थक गए थे।
0: अच्छा, इसमें जैसे टीचर्स कहते हैं कि ये कोई मछली बाजार है जो तुम लोग शोर कर रहे हो, दूसरा ये कि साइलेंस क्लास के बाहर तक तुम लोगों की आवाज आ रही है, और तीसरा ये जो पीछे बैठकर हंस रहे हैं, खड़े होकर पूरी क्लास को बताओ कि आखिर क्यों हंस रहे हो, क्या बात है?
1: सर हमने भी सुना है अपने टीचर द्वारा स्टूडेंट लाइफ में, और हम कोई टीचर थे तो हमने सुनाया भी है बच्चों को।
0: क्या आप, अरे वाह क्या बात है भाई, आप तो चूंकि हाँ सच में टीचर भी रह चुकी है, तो सबसे ज्यादा क्या बोला आपने?
1: सर हमने कहा कि कवाड़ा बाजार लगाए हो क्या?
0: वाह वाह वाह, पहले
1: कबाड़ी आगे चिल्लाने लगते हैं इसे तुम लोग, लग रहा है से बना दियो आज क्लास को।
0: ओके,
1: लेकिन हम लोग के समय में पनिशमेंट मिलता था तो हम लोग के माता पिता तुरंत पहुंच नहीं जा रहे थे, आजकल के हमने थोड़ा बहुत भी खड़ा किया, मारा नहीं खड़ा किया, उठक बैठक लगाया तो आ जाता है शिकायत।
0: हाँ, काफी दौर बदल गया है, काफी चीजें सच में बदल गई है। वैसे आपने सबसे,
1: बच्चे भी इतने शरारती हो गए हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना टीचरों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
0: तो बतौर जब छात्रा रही थी आप, तो सबसे ज्यादा आपने सुना क्या था? ये तो आपने बोलने वाला बताया कि बतौर टीचर आपने ये बोला है, आप जब खुद स्टूडेंट थी तो आप क्या सुनते थे?
1: सब्जी लगा रखा है बोलते थे।
0: अच्छा, आप कबाड़ी बाजार बोलती थी और आपको सुनने को मिलता था सब्जी बाजार। वाह क्या बात है।
1: हम लोग पहले हम लोग डरते भी थे तब टीचरों को अपने, उनके आते ही सब चुप हो जाते थे साइलेंट,
0: उनको देखते ही रास्ता बदल देते थे मार्केट में।
1: वो टीचर रहते थे इतना मारते थे, सही बात है, हम लोग उनसे कहीं देखते थे अलग जाना था, कहीं चले जाते थे कहीं।
0: तो ये तो मैंने भी बहुत किया है। एंड वंस अगेन आपका चूंकि आज बर्थडे भी है, तो क्या तैयारियां हैं बर्थडे की आपके?
1: सर

0: गमले कई तरह के भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं।
1: और वो भी आते थे जो मूवीज में जिससे दूसरों का सर फोड़ देते थे। चलिए एक बार वापस से आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू सो मच बताने के लिए।
0: अरे दो लाइन सुनाने तो दीजिए।
1: हाँ हाँ अरे प्लीज,
0: होता है और होता रहे।
1: प्लीज प्लीज सुनाइए।
0: हंसते हंसते

0: सर आप बदलते रहे लेकिन हम नहीं बदलेंगे।
1: अरे हम बस टी शर्ट बदलते हैं, आज शर्ट पहन के आए, स्मार्ट लग रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बदलते हैं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच टू यू प्रीति जी फ्रॉम बहराइच। वाह क्या बात है भाई, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में। और इसी कड़ी में चलिए अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है। हाँ जी हेलो,
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम तो साक्षी पांडे है।
1: और मेरा नाम आरजे अदनान है।
2: यस सर।
1: सो साक्षी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, कैसी हैं आप?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है साक्षी। आपसे
2: कितने बढ़िया है, आप दिखते नहीं है।
1: दिखते नहीं है तो देखने पे दिखेंगे ना कितने बढ़िया है।
2: अरे तभी नहीं करता, कितने बढ़िया है बताइए आप, कितने बढ़िया है
1: बताइए हम कितने बढ़िया है। चलिए ये हमारे बाकी श्रोता जो है वो चैट बॉक्स पे आके बता दे कि हम सच में कितने बढ़िया है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आपके टीचर ने सबसे ज्यादा कौन सी लाइन बोली है?
2: मेरे टीचर ने तो
1: हाँ डांटने के लिए,
2: डेली लंच के बाद जब वो हमारे क्लास में आते हैं पढ़ाने,
1: हाँ।
2: तो हमें लोगों से यही कहते हैं तुम लोग कितने शरारती हो गए, प्री स्कूल में क्लास नाइन्थ से बहुत अच्छा क्लास माना जाता है और तुम लोग इतना शोर मचाते हो कि स्टाफ रूम तक आवाज जाती है, तुम लोग शांति बना के नहीं रख सकते।
1: अच्छा ये चीज बहुत हमने भी सुना है कि सबसे जो बिगड़ैल क्लास है वो तुम्हारी लोगों की है, मतलब जिस भी क्लास में टीचर जाते थे उसी में बोलते थे।
2: बोलते हैं कि सारे लोग जब सारे टीचर आएंगे तो हमको ही सबसे पहले डांटेंगे, सबसे आगे जो हमें हमें मिलता है, हमें को सबसे सुनने को मिल जाता है।
1: सही बात है, सही बात है। वाओ
2: पूरे स्कूल में हमें को ही सारे लोग ने इतना बदनाम कर दिया है कि साक्षी सबसे ज्यादा हंसती है और साक्षी शोर मचाती है, हंसो या ना हंसो पर डांटे तो हम ही जाएंगे।
1: अच्छा मतलब आपको बदनाम कर दिया कि आप बहुत हंसते हो, साक्षी हंसती है बहुत ज्यादा।
2: हाँ
1: तो चलिए अब ये बदनामी जब झेल लिया है तो आप गुंडा एफएम पर हंस दिए, आपकी जो है वो इज्जत अफजाई कर देंगे हम, बढ़ा देंगे, इसमें बदनामी बिल्कुल नहीं होने वाली है। हंस के दिखाइए कैसे हंसते हैं आप।
2: अरे अभी हंसा तो
1: नहीं, नहीं डायरेक्ट हंसी है। चलिए हम 3 2 1 बोलेंगे तब आप हंसिएगा, 3 2 1। अरे पहले हंस दिया भाई आपने।
2: एक बार मैं अपने सर से गई छुट्टी मांगने, और मैं सर मेरा सर भी नहीं दर्द कर रहा था कि मेरा सिर दर्द कर रहा है।
1: अच्छा
2: और सर से मैं झूठ बोलने कर गई थी छुट्टी मांगने, सर ने मुझे छुट्टी नहीं दी, बोले कि लो दवा खा लो, कहे सर व्रत में दवा नहीं खाई जाती है, फिर भी सर ने मुझको छुट्टी नहीं दी। और मेरे क्लास की एक लड़की वो बहुत बीमार थी, उसको छुट्टी मिल गई, और उसको जब छुट्टी मिल गई तो हम लोगों ने उसी के पर्ची पे अपना 5 लोगों का नाम लेकर जाके चपरासी भैया को दे दिया। तब तक जो सर हमको बहुत मानते हैं वो आ गए, हम लोगों ने सोचा कहीं प्लान चौपट ना हो जाए, अभी सर को जब पता चल गया तो डांट तो बहुत पड़ेगी और साथ में पिटाई भी होगी, कभी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और सर को पता भी नहीं चला, हम लोग जब गेट के बाहर पहुंचे तो खूब हंसे खूब हंसे, रास्ते भर में खूब मस्ती करके आए, खूब देर को घर पहुंचे।
1: तो भाई सुन रहे हैं, अगर आप इनके टीचर जी सुन रहे हैं, अगर 89.67
2: का
1: नहीं, नहीं नहीं अगर मान लीजिए सुन रहे हैं तो देख लीजिए कितनी झूठी है ये आपके स्टूडेंट। ऑलराइट सो थैंक यू सो मच साक्षी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि आपके टीचर्स आखिर क्या बोलते हैं, थैंक यू।
2: सर बताए
1: जी बताइए,
2: सारे क्लास के बच्चे हमारे बोलते हैं कि साक्षी

0: राजेश पांडे सर साक्षी की मासी हैं।
1: हाँ हाँ, मतलब अपने टीचर्स को ही आप सिखाने लग जाते हो।
0: नहीं सर, हेलो, सारे बच्चे हमको बोलते हैं कि उमेश सर साक्षी की माँ है और राजेश पांडे सर साक्षी की मासी
1: हैं। अच्छा, मतलब आपको इतना मानते हैं।
0: हाँ, जब हम कार की कॉपी नहीं ले जाते हैं तो मतलब पूरे क्लास में कोई भी भूल गया तो पीछे से ही आवाज आती है, साक्षी को बुलाओ, साक्षी को बुलाओ, साक्षी अपनी कॉपी दे दे मुझे, और वो बोल देगी कि सर भूल गए, तो सर उसे डांटेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं, तो हम बच जाएंगे।
1: वाह, क्या बात है। तो भाई ये साक्षी के किस्से जरा सुन लिया आप लोगों ने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।
0: कोशिश करेंगे पर हम लोग हंसते नहीं है, हंसते नहीं है जल्दी से।
1: चलिए ऑलराइट, आप हंसते रहिए। बिल्कुल, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड यू ही 89.6 FM के संग जुड़ी भी रही है। एंड थैंक यू सो मच साक्षी कि आपने इतनी सारी बातों को हमारे साथ में साझा किया, बहुत मजा आया।
0: सर
1: जी,
0: आज से एक छोटा सा बच्चा हमारा बात करना चाहता है।
1: ऑलराइट,
0: क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास में है।
1: अच्छा,
0: हेलो,
1: हाय, कैसे हैं आप?
0: नमस्ते।
1: नमस्ते बच्चे, क्या नाम है आपका?
0: अंश पांडे।
1: अंश,
0: अयांश पांडे।
1: अयांश पांडे, कैसे हैं आप? आप अच्छे हैं, ठीक है? अच्छा,
0: आप ठीक हो सर?
1: जी मैं एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल। सो अयांश को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं दीजिएगा साक्षी, एंड बड़ी बहन होने का पूरा पूरा फर्ज निभाइए, एंड थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, थैंक यू। सो भाई, ये तो थी ऑफकोर्स हमारे साथ में साक्षी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया। अब कुछ मैसेजेस चैट बॉक्स में भी आ गए हैं जो कि आप लोगों ने रिस्पॉन्सेज लिखे हैं, इसके अलावा कॉल्स भी लगातार आ रही है, देखते हैं कॉल पे कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: अविनाश नाम है।
1: अविनाश, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: सर मैं गोंडा से ही बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, गोंडा से अविनाश जी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है 89.6 FM पर। आप कैसे जुड़े हैं 89.6 FM से?
2: मैं तो रेगुलर इसका लिसनर हूं और खास तौर से आपका शो मैं रेगुलर सुनता हूं।
1: थैंक यू। अविनाश जी, आज का दिन बड़ा खास है आपको, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई
2: आपको और हमारे सारे लिसनर्स को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू। वैसे पेशे से क्या आप टीचर ही हैं?
2: नहीं सर, मैं फिलहाल एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पावर कॉर्पोरेशन में।
1: अच्छा, पावर कॉर्पोरेशन में आप हैं?
2: जी सर।
1: ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुझे लगता है कि आज आप जो भी डेजिग्नेशन पे हो, पद पर हो, लेकिन बचपना सबका एक सा रहता है, तो
2: बिल्कुल, सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं खास तौर से अपने स्कूल में क्लासेस में बैक बेंचर ही रहा हूँ।
1: अरे वाह।
2: और आज आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है।
1: एग्जैक्टली,
2: जब और बैक बेंचर रहा हूँ सर, टीचर की मार भी बहुत खाई है, डांट भी बहुत खाई है। और एक सबसे बहुत बड़ी बात सर, आज तक वर्क नहीं कंप्लीट कर पाया, चाहे पूरी समाप्त हो गई थी, वर्क नहीं कंप्लीट कर पाया।
1: सेम प्रॉब्लम। नोट्स हमेशा दूसरे दिन जा करके किसी की कॉपी लेके बना रहे हैं, बच्चों से मांग मांग के बच्चों ने देना ही बंद कर दिया कॉपी।
2: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और खासतौर से सेशन लास्ट में मुझे, मैं प्रिंसिपल केबिन के सामने बैठ के वर्क कंप्लीट किया।
1: काफी आदतें
2: आज की बहुत याद आते हैं। और हमारे जो भी सर रहे हैं आज, सर भले वो टाइम सर जैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात मैं अपने गुरुओं को बहुत डेडिकेट करूंगा कि उन्होंने जो भी जैसा भी मैं रहा, आज जब उन्होंने मेरी सफलता देखी है, और मुझसे मिलते भी रहते हैं अक्सर कुछ गुरु हमारे हैं
1: जी,
2: खासतौर से हमारे प्रिंसिपल सर और भी जो भी कुछ सर रहे हैं
1: जी,
2: सब मिलते हैं, और वो जब मुझे देख के कुछ दिन पहले जब मेरी सफलता हो गई, मैं जॉब पे आ गया और देख करके जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक अच्छे मुकाम पे आप पहुंच गए हो, तो उस दिन मुझे इतना प्राउड फील हुआ सर कि मैं चाहे जैसा रहा हूँ, बैक बेंचर्स रहा या जो भी रहा, लेकिन बहुत ही मतलब एक अंदर से अलग सी फीलिंग आई कि आज सर मेरा सम्मान खुद कर रहे हैं।
1: सही बात है, वाओ कितनी प्यारी बात आपने कही कि वो टीचर जिनके लिए हम हमेशा बैक बेंचर रहे, आज जब आप एक मुकाम पे हैं तो उसको देखकर जब उन्होंने बोला तो आपको वो पल याद आ गए उस दिन के और आज का, वाओ क्या बात है।
2: बिल्कुल सर, और यही बात है सर, पहले बहुत सा मतलब बैक बेंचर था, उन्होंने डांटा मारा हमें चाहे जो भी किया सर, लेकिन आज तो वो हमें मिलते हैं और बाकायदा सम्मान सर जैसा उस वक्त था, मैं क्लास में उनके था, आज भी कभी भी उनके सम्मान में मैंने वो नहीं किया कि सामने पड़ गए, वो तो भले सर गुस्सा आती थी कि अरे सर ऐसा बोल रहे वो बोल रहे हैं, लेकिन आज जब सामने पड़ते हैं सर वो सम्मान जो रहता है वो सम्मान दोबारा शायद ही कहीं और मिल पाएगा।
1: बहुत बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात आपने कही है कि वो सम्मान दोबारा कहीं मिल पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं डायलॉग भी सुनना चाहूंगा, कौन सा सबसे ज्यादा आपने सुना है?
2: सबसे ज्यादा तो सुना है कि तुम सब इतना शोर मचाते हो, जो सबसे एक वो सुना था कि लास्ट में बैठ के हंस क्या रहे हो, सबको बताओ किस बात हंस रहे हो, और कोई जवाब नहीं होता था, उसका कोई जवाब नहीं होता था।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाला तो मैंने ही बहुत सुना।
2: मतलब हम लोग इतने ज्यादा शैतान थे कि आए दिन क्लास से तो बाहर ही खड़ी रहते थे कि कब क्लास से बाहर हो जाए, कोई भरोसा नहीं,
1: भरोसा ही नहीं है। वाह क्या बात है, थैंक यू।
2: सबसे बड़ी दिक्कत ये सर, लंबाई में ज्यादा बड़े थे तो चाहे जितना पीछे बैठ जाओ वो दिखाई सबसे पहले हम ही लोग देते थे।
1: अच्छा, हाइट का जो है वो दिक्कत कर रहा था आपकी हाइट लोग?
2: हाइट का सर कुछ भी हो जाए सबसे पहले हम ही लोग दिख जाते थे सर, उसे सबसे पहले हम ही लोग को उठा देते थे, उससे ये लगती थी हमको क्यों उठा रहे हैं जब जानते हैं हमें नहीं याद है, लेकिन नहीं वो हमें उठाएंगे जरूर सर।
1: वो साइकोलॉजिकल जो सामने पड़ जाता दिख जाता है उस पर पहले निगाह जाती है ना, सही बात है। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आप रेगुलर सुनते हैं ये सुनकर बड़ा खुशी हुई मुझे।
2: जी सर, थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच। सो ये थे गोंडा से ही हमारे डियर अविनाश जी, और बाकायदा उन्होंने एक एक चीज़ बताई, डिफाइन किया, उनके जो इमोशंस थे वो सामने आ रहे थे बातचीत के दौरान। और इसी कड़ी में हम चलने भी वाले, लेकिन उससे पहले हम कुछ चैट बॉक्स पर मैसेजेस आ चुके हैं जो कि रिस्पॉन्सेज हैं। सो रिनी का कहना है कि खाना खाना तो कभी नहीं भूलते, होमवर्क कैसे भूले, ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, सच में बता रहे हैं। और कॉपी घर पर रह गई तो तुम क्यों चले आए हो, तुम भी घर पर रहते, ये तो बहुत बोला है, मतलब लिटरली ये तो जैसे रटा होता है टीचर्स को कि ये दो लाइन तो बोलना ही बोलना है। एंड नाजिया अंसारी बोलती हैं कि मेरे टीचर्स बोलती थी कि कोई फिल्म चल रही है जो हंस रही हो। सो बोला है कि सर ये इनकम्प्लीटेड बोला है, साइलेंस इतना नालायक, क्लास इतना शोर कि प्रिंसिपल ऑफिस तक आवाज़ आ रही है, मैं वहाँ से आई हूँ, पूरी बिल्डिंग डिस्टर्ब करके क्लास में, टीचर्स नहीं तो खुद से भी नहीं पढ़ा जा रहा है, सब आता है सबको, आपको टेस्ट लूँ अभी, एक जो है एक का मुंह नहीं खुलेगा, पर बकवास करने के लिए सब क्लास सबसे आगे हैं, पूरी बिल्डिंग में डफर्स। ऑल राइट, सो ये बहुत कॉमन डायलॉग्स हैं जो कि हमारे टीचर्स हमेशा हम लोगों के लिए यूज़ करते थे, एंड लिटरली मैंने भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुनी हैं। सो आप लोग जो चैट बॉक्स पे बता सकते हैं वो लोग प्लीज़ लिख लिख के बताते रहिए कि भाई आपने कौन कौन सा फेमस सा डायलॉग सुना है टीचर्स से। सो फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो,
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मदान सर, हैप्पी टीचर्स डे।
1: गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपका शुभ नाम? रोशनी रावत जी बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? पहले तो अपना
3: हाल टाइम बात हो रही है आपसे।
1: जी जी जी, सेकंड टाइम मेरी आपकी बातचीत हो रही है, अपना हाल चाल बता दे भाई।
3: मैं बहुत अच्छी सर, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आपने भी कुछ यूनिक वर्ड्स या लाइन सुनी होंगी अपने टीचर से, जैसा कि अभी हम बता रहे थे।
3: जी सर जी।
1: तो प्लीज प्लीज साझा करिए हमसे, आज तो हमें सबसे जानना है कि क्या क्या सुना है आप लोगों ने, प्लीज बताइए।
3: बता नहीं सर, याद कर अचानक से याद ही नहीं आ रहा।
1: कोई बात नहीं, नालायक वाला तो सबका कॉमन है। इतने नालायक बच्चे
3: हमने नहीं देखे। हाँ, ये बच्चे नहीं सुधरेंगे, ये
1: नहीं सुधरने वाले।
3: हाँ, ये नहीं सुधरने वाले, चाहे इनको जितना बोलो ये ऐसा ही करते हैं।
1: ऐसा ही करते हैं। और वो जो पीछे जो हंसने वाला होता था, सच में होता था कि नहीं तुम लोग सब लोग बताओ हंस क्यों रहे हो, मतलब क्या वजह हंसते की, क्या पीछे वजह।
3: जी सर।
1: So, अच्छा आपकी स्कूलिंग, मतलब आप कैसे रहे स्टूडेंट, स्टूडियस थे आप भी या आप भी बैक बेंचर्स में से थी, क्या थी आप?
3: नहीं सर, मैं बैक बेंचर्स तो नहीं थी, मैं फर्स्ट सीट पे तो बैठने के लिए लड़ाई कर देती थी।
1: ओहो, ये वो बच्चे हैं जिनसे बाकी क्लास के बच्चों को खुन्नस रहती थी कि भाई जब थप्पड़ मारने की बारी आती थी तो टीचर कहते थे ऐसे बच्चे जाके उन बच्चों को मारेंगे।
3: मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए अच्छी नहीं, घर से भी थोड़ा जल्दी जाना, और अगर वहाँ जाके भी अगर दूसरी लड़की मेरी दूसरी लड़की के लिए जगह अगर वो नहीं उपस्थित है उस पे हमें झगड़ना है।
1: Oh my
3: भाई
1: God.
3: जो नहीं आया उसका हमें नहीं पता, मुझे जगह चाहिए, यही बैठना है बैठना है।
1: अच्छा, वो आज भी चलता है जैसे पहले कि हमने हमारा रुमाल रख दिया था, पहले हम बैठे थे मेरा रुमाल यही रखा था। अरे लिटरली मैं बता रहा हूँ रोशनी जी कि मैं अपना पेन जा करके रखवा देता था ताकि वो मेरी वो जगह जो पीछे बैठने वाली थी वो फिक्स रहे, उस जगह हम ही बैठेंगे।
3: जी, हम भी यही करते थे कि कॉपी रख देते टेक्स्ट आंसर करते। दरअसल सभी के साथ ऐसा होता है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के लिए जगह लेनी जरूरी होती है ना, फिर वो जाके पीछे बैठ जाए और हम आगे फिर बातचीत हो नहीं पाएगी, तो इस वजह से जगह लेना भी जरूरी था।
1: सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो कभी आपको, आप चूंकि स्टूडियस थी, पढ़ने में अच्छी रही थी, कभी कोई किस्सा ऐसा हुआ क्लास का, कोई भी किस्सा आपके साथ या किसी और के साथ जो आज भी आप अगर सोचते हो तो आप हंसते हो उसको सोच सोच कर?
3: होता है सर, एक बार ऐसा किस्सा हुआ था कि मैं थी प्लस टू में, और हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स जो गाँव से थी हमारे, तो वो थी इलेवंथ में, तो हम लोग एक बार की बात थे, हम लोग बाहर बैठे धूप में, ठंडियों का टाइम था, तो हम मतलब वो भी बंक मार के क्लास से, हम भी अपने बंक मार के और उसके मतलब ऊपर भी छत पे साइड बैठे थे, और वहाँ हम चर्चाएं कर रहे थे इधर उधर की बात आ रही थी।
1: ओके।
3: एक सर आए और हमारे एक आदित्य सर थे, वो आके और हम सभी को देख रहे हैं। तो बस यही करने आते हो आप लोग। तो वो दिन अभी भी याद है।
1: वाओ, मतलब उधर से वो इधर से
3: बहुत बार ऐसा हुआ है सर कि और जैसे लंच टाइम में होता था तो लंच में भी हम एक दूसरे के क्लासों में जाके एक दूसरे को, कई बार तो ऐसा हुआ है सर जैसे ब्लैक बोर्ड पे चाक लगी है उसको हाथों में रफ सारा कर ली तो जाके चेहरे पे लगा के भाग पड़े।
1: भूत भूत
3: कई बार पानी पीने के बाद पानी फेंक देते थे ऊपर ही और सारे हाथते हुए।
1: वाओ वाओ, क्या बात है। मतलब लड़कियों में तो ये बात है, ये देखा मैंने, रचनात्मकता बड़ी होती है, क्रिएटिविटी बड़ी अलग से होती है।
3: जी सर। तो अभी सर हमें एक अनु पांडे जी सुन रहेंगे गोंडा से।
1: भी सुन
3: हमारी बात हुई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा था। हाँ। वो भी जुड़ी होंगी शायद, अभी उनसे भी बोलिए कॉल करें।
1: वो मेरी आवाज़, वो फेवी क्विक डाल के जुड़ी हुई हैं, वो अलग ही नहीं होती हैं, वो गोंडा एफएम मतलब 24 घंटा चलता रहता है उनका।
3: अच्छा अच्छा
1: बेशक आपकी
3: हुई थी अभी पिछले महीने ही बात हुई थी, कॉल पे ही बात हुई थी हमारे एक नीली शर्मा दीदी उनके थ्रू।
1: जी नहीं, बहुत अच्छा लगा और आप जुड़े हैं और साथ ही जो आपने बचपन की अपनी बातें बताई, लिटरली मतलब ये सब जब हम लोग याद सुनते हैं तो ऐसे याद आ जाता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। एंड बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपके साथ हुए हैं, लेकिन हाँ ये लाइफ ऐसे ही आपको हंसाती रहे और बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज दे, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़े तो आप पीछे मुड़कर जब कभी देखें तो आपको वो गुदगुदाने वाली मेमोरीज हमेशा आपके आस पास रहे। थैंक यू सो मच। सुबह ये थी हमारे साथ में रोशनी रावत जी, और देखिए कितने अच्छे से हमारी बातचीत हुई और बातचीत में पता चला कि भैया ये जो सज़ा देने के बाद दोनों लोगों को बतियाने वाला सिलसिला था ना, ये हमारे साथ भी होता था। मतलब कहते थे कि इतना बेकार नालायक बच्चा है ये कि इसको बाहर कर दो तो उसके बावजूद वहाँ भी बतियाना शुरू कर देता है, मतलब इसको सज़ा भी कौन सी दी जाए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको अपने ख्याल से आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से याद आ रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं अगली कॉलर की तरफ, देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
4: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई जी, सुप्रभात जी।
4: शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच। अपना नाम हमारे श्रोताओं को आप बता दें।
4: सर जी, मैं आशु मिश्रा बोल रही हूँ।
1: अरे क्या बात है जी, आरजे अदनान में बोल रहा हूँ, और बताइए कैसे हैं आप। आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जरा फेमस डायलॉग बताइए आप। आपको कौन सा पढ़ा है डायलॉग सबसे ज्यादा?
4: सर जी हाँ, हम लोग भी यही करते थे, पीछे बैठते थे, लेकिन हम लोग बात भी नहीं करते थे तो भी मैम बोलती थी सबसे ज्यादा पीछे वाली ही लाइन शोर कर रही है। उसमें मार खा जाते थे हम लोग, जबकि सर जी हम लोग ऐसे नहीं थे, क्लास के बहुत सीधे बच्चे थे।
1: यहाँ से हमारा बदल गया क्योंकि हम तो सीधे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, लेकिन पीछे बैठने वाला सही सेम है।
4: बहुत हम लोग डालता, और सर जी ये भी होता था जब टेस्ट होना होता था या तो मैम कहती थी कि आज ये लाइन याद करके आना है, कल हम सुनेंगे। सर जी कल हम लोग हमारे डर के नहीं आते थे, उस दिन होता भी नहीं था, न टेस्ट होता था उसके दूसरे दिन होता था, फिर हम लोग फंस जाते।
1: मुझे ये बहुत अच्छे से आपने ऐसी बात बोल दी कि इतनी बार हम फंसे हैं कि इसका कल टेस्ट होगा तो कल गायब, मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं है। परसों जब आ रहे बच्चे तो अचानक से तब हो रहा है कि चलो बेटा आज है टेस्ट, कल तो हुआ ही नहीं था।
4: और सर जी हम लोग आते थे और जो बच्चे उस दिन आना होता तो वो नहीं आते थे।
1: राइट। वाह, अच्छा टीचर से तो आपको बड़ा डर लगता था? खैर मैं डराने वालों में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ टास्क देता हूँ आपको, पता है ना
4: जी सर। और टीचर जब सर कह देती थी कि आप खड़े हो सुनाओ, अरे सर वो हालत होती थी।
1: अच्छा अगर आज हम कहें कि चलिए अब आप सुनाइए तो आप रेडी हैं?
4: बिल्कुल सर। सर डर लगता है।
1: चलिए अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक टास्क है आपको, थोड़ा सा हम ट्विस्ट करने वाले हैं आपके लिए।
4: बिल्कुल, अगर
1: आज आपकी देखिए बड़ी बहन प्रीति जी का बर्थडे है, कहिए हाँ।
4: बिल्कुल सर।
1: और आज शिक्षक दिवस है, कहिए हाँ।
4: बिल्कुल सर।
1: तीसरी बात है कि आपकी आवाज बहुत प्यारी, कहिए हाँ।
4: बिल्कुल
1: नहीं, कहिए हाँ
4: जी, जी हाँ सर।
1: नहीं सिर्फ हाँ बोलना, हाँ नहीं एक बार हाँ बोलना,
4: हाँ।
1: तो अब आपको एक ऐसा गाना गाना है जो टीचर्स और प्लस आपकी दीदी दोनों को डेडिकेटेड हो, ये आपका टास्क। अब जरा सोच लीजिए कुछ सेकंड में कि ऐसा कौन गाना है जो दोनों पे फिट बैठने वाला है, टीचर्स को भी और दीदी को भी। देखा हमने कहा था खाली टीचर्स ही नहीं ट्विस्ट करते, हम भी ट्विस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा प्यारा सा गाना जो
4: आप गुनगुनाएंगे सर?
1: हाँ प्लीज प्लीज प्लीज सुनाइए प्लीज।
4: बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँखों के तारे, हम वो नन्हे जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे,
1: मतलब एक तरह से आपने अपने बचपने को टीचर्स को याद कर लिया, दूसरी तरफ से आज हमारी प्रीति जी को वापस से एकदम जन्मदिन पर आप ले गई, छोटी सी बच्चे मन के सच्चे।
4: जी, जी को बस भी एक गाना ही सुना दूं?
1: हाँ प्लीज, अरे प्लीज प्लीज दीदी, दीदी इंतजार कर रही है कब से।
4: चंपा में चमेली, तू चंपा में चमेली।
1: अरे वाह क्या बात है, ये गाना मैंने पहली बार सुना है। ये आपने लिखा और आपने ही गाया है क्या?
4: नहीं सर, ये सर किसी सुंदर मूवी का है सॉन्ग।
1: तो सुंदर मूवी में आपने गाया था क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। आप मजाक में ले रहे हैं, चलिए खैर ठीक है, मजाक में ले लिया तो क्या ही बताएं।
4: सर जी सबसे पहले तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन,
1: बिल्कुल,
4: उसके बाद सर जी टीचर आते हैं।
1: सही बात है। एंड इसके बाद वो वाले टीचर्स आते हैं जो पढ़ाते कम है लेकिन लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताते हैं, है ना। एंड थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी बातचीत आपने की और कॉल किया उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया आपको, बेशक बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच। सुबह ही देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारी आपकी लगातार होती जा रही है। और इसी कड़ी में अब हम ले रहे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार जस्ट से हाजिर होते हैं, तब तक आप मिला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने दिल मन की बातें भी कह सकते हैं। फिलहाल आप भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते रहिए।

0: हाँ जी, और भैया इसी बीच में वक्त हो गया है ऑफ कोर्स वापस से कॉलिंग प्रोग्राम में आने का और देखने का भाई कौन कौन लोग आ चुके हैं और क्या ऑफ कोर्स कहने वाले हैं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं अगली कॉल किसकी। हाँ जी हेलो, नमस्ते, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए।
1: अच्छा, नमस्ते टीचर अंकल।
0: हाँ टीचर अंकल कैसे हो गए, पहले तो हमको इस सवाल का जवाब दीजिए।
1: इस सवाल का जवाब है ताकि मेरे को हिंदी बोलने आता नहीं था। हाँ? मैंने आपका आपका शो सुन सुन के आपसे हिंदी सीखी और लिखना भी मुझे आता नहीं था, तो चैट बॉक्स से थोड़ा टूटी फूटी जो भी मैं लिख देती हूँ उसको आप सीधी तरीके से मैं क्या बोलना चाह रही थी क्या लिखना चाहती आप बोल देते हैं, इसके लिए आप आपको मैं टीचर अंकल बोलती हूँ, टीचर अंकल बोलती हूँ। आप मेरे भाषा इतनी सही तरीके से समझ जाते हैं, इसके लिए माँ के बाद आपका ही नंबर आता है, इसलिए मैं आपको टीचर अंकल बोलती
0: हूँ। ओहो हो, इतना बड़ा दर्जा ऐसे नहीं देते हैं, लेकिन अब आपने टीचर बोल दिया है तो चलिए आपको कुछ हिंदी के शब्द बोलना सिखा देते हैं, ठीक है?
1: अरे
0: नहीं, कोई नहीं, ये बताइए लौहपथ गामिनी किसे बोलते हैं? लौहपथ गामिनी किसे बोलते हैं?
1: लौहपथ गामिनी किसे बोलते हैं?
0: हाँ जी,
1: हमें भी नहीं पता किसे बोलते हैं।
0: अच्छा कोई बात नहीं, अब बोलिए प्रत्युत्पन्न।
1: क्या?
0: प्रत्युत्पन्न। अच्छा कोई जाने दीजिए, पराकाष्ठा। गुड। दुर्बोध। हाँ गुड। किंचित। हाँ अरे वाह क्या बात है, ज्यादातर तो आपने बता ली गए। चलिए आप पास हो गई भाई, जोरदार तालियां आपके लिए कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। वैसे अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दिए ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि कौन है हमारे साथ में।
1: मैं सभी चल चुके हूँ और मैं बचपन की टीचर के एक आदत बोलूं।
0: हाँ हाँ प्लीज बताइए।
1: बचपन में हम लोग जो दिखाते थे जो बच्चे लोग साफ सुथरा होते
0: थोड़ा सा, मैं मुझे लगता है एक बार और बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि आवाज थोड़ी सी चली गई थी।
1: अभी ठीक है ताकि हमारे टीचर का आदत था क्योंकि जो बच्चे लोग स्लेट पे कुछ लिख के ले जाता था उसको नाक पकड़ के और हमने जो बचपन में जो बदमाशी की वो सब आते जब हमारे टीचर हम लोगों के घर के तरफ रहने के लिए आया था तो हमारी बचपन के सारा शैतानी सब मम्मी पापा को बोल देते थे।
0: वाह क्या बात है,
2: अमेरिका का नक्शा बना रही
0: थी। अच्छा एक चीज पूछे, आपकी हिंदी भी अच्छी हो गई है, आपका स्कूल वाला से रिश्ता भी बड़ा अच्छा था, अगर डॉक्टर की बीवी को डॉक्टराइन बोलते हैं और मास्टर की बीवी को मास्टराइन बोलते हैं तो इंजीनियर की बीवी को क्या बोलेंगे?
1: हमें नहीं पता, मैं सुनिए
0: क्या बोलेंगे? अरे वाह क्या बात है, देखिए आपके पतिदेव ने बता दिया, बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा उन्होंने ट्राई करा और बताया।
1: अरे हम तो ट्राई नहीं कर पाते, हमारे तो जीव टेढ़ा मेढ़ा हो जाता।
0: ये टेढ़ा मेढ़ा खाया करिए, आता है तो क्या होगा पैकेट में टेढ़ा मेढ़ा।
1: हाँ। वो सब चीज बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, आलतू फालतू चीज बिल्कुल नहीं खाती हूँ,
0: उना खोबे
1: कर दिया हूँ।
0: उना खोबे
1: नहीं हम आमी खाबो ना ओई सब जिनिस आमी खाबो ना आमी भालो चीज खाबो मिष्टी खाबो दही खाबो
0: तुमी ना खाबो हमू ना खाबे मतलब नहीं खाते
1: मिष्टी खाबो
0: मिट्टी नहीं खाएंगे मिट्टी नहीं खाएंगे खाना खाएंगे
1: मिट्टी नहीं मिष्टी मिष्टी मिष्टी रसगुल्ला
0: अच्छा अरे रसगुल्ला कौन मना करता है अपन तो खाता है वाह क्या बात है लेकिन बहुत मजा
1: और मैंने आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ क्या बता आपको जितना आशीर्वाद दू उतना मेरे लिए कम है जितना आशीर्वाद दू आप आगे बढ़े आपका घर परिवार और भी बड़े हो बढ़े सब कोई और भी लोग जुड़ते रहे आपसे आपसे बहुत कुछ सीखा करे आप भी उन लोगों से भी सीखते हैं हम लोग जो लोग लिसनर लोग जो कुछ बोलते हैं उनसे हमें भी सीख मिलता है आपको भी सीख मिलता है जीवन के लिए
0: हमको भी काफी
1: सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता कि जब तक जिंदा रहो तब तक तुम सीखा करो
0: अरे अभी अभी प्रीति जी ने सिखा दिया पता है क्या
1: क्या सिखाया
0: चैट बॉक्स पे कह रही हैं किसी भी नाम के आगे इन लगा दो वो फीमेल का हो जाएगा उसकी बीवी का जैसे डॉक्टर का डॉक्टर आ इन और उसके बाद हमने बताया
1: मास्टर किसान की बीवी हो तो
0: किसाइन
1: मैं किसान की बीवी हूँ किसानी किसाइन किसाइन किसाइन
0: अब भैया हमें सब कुछ जी जी बहुत
1: प्रीति जी के लिए एक गाना चाहती हूँ
0: हाँ अच्छा बताइए प्रीति जी के लिए गाना गाएंगे सुनिए सुनिए गाना हाँ। गाएंगे
1: गाना गाऊंगी
0: उनके लिए मेरा गानाइन गाएंगे आप ओके ठीक है
1: नहीं नहीं गाना गाऊंगी उनके लिए
0: ओके
1: ताकि वो जैसा उनका आदत है वो नटखट है उनका भी जो हरकत है सुनने को मिलता है देखने को मिलता है और कविता में हो चाहे कुछ में हो तो मैं उनको लिए एक गाना देती
0: हूँ अरे प्लीज प्लीज सुनाइए
1: कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गए दिल का पुर्जा पुर्जा लगा 85 झटके हो तेरा रंग है नसीला अंग अंग है नसीला प्रीति जी आपको नमस्ते
0: प्रीति जी कह रही होंगी भैया इतने छोटे तो हम बने भी नहीं जितना ये लोग बना दिए क्या बात है बहुत प्यारा
1: शुक्रिया शुक्रिया सभी को शुक्रिया
0: मतलब बहुत शुक्रिया
1: नमस्ते।
0: जी नमस्ते नमस्ते इतना अच्छा बोलती है हमारी ये सविता दुबे जी मतलब आपकी जिंदा दिली इसी से जाहिर होती है कि भाई आप नॉन हिंदी हो करके भी हिंदी में इतना प्यारा बात करती हैं लिटरली मतलब आपको तो हैट्स ऑफ टू यू सविता दुबे जी बहुत शुक्रिया एंड मुझे लगता है प्रीति जी ने आपको धन्यवाद मिष्टी के साथ भेजा है रसगुल्ला के साथ क्यों प्रीति जी एम आई राइट चलिए बताइए आप अगले कॉलर की तरफ जब तक बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है अगली कॉल पर हाँ जी हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका
3: जी गुलफ्शा सिद्दीकी बोल रहे हैं अदनान सर आप कैसे हैं
0: अरे गुलफ्शा सिद्दीकी जी बहुत बढ़िया हैं बहुत अच्छे हैं आज तो मतलब मुझे लग रहा है कि अपने उन टीचर्स को याद कर रहे थे जिनके लिए हम हमेशा से ना लायक थे
3: जी सर याद करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इतना पागल ही उन्हें कर दिया मतलब वो मुझे हमेशा यही बोलती थी कि अच्छा दिन देख के सुधर जाओ मतलब हम उनसे बोलते थे कि मैम अच्छा दिन आता कब है क्योंकि हमें 7 ही दिन पता है लेकिन ये 8वां दिन कब आता है तो वो कहती थी पागल हो खुद पागल कर दोगी हमें तो हम तुरंत जवाब देते थे कि मतलब पागल हो जाओगी तो हमें पढ़ाएगा फिर उसके बाद जो हमें मार पड़ती थी वो हम ही जानते हैं
0: नहीं मतलब आप ऐसी
3: लेकिन सर पता है ना मार खाने से पहले मेरा मुंह ऐसा बनता था कि वो मारती ही नहीं थी मुझे
0: होई होई
3: वो ऐसा ही कहती थी देखो अभी मारा भी नहीं इसका मुंह देखो पहले
0: अच्छा तो वैसा मुंह बना के हम लोगों को दिखा सकती हैं क्या इस वक्त आप
3: अभी रेडियो पे नहीं दिखा सकते ना
0: नहीं थोड़ा सा आवाज मतलब उस तरह बना करके बोल करके तो शायद हम लोग थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे
3: आवाज नहीं निकालते थे सिर्फ मुंह बन जाता था कि वो हमारी टीचर ना थोड़ा इमोशनल हो जाती थी मतलब
0: नहीं मुंह जैसे कैसे हमने नहीं किया
3: जी सर मतलब यही हमेशा यही बोलती थी सुधर जाओ बेटा अच्छा दिन देख के सुधर जाओ तो हम यही बोलते थे कि मैम अच्छा दिन आता कब है
0: तो आपको किसी एक दिन ऐसा लगा कि सही में वो दिन आया और आप सुधरे ऐसा कभी लगा या आज भी नहीं लगा
3: सर वो अच्छा दिन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा दिन होता ही नहीं, अच्छा दिन हमेशा होता है, लेकिन हमारी तो अब शादी भी हो गई लेकिन फिर भी हम सुधरे नहीं है अभी।
0: मतलब कुल मिला के आप नहीं सुधरे हैं?
3: ना ना ना।
0: और ना सुधरेंगे?
3: ना सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो शरारत करने में मजा है वो सुधरने में मजा नहीं है।
0: वाह क्या बात है भाई, जिंदा दिल होने की निशानी है वैसे ही है। बहुत सच्ची बात कही आपने।
3: जी सर, पहले पढ़ाई को परेशान किया, लेकिन आप जो है अपने हस्बैंड को परेशान करते हैं, लेकिन आप बच्चे हमारे हमको परेशान करते हैं।
0: बस अब कहते हैं ना कि सभी या कोई ना कोई पिताजी होता है।
3: जी सर, वो कहते हैं ना कि उल्टा आता है ना, जो करोगे वही मिलेगा। हमने बहुत परेशान किया सबको, तो अब हमारे बच्चे हमें इतना परेशान करते हैं, अब सोचते हैं हाँ हमने भी ऐसे ही परेशान किया था,
0: है ना। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बहुत सुनहरी यादें मुझे लगता है आपके साथ। अच्छा कोई ऐसी सीख गुलफ़शा जी जो आपको लगता है कि आज भी आप उसको मानती हैं, सच में वो उसने आपकी जिंदगी पर बहुत असर डाला?
3: जी सर, ऐसा तो कुछ याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ हमारे हम सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो हमारी जिंदगी बदल जाती है अगर उसे ध्यान से देखा जाए।
0: ध्यान से देखिए फिर बताइए।
3: क्योंकि आप भी सामने फिल्म नहीं चल रही तो कैसे देख लेता।
0: अरे आप शरारती बच्चे, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, आपने बताया अभी।
3: शरारती है तो अभी तो शरारत कर रहे हैं कि अभी सामने टीवी नहीं चल रही, टीवी चले तो।
0: अच्छा वाह क्या बात है, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके लिटरली, और ऐसी शरारत हमेशा जारी रखिए, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में जितना जवान बने रहना
3: वाले कभी नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हमारे हस्बैंड भी हमसे वो हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं आपसे तो कोई जीत नहीं सकता।
0: वो हाथ जोड़ चुके होंगे कई साल पहले मुझे लगता है।
3: जी सर, 10 साल हो गए।
0: 10 साल हाथ जुड़े हुए हो गए? माई गॉड।
3: अब मुझे
0: आगे कुछ नहीं कहना।
3: शादी के हो गए?
0: अच्छा हाँ, मतलब वही 10 साल पहले उन्होंने जोड़ लिया था। ये तो भैया
3: 10 साल पहले उन्होंने हार मान ली।
0: ये तो भैया आउट ऑफ बजट है हमारे। चलिए ये खुश मतलब अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और ये जोड़ी आप लोगों की यूं ही सलामत रहे, हस्बैंड वाइफ की बहुत सारी नोकझोंक खट्टी मिट्टी यादें,
3: एंड
0: बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच
3: जी सर, अल्लाह हाफिज़।
0: जी अल्लाह हाफिज़। और चल रहे अगली लास्ट कॉल की तरफ, क्योंकि आज की हम ये लास्ट कॉल ही लेंगे, इसके बाद जो है अब हम सीधे विदा लेने वाले हैं इस कॉल के बाद। हाँ जी हेलो।
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम सलाम, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
4: जी मेरा नाम मुसीना अंसारी है।
0: इतना सैड होके क्यों बता रहे हैं?
4: सर आपने पूछा इसीलिए।
0: हमने ऐसा तो पूछा नहीं था, हमने कहा था अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम मुसीना अंसारी है।
0: आए है मुसीना, तो कौन सा डायलॉग आपने सुना अपने टीचर से सबसे ज्यादा?
4: बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, और मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। मेरे सर की जो स्टिक होती थी, जब वो उसके हाथ में लेते थे तो कहते थे उठाओ क्या समझावन बुझावन, ये मुझे बहुत पसंद था।
0: क्या क्या क्या क्या
4: समझावन बुझावन, वो अपने स्टिक को कहते थे
0: उठाओ क्या समझावन बुझावन।
4: हाँ मारने के लिए,
0: जैसे मैं अपने,
4: लेकिन हम लोग कभी मारने वाला काम करते नहीं थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे थे।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं,
4: आफ्टर क्लास के मॉनिटर हुआ करते थे, लेकिन जो अदर स्टूडेंट होते थे जिनको मार खानी होती थी उनके लिए ये कहते थे, तो वो मुझे अब भी याद है।
0: तो मतलब जैसे मैं अपनी बाइक को धन्नो कहता हूँ, वैसे वो अपनी स्टिक को समझावन बुझावन कहते थे।
4: जी जी, और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे सर हैं, वैसे तो सबको जितने भी ऑल इंडिया के टीचर्स हैं प्रेजेंट में या जो रह चुके, उन सभी को मैं टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात, मेरे सर आपके स्टूडियो में भी है मनु सर, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। वो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे हमारे कॉलेज में।
0: अरे हम तो ढूंढने लगे कि इस टाइम कौन है हमारा।
4: तो स्पेशली मैं टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगी।
0: अच्छा।
4: और एक बहुत ही अच्छा किस्सा है केमिस्ट्री के सर के साथ में, मैं वो साझा करना चाहूंगी
0: प्लीज।
4: असल में हमारा फेस्टिवल कौन सा था, इंडिपेंडेंस डे था या रिपब्लिक डे, ये मुझे याद नहीं, लेकिन वो दिन फ्राइडे दिन का था, फ्राइडे था उस दिन।
0: अच्छा।
4: तो टाइम हम लोग के पास कम था क्योंकि छुट्टी जल्दी करनी थी। तो हमारा एक, हम 4 लोगों का ग्रुप था, तो कुछ लाइनें बोलनी थी। वाह क्या बात है, उसका अनुमान ये था। तो मतलब वो सारे टीचर्स के ऊपर ही हम लोगों ने डिक्टेट किया था, वो था दूसरे टाइप में, लेकिन उसको हम लोगों ने अपने टीचर्स में डिवाइड किया था। जैसे बंदूक की गोली का, प्रिंसिपल सर की बोली का, नहीं खुदा बचाए, वाह वाह वाह वाह। और तो हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हमने अपने सर से कहा, केमिस्ट्री वाले सर से, वो हमें बहुत मानते थे और तो सबसे अच्छे सर हमारे वो थे केमिस्ट्री के सर।
0: अच्छा।
4: तो मैंने उनसे कहा सर प्लीज प्लीज परमिशन दिलवाइए ना, हम लोग बस ज्यादा वक्त नहीं, पांच मिनट। तो सर ने सर को कन्विंस किया, प्रिंसिपल सर को, और सर ने कहा ठीक है पर ये लास्ट होगा, इसके बाद बच्चे कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग मान गए कि हाँ ठीक है। तो पता है केमिस्ट्री वाले सर हमारे बहुत ही पतले दुबले थे, उनके ऊपर हम लोगों ने कौन सी लाइन बिठाई, चुड़ैल की बाल से अमर सर की चाल से खुदा बचाए, वाह वाह वाह वाह। हम लोग स्टेज पे ही थे और जो सर की घूरती हुई निगाह हम लोगों पे पड़ी, हम लोग वही हंसने लगे सर स्टेज पे, हमने ऐसे घूरा कि हमने आपको परमिशन दिलवाया, आपने हमारी इज्जत का खतरा कर दिया। तो वो सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ बताने के लिए कि मेरी कॉल रिसीव हो और मैं बता सकूँ, अब बता दिया, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने साझा की ये बात, तो वो सर अब भी मुझे उस सर की निगाह याद आती है ना, मैं अगर अकेली होती हूँ इवन कभी सोचती हूँ स्कूल की कोई बात, तो ये बात मेरे लिए फर्स्ट होती है, पहले अमन सर ही याद आते हैं।
0: अमन सर मन में गाते होंगे, इस

0: स्टेज पे जाने की और मेरे इज्जत का ही कचरा कर दिया। और वैसे सर उस दिन हम लोगों ने किसी भी सर को नहीं छोड़ा था, सबके लिए कुछ न कुछ लाइनें बिठा के रखी थी।
1: मतलब बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया आपने।
0: जी, जैसे कि वो हमारे यादव सर थे, वो हमारे बायोलॉजी के सर थे, तो वो उनकी आदत थी हाथ पीछे करके, एक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे हाथ होता था और एक अपने कमर पे रख के करते थे। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी कोई लाइन थी, वो भूल गई मैं, लेकिन प्रिंसिपल सर और अमन सर के लिए जो लाइनें लिखी थी हम लोगों ने वो हमको अभी भी याद है।
1: बहुत ही गोल्डन मेमोरीज और बहुत अच्छी शेयरिंग आपने की, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल भी किया।
0: थैंक यू बहुत सारा, थैंक यू
1: सो मच, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज। सो भाई ये देखिए, एक कॉल ऑफ कोर्स हमको की गई मोरबी गुजरात से, और कितनी अच्छी शेयरिंग आप सब लोगों ने की। जाने से पहले आशु जी ने बोला, सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। नाजिया अंसारी हेलो, एंड प्रीति जी बोलती हैं, सर जी मेरा कॉन्टैक्ट ज़रूर पढ़िएगा। ऑल राइट, सो चलिए भाई, आपका कंटेंट आपने भेज दिया है वो भी हम ज़रूर देख लेने वाले हैं, क्योंकि आज आपका बर्थडे भी है। लेकिन इसलिए नहीं कि बर्थडे इसलिए पढ़ रहे हैं, हम ऐसे भी पढ़ते हैं, मतलब अच्छे बच्चे हैं। इसके अलावा जो है, महेंद्र ने लिखा है, वो भी आ गए हैं, और आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डाकिया की बीवो को क्या बोलेंगे, डाकिया इनकी बीवी, डाकिया इन बोलेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक हम जानते हैं, हम जो अपना वाला वो फॉर्मूला लगाते हैं, इन वाला जो बताया हमारी प्रीति जी ने। लोहपत गामिनी शमा जी ने लखनऊ से बोला है, रेलगाड़ी वो बोलेंगे लोहपत गामिनी। और राइट, सो टीचर अंकल मज़ा आ गए हैं सुनकर। इम्तियाज़ अहमद मौजूद है, आपका भी स्वागत है। सैनी पांडे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सैनी, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और बहुत शरारत करते थे आप लोग भाई, आप लोगों के मतलब मैसेज सेल ही लग रहा है कितने शरारती रहे होंगे। सुजीत जी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। गुड मॉर्निंग अदनान सर, कैसे हैं आप? शमा जी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। एंड यस, सबसे बढ़िया क्यूट से बालक, सीधे साधे भोले वाले गाय की तरह, किसके बारे में बताया आपने? एंड नाजिया अंसारी लिखती है, अदनान सर आप बहुत बेहतरीन हैं। अच्छा, हमें लगा थे, नहीं, टी एच ही नहीं है, खाली एच ही है। गीता श्रीवास्तव जी हमारी आ गई हैं, टीचर्स डे की आप सभी को बधाई, आपको भी बधाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। गुड मॉर्निंग आरजे सर लिखा, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और सैनी कहते हैं, सर हमारे गुरु जी हमको बोलते थे, गधे तुम सबसे पीछे कहे बैठते हो। सो गधा, नालायक, बदतमीज़ और मछली मंडी वाले, कबाड़ी, ये सब तो बहुत बोले गए हैं, हम सब लोग बोले गए। महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, शिक्षक दिवस की आपने भी शुभकामनाएं प्रेषित की है, थैंक यू सो मच। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी, आपको भी गुड मॉर्निंग टू यू। अकबर कुरैशी जी नवाबगंज से, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। उस्मान खान, आपका भी स्वागत है, हैप्पी टीचर्स डे टू यू, वालेकुम अस्सलाम। एंड इसके बाद जो है वो अनूप जी के हमारे ऑफकोर्स लिख ही चुके थे कई सारे चीज़ें, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया, आई होप कि आज का ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मोहसिना अंसारी भी आ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। आप सब लोगों को आज का ये शो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे इंतज़ार है आपके बताए जाने का कि भाई आपको ये शो कैसा लगा है, कितना पसंद आया है, क्योंकि मुझे ज़रूर आपसे ये समझना है, ये सुनना है। और फिलहाल अब हम ले रहे हैं विदा आपसे, सो आज के शो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। एक बार वापस से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन धूम तो अभी होगी ना, जब तक हम कैसे पढ़ ले प्रीति जी का, ऑफ कोर्स कंटेंट भी तो है। ऑलराइट, तो चलिए बताते हैं कि आपने लिखा है आत्म प्रशंसा। मैं जन्मदिन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली हूं कि शिक्षक दिवस के दिन मैं इस धरा पे आई, क्योंकि शिक्षक दिवस के बहाने जन्मदिन मेरा पूरा देश में मनाया जा रहा है, जिससे प्रफुल्लित हूँ मैं, अति प्रसन्न हूँ मैं आज, यही सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। इस उपहार के आगे सब बेकार, जीवन में मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए, पर मैं शिक्षक बन के खुशी थी सदा, और भविष्य में भी खुश रहूंगी, चाहूंगी शिक्षक पद का रहकर सदा। क्या बात है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर मेरा भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे। क्या बात है, बहुत प्यार से आपने इस चीज़ को डिफाइंड किया है प्रीति जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आप लोगों को प्रीति जी का लिखा ये कॉन्टेंट ज़रूर पसंद आया होगा।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: 89.6 FM के श्रोतागण, आज हमारी गांव की गूंज की टीम एक नए ऐसे गांव में है जहां मिट्टी खुद संगीत को पैदा करती है। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के उस सुंदर और ऐतिहासिक गांव पिपराइच में।
6: तो चलिए चलते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है।
7: चलते हैं उस गांव में और वहां जा कर के भोजपुरी गाने गाते हैं, क्योंकि भाषा वही अच्छी लगती है जहां जन्मी हो।
8: आओ आओ सब लोग, समता, जया, गीता दीदी, अरे इधर आइए आइए। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ की दादी माँ से।
3: दादी माँ नमस्ते।

0: हाँ हाँ बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़ जैसे जिलों में भी भोजपुरी की मिठास हर घर घर में पाई जाती है।
1: और बिहार में छपरा, आरा, बक्सर, सिवान, सारण, वहाँ तो हर गली में भोजपुरी के लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है।
2: और मालूम है आपको, मॉरिशियस, फिजी, सूरीनाम और नेपाल तक भी भोजपुरी बोली जाती है। यह सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीयों की पहचान है।
1: तो आओ चलें,
3: हम सब मिलकर एक प्यारा सा भोजपुरी गीत गाते हैं।

0: तुम लोग जानती हो ना, भोजपुरी का नाम पड़ा है भोजपुर क्षेत्र के नाम पर, जो बिहार में स्थित है।
1: इस भाषा में संस्कृत, हिंदी और मगही का सुंदर संगम मिलता है।
2: भोजपुरी गीतों में जीवन के हर रंग है, जन्म, विवाह, खेती, तीज त्योहार, होली और छठ भी।
3: छठ पर्व के गीतों की बात ही अलग है, उसमें आस्था और माँ गंगा के प्रति समर्पण झलकता है।
1: तो चलिए चलते हैं, क्यों ना हम लोग भी एक प्यारा सा सुंदर सा भोजपुरी गीत गा लें। जब

0: अरे देखिए ना, भोजपुरी गाते बतियाते हम लोग कितनी दूर निकल आए, और वो देखिए हम लोग तो खेतों के पास आ गए हैं, जहाँ हमारे किसान भाई कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और साथ में सुंदर सुंदर भोजपुरी गाने भी गा रहे हैं।
1: क्योंकि गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए थकान भी भाग जाती है और मन भी खुश रहता है। पसीने की हर बूंद अमृत सी लगती है और माटी की सुगंध तो बस मन में बस जाती है।
2: मालूम है किरण, पहले शादी में 3-3 दिन तक लोग गीत चला करते थे।
1: अच्छा,
2: दुल्हन की बहनें, भाभियां, सहेलियां सब मिलकर खूब गीत गाती थी, बड़ा मजा आता था।
3: और होली पर तो सब लोग एक साथ गाते हैं और खूब भर भर कर गुलाल और रंग भी खेलते हैं।
1: सच में कितना ज्यादा मजा आता होगा। आओ हम लोग भी मिलकर कुछ भोजपुरी गीत गाते हैं। आओ सब लोग, अरे बुला रही हूँ, आओ आओ।
4: दिन भर चाहे जहाँ रहूं हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ

0: लोग पिपराइज गांव के घाट के पास खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जैसे लग रहा है कि हवा में भी संगीत खुला हुआ है।
1: सच कहा तुमने समता। इस घाट को देखते ही एक ही पर्व याद आता है।
2: क्या
1: पूछो? कौन सा?
2: कौन सा?
1: छठ महापर्व है ना। कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य। देखो जगह जगह पे दीपक जल रहे हैं, चूल्हे पर लोगों के पकवान पक रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं, बस जाऊं।
3: छठ पर्व पर पानी, सूर्य देवता की पूजा, माँ गंगा का आशीर्वाद और भोजपुरी गीतों की मधुर धुन सुन करके कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले नहाए खाए, फिर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। और इन 4 दिनों में पूरे गांव में जो गीत गूंजते हैं ना, वो तो मन को छू ही लेते हैं। क्यों गीता दीदी, मैं सच कह रही हूँ ना?
1: बिल्कुल, एकदम सत्य कहा है तुमने किरण। मालूम है किरण, मुझे बचपन से एक गीत बहुत पसंद है जो छठ के समय हर घाट पे सुनाई देता है। केलवा के पात पर उगेला रा सूरज देवा, सुना है ना?
2: हाँ सुना है।
1: तो चलो गाते हैं ना इस गीत को।
2: चलिए गुनगुना लेते हैं थोड़ा सा।

0: करेलू संग भरतिया से झाके झूके।
1: मजा आया ना?
2: यही गीत मुझे बहुत पसंद है।
0: मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
3: और पता है छठ का सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है।
1: हाँ, जीवन भी तो हमें यही सिखाता है ना, हर परिस्थितियों में श्रद्धा और कृतज्ञता होनी चाहिए। ये गीत पीढ़ियों से गाए जा रहे हैं और हर बार वही पवित्रता, वही भावना लेकर आते हैं। कोई

0: अब शाम की परछाइयां लंबी हो रही हैं। सूरज अपनी लालिमा को समेटकर घर की ओर वापस लौट रहा है। दूर मंदिर से सुनाई दे रही है शंख की ध्वनि और चूल्हे से उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि गांव अब विश्राम करना चाहता है।
1: भोजपुरी की असली खूबसूरती यही है, इसमें दिखावा नहीं सिर्फ सादगी है। जैसे यहाँ के लोग वैसे ही उनके बोल एकदम खरे और मीठे।
2: मन तो बहुत भारी है पर समय की पाबंदी है। इस पावन मिट्टी को नमन करते हैं और इस सफर को विदा कहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और पगडंडी पर। रव्वा सुनत रहें 89.6 FM इहा गांव की गूंज।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944-999।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
9: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
9: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
12: हुक्कई से खेलन जाइबो,

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9976 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

ओर ले जाते हैं, अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर ले जाते हैं। अपनी सीख से वो हमारे जीवन को सजाते हैं। सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, हमें सही मायने में एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अंधेरे से निकाल कर वो रोशनी की ओर ले जाते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम वम वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला और पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली, और मैं हूँ आपकी देखा यही होता है भाई, सुन सहेली। सहेलियाँ जब आती हैं तो वो ऐसे क्या कहते हैं ना, सहेलियों से बात करना जो है वो मन में ऐसा बसा हुआ है, ऐसा एक कहते हैं ना कि खुमारी है कि कुछ और तो जुबा पे आता ही नहीं। तो वो सहेलियों की गपशप मुझे भी बहुत याद आती है और मैं उसे मिस भी करती हूँ, इसलिए मेरे जुबान पे सुन सहेली का नाम आ गया। और आपको यहाँ बैठे बैठे यानी कि 12 बजे ही हमने सुन सहेली में पहुँचा दिया। सो सुन सहेली नहीं, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा और बहुत ही पसंदीदा वाला शो जो कि है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आज है सैटरडे, यानी कि हमारा बहुत ही प्यारा वाला दिन जिस दिन हम करते हैं बॉलीवुड की गलियों की सैर, यानी कि आपको बताते हैं आज कुछ पॉजिटिव बॉलीवुड न्यूज़, कौन सी फिल्म जो किसने बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल किया ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस फिल्म ने आज ही के दिन रिलीज हुई थी और उसने अपने कितने साल कंप्लीट किए हैं। सो हमारे पास आज बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती है आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो लिसनर्स फटाफट से आ जाएं और अपनी कमर की पेटी को कस लें, क्योंकि टाइम हो गया है रोलर कोस्टर में जाने का और उसमें सैर करने का। लेकिन आज बहुत ही खास दिन है, जैसे कि आते ही मैंने चार लाइन से शुरुआत की थी और वो चार लाइन आज के दिन जो डेडिकेट करते हैं हम वो हमारे टीचर्स को, क्योंकि आज है 5 सितंबर, 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे है आज। और आज का दिन होता है हमारे शिक्षकों को समर्पित, जिनका कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल सही। तो आज उसी पर मेरे पास एक पोएम है जो मैं अभी पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ इन पंक्तियों के माध्यम से कहने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एक बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा ना कि कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे की जो परवरिश होती है वो माता पिता के हाथों होती है, और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है तो वो उसके टीचर के हाथ में हो जाती है। वो उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, संवारते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे किसे समझना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारी सारी की सारी जो समझ होती है वो एक तरीके से तभी विकसित हो जाती है। सो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें, और चीज़ों को समझने के लिए हमें हमारी टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो लिसनर्स आज जो उन्हीं का दिन है, उन्हीं को डेडिकेटेड है, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, तत्तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यही है कि गुरु जो होता है वो अपने में सब कुछ होता है, और विद्यार्थी के लिए यानी कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है। तो आज हम बात करेंगे, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी कविता से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये कविता पसंद आए। ज्ञान का दीप जलाकर मन में अज्ञान का तिमिर मिटाते हैं, कभी डांटते हैं प्यार से हमको, कभी प्यार से गले लगाते हैं, गिरते हैं जब राह में हम, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, अक्षर हमें सिखाकर दुनिया की पहचान कराते हैं, मेहनत के से आगे बढ़ना है हर पल यही पाठ पढ़ाते हैं, माता पिता सा आदर पाकर जीवन को महकाते हैं, ऐसे प्यारे गुरुवर को हम शीश शीश नवाते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं। सो लिसनर्स बिल्कुल, और आज का ये दिन आई होप मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सभी को भी अपने अपने टीचर्स की याद आई ही होगी, क्योंकि हम सब ऐसा होता है ना कि टीचर्स से एक रिश्ता सा बन जाता है,
एक प्यारा बॉन्ड बन जाता है कि उनसे कुछ भी कहने से पहले ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं मैम से ये कहूँ, सर से ये कहूँ या ना कहूँ, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता और एक बहुत प्यारा वाला उनका और हमारा बॉन्ड हो जाता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है ये। तो आइए आज इसी रिश्ते पर और भी सारी बातें करेंगे, और भी कुछ आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि लाइफ में कहीं ना कहीं कई बार हम हर सिचुएशन से सीख सकते हैं, हर पल से सीख सकते हैं, लेकिन सीखना कैसे है वो मेन है। तो बताएंगे और आगे बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन इससे पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो यहाँ महेंद्र जी दिख रहे हैं मुझे जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं और इसी के साथ वो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आर्जी अंशिका जी, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे आपको भी महेंद्र जी, नमस्ते, कैसे हैं आप, अपना हालचाल ज़रूर बताइए और सभी लिसनर्स से भी कहना चाहेंगे कि फटाफट से आइए। तो आइए लिसनर्स, फिलहाल चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जैसे कि आज टीचर्स डे है तो टीचर्स पे ही सुन लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं और बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका कि नाम है ज्ञानश्री लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

शहर की धड़कन और गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर से वापस आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, लेकर के आपका अपना वाला बहुत ही प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। सो आज और भी बातें होंगी ज्ञान असली लाइव में, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले आइए, आज है बहुत ही प्यारा सा दिन, जो कि अभी हमने आपको पोइट्री सुनाई जो थी टीचर्स डे पे, तो आज है टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे को लेकर के बात करते हैं, और कहते हैं ना कि जब भी हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हमारा जो भारतीय इतिहास कहीं ना कहीं होता है वो कुछ ना कुछ, हमारा जो कल्चर होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। तो आज इसी कल्चर से और इसी हिस्ट्री से कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिसने कि दुनिया को एक नई राह दिखा दी, और ये जोड़ी थी गुरु और शिष्य की, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर की, जो कि बहुत ही प्यारी सी जोड़ी होती है। और ये परंपरा कह लें या ये कह लें कि ये ट्रेडिशन जो है वो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। तो आज इतिहास के पन्नों से, यानी कि हिस्ट्री के और पेजेस से कुछ जोड़ियां हम लेकर के आए हैं कि जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं। सो आइए बताते हैं आपको, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद की जोड़ी कुछ ऐसी ही थी, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट एक स्टूडेंट और टीचर की जोड़ी मानी जाती है, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिभा को, यानी कि उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें तराशा, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर जो देश को आज़ाद कराने की भावना थी उसे एक लक्ष्य की तरह साधा। और बिस्मिल जी की शहादत के बाद आज़ाद ने उनके संकल्प को आगे बढ़ाया और अंतिम सांस तक खुद को आज़ाद रखते हुए देश पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर

अच्छी मानी जाती है। दोनों में अटूट विश्वास के साथ साथ अखंड भारत साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जोड़ी सिखाती है कि अगर आपके गुरु का आपके पास एक मार्गदर्शन हो, गाइडेंस हो, उनका प्यार हो, तो फिर आप इतिहास भी बदल सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य का राजा बनाने में पूरा पूरा पूरा जो उनका सपोर्ट किया था, वो कहीं ना कहीं चाणक्य ने ही उनका पूरा सपोर्ट किया था। अगर दूसरी जोड़ी की बात करें तो सबसे अच्छी जोड़ी है धनुर्धर अर्जुन और द्रोणाचार्य की जोड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जैसे कि कहते हैं कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की जोड़ी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था गुरु द्रोण के लिए, और इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही समय से, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया के कल्चर से चली हुई आ रही है और आज भी है कि हाँ, मानते हैं कि मायने बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, पहले जैसे नहीं है चीज़ें अब, लेकिन प्यार, सम्मान और रिश्ता अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। बस कहते हैं ना कि रूप बदल जाते हैं चीज़ों के, तो कुछ वैसा ही है कि रूप ज़रूर बदल गया है पर चीज़ें आज भी वही हैं, वैसी ही हैं, बिल्कुल वैसी ही, कुछ भी नहीं बदला है, ज़रा सा भी नहीं बदला है। प्यार वही है, इज्जत वही है, रिस्पेक्ट वही है, सब कुछ कहीं ना कहीं वही है। हम भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे अपने टीचर्स से और बाकियों से मिलते हैं, जो कि हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी सीख देते हैं। तो आज के दिन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है तो उसे स्पेशल फील कराइए और कहीं ना कहीं उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करिए, क्योंकि रिश्तों की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। हम सोचते हैं ना कि रिश्ते ऐसे ही चल जाते हैं, ऐसे नहीं चलते, बस उन्हें निभाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। और आज के दिन आपको ये जो हमने हिस्ट्री से दो तीन जोड़ियों के बारे में बताया, ये ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने मिलकर, कहते हैं ना कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर इतिहास बदल दिया, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं हम भी अगर मिल जाएं, कहते हैं ना कि अगर एक पीढ़ी जिसमें अनुभव हो और एक जिसमें नया जोश हो, नई चीज़ें हों, अगर वो दोनों ही मिल जाएं तो फिर क्या ही कहना। इसीलिए सोचें, समझें और अपने टीचर्स को सपोर्ट करें, यानी कि वो जो भी कहें उसे माने और कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानासली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलिए अब आगे बातें करते हैं, क्योंकि भाई अब टाइम हो गया है हमारा बॉलीवुड की गलियों में कुछ घूमने का, टहलने का और कुछ बातें वहाँ से ले करके आने का। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे बॉलीवुड की गलियों में सबसे पहली खबर के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनिया तिवारी जी, जो कि लिख रही हैं हाय एवरीवन। हेलो सोनिया जी, कैसी हैं आप? और इसी के साथ महेंद्र जी लिख रहे हैं हम मस्त हैं, आप कैसे हो मैम जी? मैं अच्छी हूँ। सो आइए अब चलते हैं और नेक्स्ट वाले हमारे बॉलीवुड की न्यूज़ की तरफ, बताते हैं आपको कुछ बातें जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आज जो न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए पैरा ओलंपिक चैंपियन मुरलीकांत पटेकर के किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। सो ये उनकी काफ़ी कड़ी मेहनत और खूब सराहना के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। आज के दिन उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा आता है यामी गौतम, जो कि यामी गौतम को भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है। तो मैं बता दूं कि यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया है। साथ ही हाल ही में हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में भी रणवीर सिंह ने फिल्म धुरंधर के लिए बेस्ट एक्टर और यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी जीता है। सो ये थी आज की ये न्यूज़ कि भाई किन्हें किन्हें मिले हुए हैं कुछ न्यू अवार्ड्स अभी बस। तो आपने सुना कार्तिक आर्यन और यामी गौतम के बारे में। अब आते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर वो कौन सी मूवीज़ हैं जो कि भाई जिन्होंने धमाल धमाल धमाल अभी तक बिल्कुल धमाल मचा रखा है। तो अगर बात करें कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल की, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस मूवी ने धमाल किया हुआ है वो कम बजट में बनी हुई मूवी, जैसे कहते हैं ना कि मूवी का बजट जितना होता है मूवी उतनी चलती है, हमारे मन में यही होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें हनुमान अंश की जो कि बनी हुई है, तो उसने बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल मचाया हुआ है। और साथ ही साथ इसके अलावा सनी देओल, वरुण धवन और दलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर साढ़े कम से कम इस समय धमाल मचाया हुआ है और शानदार उसने कमाई भी की हुई है। निर्माता करण जौहर ने भी बॉलीवुड की इस धांसू वापसी के लिए खुशी जाहिर की है। बिल्कुल बॉर्डर 2 से और करण जौहर ने भी बॉलीवुड में वापसी की हुई है। सो ये थी बॉलीवुड की न्यूज़ कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन अभी हमारी न्यूज़ जो है वो यहीं तक नहीं है। आज के दिन यानी कि 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में यानी कि थिएटर्स में आई थी टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार एक्शन मूवी, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, दो थी बागी 4। और 5 सितंबर 2026 को ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी, और आज ही के दिन इसने पूरे एक साल पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त और सोनम बाजवा भी थे। सो ये थी कुछ न्यूज़ बॉलीवुड से जुड़ी हुई कि क्या कुछ हो चुका है और किस तरीके से कितने कितने अवार्ड्स जो हैं वो मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो ये दिन है ये बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है, बस कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि चीज़ें तो बहुत सारी हमें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, बस नज़रिए की बात होती है कि हम उसे किस नज़र से देख रहे हैं। और अगर आप नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद बदल जाती हैं, इसलिए ज़रूरत होती है नज़रिए को बदलने की। सो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आऊँगी उस पार लेकर के बॉलीवुड की कुछ और नई यानी कि न्यू वाली न्यूज़ भी हैं। भाई ये भी न्यू थी लेकिन बिल्कुल अपग्रेड न्यूज़ भी हमारे पास है, वो भी आपको बताएंगे। सो आइए लिसनर्स चलते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: बिल्कुल, गोंडा शहर की धड़कन। और भाई, धड़कन जो है वो धड़क रही है और धड़क धड़क कर आज के दिन किसी को याद कर रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे किसे याद कर रही है। भाई, अभी तक हमने बॉलीवुड की गलियों की सैर की, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी बताई, लेकिन कुछ है जो हमारी नजरों से छूट गया। लेकिन हमारी नजरों से कुछ भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि अब बारी आती है उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने की, जो कि आज के दिन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज है टीचर्स डे, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के रिश्ते पे बहुत ही प्यारा सा और कहीं ना कहीं हमारा जो बॉलीवुड है वो भी इसे लेकर बिल्कुल अछूता नहीं है। यानी कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बॉलीवुड में भी हैं जिन्होंने कि इस रिश्ते पे बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से हम समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में और जानते हैं कुछ यादें, फिर से वही बचपन वाली रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि बॉलीवुड में फिल्मों की, तो सबसे पहले जिस फिल्म का नाम आता है स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते को लेकर के, वो है, उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर मतलब वो ऐसी फिल्म जिसको कि क्या कहते हैं कि कितनी भी बार आप देखो बट मन नहीं भरता है। ऐसी जिसमें कहते हैं ना कि एक बच्चा जो एक मेंटल कंडीशन, एक मेंटल कहीं ना कहीं डिसऑर्डर से जूझ रहा था और वो थी डिसलेक्सिया, और उस बच्चे को उसमें छिपी हुई कहीं ना कहीं उसकी स्किल को उसकी टीचर ने पहचाना और उसे पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो उसने पढ़ाई भी पूरी की, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया और कहीं ना कहीं वो बाकी बच्चों से वैसे ही रहने लगा जैसे बाकी बच्चे रहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसमें भी एक जज्बा आया कि हाँ, मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ भी जिया जा सकता है, ये एक जज्बा उसके अंदर उसके टीचर ने डाला। सो कहीं ना कहीं इसीलिए कहते हैं कि एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो तारे ज़मीं पर, जिसका कि गाना भी अभी अभी हमने सुना था, बम बम बोले मस्ती में डोले। और दूसरी अगर एग्जांपल की बात करें जो कि बॉलीवुड के लिए है, वो है सुपर 30। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30, जिसमें कि ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार की लाइफ को दिखाया है कि किस तरीके से आनंद कुमार की उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। और ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक बार, अगर जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा ये नहीं देखती, पढ़ाई ये नहीं देखती कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक उसी तरीके से कुछ ना होते हुए भी, मतलब बहुत सारी उनके पास चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को उन्होंने पूरी तरीके से तैयार किया। सो एक टीचर के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जज्बा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। और जिन्हें भी लाइफ में ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लकी भी होते हैं। तो मुश्किलों से लड़कर हमें जीतना सिखाती है सुपर 30, जो कि ऋतिक रोशन की फिल्म। और अब बात करते हैं एक अलग सी फिल्म की, इसमें भी एक अलग स्टोरी है, जो कि रानी मुखर्जी की है हिचकी, जिसमें उन्होंने नैना माथुर के किरदार को निभाया था, जिसे कि टॉरेट सिंड्रोम था, मतलब उसे एक बीमारी होती है, पर शिक्षिका का किरदार भी इसमें निभाती हैं। उन्होंने एक ऐसे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे पढ़ते थे, और ऐसे बच्चे थे जो कि कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं जो सिचुएशन होती है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हम सिचुएशन के खिलाफ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाना और उन्हें सुधारने का काम शुरू किया जो कि ऐसे ही हो गए थे। सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्हें समझ नहीं थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें सुधारने का जिम्मा लिया, जिन्हें सब बेकार समझते थे उन्हें अलग अलग तरीकों से पढ़ा कर इतना अच्छा बना दिया कि उन्होंने भी ये सीखा कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जज्बे से उन बच्चों की ज़िंदगी बदल गई और ये सब हुआ उनकी टीचर यानी कि नैना माथुर जी की वजह से। तो ये भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी और कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो दिखाती है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से जो एक कहते हैं ना कि चीज़ों को बस समझना है और नज़रिया बदलना है उसके बाद सब कुछ कहीं ना कहीं आपके साथ ही हो जाएगा। तो ये भी हमने देखा। और अगर बात करें टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की और उसमें बात करें अगर ना करें हम मोहब्बतें मूवी की तो कुछ अधूरा रह जाता है। मोहब्बतें जिसमें कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो उसमें होते हैं यानी कि जब वो जाते हैं राज आर्यन और उसमें जो नारायण शंकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में खालीपन होता है उनकी बेटी की मौत को लेकर के। लेकिन जो शाहरुख खान जी होते हैं यानी कि राज आर्यन वो उन्हें नई तरीके से जीना नए नज़रिए को दिखाता है और ये समझाता है कि प्यार में भले ही थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत भी होता है, इसलिए हमें प्यार से कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, बस उसे समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है लसनास कि रिश्ते बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत होते हैं, बस हम उन्हें किस तरह देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जो कि हमें ले जाती हैं पुरानी यादों की गलियों में और याद दिलाती हैं इस खूबसूरत रिश्ते को। तो आज के दिन आप भी इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें और आपके पास जो आपके टीचर्स हैं उनको स्पेशल फील कराइए और उनके साथ खुशी और मस्ती से रहिए। तो आइए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं और जाते जाते हमारे पास अभी कुछ और चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलती हुई सॉन्ग के उस पार स्टेशन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो, जिसका नाम है ज्ञानस्ली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि अभी तक हमने बात की टीचर और स्टूडेंट के रिश्तों को लेकर के, और काफ़ी कुछ आपको बताया और कुछ बॉलीवुड की न्यूज़ भी बताई, जैसा कि हर सैटरडे हमारा होता है बॉलीवुड वाला डे। तो आइए अब चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि हमें बताती है कि भरोसे की ताकत क्या होती है। यानी कि जब भी आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो क्या उस भरोसे की इम्पोर्टेंस होती है। तो आज की हमारी स्टोरी जो कि है, वो है भरोसे की ताकत, और ये स्टोरी है नवीन कुमार और रोहन की। नवीन कुमार जो थे, वो एक संस्था चलाते थे, यानी कि एक कोचिंग चलाते थे, और उनकी कोचिंग में एक दिन पढ़ने आया एक लड़का जिसका नाम था रोहन। उसके पिता जो थे वो श्रमिक थे, और उनके पास किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। उसका खुद पर से भरोसा धीरे धीरे उठने लगा था। रोहन को ये लगने लगा था कि उसके पिता की इतनी आय नहीं है, घर में इतने पैसे नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी मज़बूत नहीं है। सो कैसे वो पढ़ेगा, आगे जाएगा, क्या करेगा अपनी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल थे। धीरे धीरे उसे इनसिक्योरिटी होने लगी। जो बच्चे वहाँ आते थे, जो अच्छे संपन्न घरों से होते थे, उनसे उसे इनसिक्योरिटी होती थी। धीरे धीरे इस बात ने उसके अंदर, एक कहते हैं ना कि जैसे कहीं खालीपन सा ला दिया, उसके नंबर कम आने लगे। एक दिन उसने रोते हुए सर से कहा, सर अब बहुत हो गया, मैं इस परिस्थिति से और जूझ नहीं सकता, मैं इस कंडीशन को और फेस नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी। मेरी किस्मत में भी शायद वही लिखा है जो औरों की किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा होता है, कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी स्थिति वैसी नहीं है। सर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बेटा और कहा, बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त हमारी किस्मत हमें वो सारी चीज़ें दे जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी आँखों में मेहनत है, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी आँखों में दिखता है कि तुम मेहनत कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम खुद पर शक मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। नवीन सर के उन शब्दों ने उसके भीतर कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी लाई। उसने दिन रात एक करके मेहनत की, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसने न सिर्फ अपनी क्लास को पास आउट किया बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक भी हासिल की। और उसके बाद जब उसका अगला पेपर हुआ तो पूरे प्रदेश में उसने फर्स्ट रैंक हासिल की, और सरकार की तरफ से उसे स्कॉलरशिप भी मिली, और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी पूरी की और अपना एक करियर भी बनाया। लेकिन नवीन सर और रोहन की एक स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि भरोसे की ताकत क्या होती है। जब हम पर कोई विश्वास करता है और हमारे भीतर छिपी हुई जो ताकत होती है उसे देख लेता है, तो हम खुद भी नहीं देख पाते हैं, और वो होते हैं हमारे टीचर, यानी कि हमारे गुरु। इसीलिए कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो भरोसे की ताकत कहीं ना कहीं होता है, और हमेशा लाइफ में एक मजबूत कहते हैं ना स्तंभ की तरह आपके काम आता है। काम आना इन द सेंस कि आपको आगे लेकर के जाता है, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसी सॉन्ग के मिड में आऊँगी मैं आपको बाय बोलने के लिए। सो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप सभी बने रहे हैं आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

हवा में जो उड़ता फिरेगा तो टीचर का डंडा पड़ेगा। लेकिन डंडा भी क्या होता है ना कि हमारी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए ही हमेशा हमें मार भी पड़ती है। मतलब टीचर जब भी डांटते हैं तो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए होता है कि बेटा पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपके टीचर आपको डांटें तो समझें कि वो चाहते हैं कि आप और बेहतर बने, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, स्किल है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। तो बस इसीलिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मार, थोड़ा सा दुलार और बहुत सारी केयर, ऐसा ही होता है ये रिश्ता। तो आज इसी प्यारी सी बातों के साथ और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और हाँ, रेडियो ज्ञानांजलि 89.6 FM को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सुनते रहिए, बाय बाय नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अभी मुझे आपसे सुन सहेली में मिलना है। लेकिन फिलहाल के लिए टेक केयर।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट द्वारा समर्थित सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अगले भाग में, और आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और हमारे साथ हैं आज हम सभी की प्यारी टीकन जी। जी हां टीकन भाभी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद। बिल्कुल, और जैसा कि कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, अगर तन मन स्वस्थ है तो धन की भी बचत होती ही रहेगी। आरजे जी, मैंने तो सहदिया जी से कह दिया कि जी तुम तो सिर्फ मुश्किल मुश्किल बातें करते हो, और आज मैं जाऊंगी स्टेशन।
2: अरे भाभी, ये आप ही का तो स्टेशन है, आप जब चाहे आए। वैसे सहदिया जी ने तो काफी काम की बात बताई थी पिछले एपिसोड में। खैर चलिए, आप ही बताइए आखिर क्या बताना चाहती हैं।
3: अरे उनकी बात तो सही थी, पर देख रहे हो आप बारिश किस कदर हो रही है, और जगह जगह बाढ़ और पानी जमा है। तो इस पानी के जमाव से मच्छर की संख्या भी बढ़ रही है, और अनेक मच्छरों के साथ अनेक बीमारियां। अब आप ही देख लो, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं काला आजार, तो कहीं फाइलेरिया। ये सब नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं।
2: क्या क्या क्या क्या है ये सब?
3: नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, या उपेक्षित मानी जाती है क्योंकि अन्य बीमारियों की तुलना में कम शोधनीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान मिलता है, जबकि ये गंभीर रोग एवं मृत्यु का कारण बनती हैं।
2: तो भाभी चलिए, ये तो सही मौका है, और आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फाइलेरिया की, यानी हाथी पांव की बीमारी की।
3: अरे बिल्कुल, एंटीडीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ऐसी बीमारियां जो अक्सर गरीब और ग्रामीण इलाकों में फैलती हैं, जैसे काला आजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। इनका इलाज और रोकथाम है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग तकलीफ उठाते हैं, और कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
2: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं मनोज बाजपेयी जी की फाइलेरिया पर खास वाला संदेश।
4: नमस्कार, मैं मनोज बाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है, और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए, तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
3: वैसे सेहतिया जी और मैं, हम दोनों तो रोज गली मोहल्ले की बातें करते रहते हैं
2: जी,
3: लेकिन क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को उन लोगों से मिलवाएं जो जमीन पर रहकर फाइलेरिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनकी बातों पर गांव भरोसा करता है।
2: बिल्कुल टीकन भाभी, आज हमारे साथ हैं हमारे ही गांव की आशा दीदी, जो घर घर जाकर लोगों को एमडीए की दवा खिलाती हैं, और साथ में हम सुनेंगे एक आम ग्रामीण साथी का अनुभव, जिन्होंने खुद दवा ली और दूसरों को भी समझाया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे शरीर को जकड़ लेती है, जिसका नाम है फाइलेरिया। आज हमारे साथ है हमारी गांव की जानी मानी आशा दीदी, जिनका नाम है सीमा सिंह जी। तो सीमा सिंह जी, सबसे पहले मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
5: धन्यवाद मैम आपको।
2: जी दीदी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों के घर जाती हैं तो फाइलेरिया को लेकर सबसे ज्यादा कौन से डर या बातें सुनने में मिलती हैं?
5: सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं, दीदी हमें तो कोई बीमारी नहीं है, फिर दवा क्यों खाएं? कुछ लोग डरते हैं कि दवा से चक्कर आएगा, उल्टी होगी या तबीयत खराब हो जाएगी। कई लोग इसे मामूली समझ लेते हैं, जबकि फाइलेरिया सालों बाद गंभीर रूप ले लेता है।
2: ये बात तो सही है। तो अक्सर लोग दवा खाने से मना कर देते हैं, आपको किन किन बहानों या आशंकाओं का सामना करना पड़ता है?
5: बहाने तो बहुत होते हैं
2: जी।
5: कोई कहता है आज खाली पेट हूँ, कोई कहता है कल खा लेंगे, कुछ कहते हैं पिछली बार दवा खाकर कमजोरी लग गई थी,
2: अरे,
5: और कुछ तो बस अफवाहों के डर से नहीं खाते हैं।
2: क्या बात है। हाँ जी दी, तो ये सब तो देखने को मिलता ही है और बड़ा ही कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब कोई व्यक्ति दवा लेने से इनकार करता है तो आप उसे कैसे समझाती हैं? क्या कोई अनुभव साझा कर सकती हैं?
5: जी, मैं उन्हें प्यार से बैठकर समझाती हूँ कि यह दवा इलाज नहीं बल्कि बचाव है। मैं खुद दवा खाकर दिखाती हूँ। एक बार एक काका जी बहुत मना कर रहे थे, तो मैंने उनके पोते को समझाया, जब बच्चे ने दवा खा ली तो काका जी भी दवा खाने के लिए मान गए।
2: जी,
5: कभी कभी बात दिल से करनी पड़ती है, जोर से नहीं।
2: बात तो सही है कि जब हम दिल से बात करते हैं तो शायद दिल का कनेक्शन गहरा हो जाता है और लोग समझ जाते हैं।
5: जी
2: जी दी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने पहले और सब लोगों की सोच में कोई बदलाव देखा था?
5: हाँ बिल्कुल, पहले लोग बहुत डरते थे, पर अब जब देख रहे हैं कि दवा लेने से लोग सुरक्षित हैं,
2: जी,
5: तो भरोसा बढ़ रहा है। रेडियो, पंचायत और स्कूल की बातों से जागरूकता आई है।
2: जी, तो अब ये बताइए कि अगर MDA की दवा खाने के बाद किसी को हल्की परेशानी होती है तो आप क्या समझाती हैं उन्हें?
5: मैं कहती हूँ हल्का चक्कर, नींद या कमजोरी आना दवा का असर है, बीमारी नहीं, या एक दो दिन में ठीक हो जाता है। ज्यादा पानी पीने और आराम करने से सब सही हो जाता है।
2: क्या बात है, बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझा लेती हैं। आपको क्या लगता है, अगर आशा, आंगनवाड़ी और रेडियो मिलकर काम करे तो दवा खाने वालों की संख्या कैसे बढ़ेगी?
5: बहुत तेजी से बढ़ेगी। रेडियो से संदेश जाएगा
2: जी,
5: आंगनबाड़ी से समझ आएगी
2: जी,
5: और हम घर घर जाकर भरोसा दिलाएंगे, तीनों मिलकर गांव को फाइलेरिया मुक्त बना सकते हैं।
2: क्या बात है भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक से एक और सवाल आपसे पूछ लेती मैं कि आपके अनुभव में किन लोगों ने दवा लेकर दूसरों के लिए मिसाल पेश की है?
5: हमारे गाँव में कई बुजुर्ग महिलाएं और शिक्षक हैं जिन्होंने पहले खुद दवा ली और फिर दूसरों को समझाया। जब समाज के लोग आगे आ जाते हैं तो असर ज्यादा होता है।
2: तो ये थी हमारी आशा दीदी, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और अब हम चलेंगे हमारे गांव के एक प्यारे से सज्जन की ओर और इनसे बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ में है हमारे गांव के राम प्रसाद जी, जिन्होंने खुद MDA की दवा ली है। और राम प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने दवा लेने का फैसला कैसे किया?
6: नमस्ते आरजे दीदी।
2: जी नमस्कार।
6: सच बताएं तो पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर था, लेकिन आशा दीदी ने समझाया कि बीमारी दिखती नहीं है पर अंदर ही अंदर होती है। फिर मैंने सोचा जब दीदी खुद खा रही हैं तो डर किस बात का।
2: ये बात भी बहुत सही है। अब आपसे एक और सवाल मैं करूंगी, दवा लेने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा?
6: नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना चक्कर ना परेशानी, और जैसा लोग डरा रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
2: अरे वाह, क्या बात है भाई। और अब एक सवाल और आपसे कर लेंगे राम प्रसाद जी, कि आसपास के लोग क्या कहते थे इस चीज को लेके?
6: कुछ तो मना कर रहे थे, तो मैंने कहा मैंने खाई है और मैं ठीक हूँ और तुम भी खाओ। अब वही लोग दूसरों को भी समझा रहे हैं।
2: क्या बात है भाई। ये तो आपने बहुत ही बड़ी वाली मिसाल दे दी, बड़ा अच्छा लगा ये जान के। चलिए अब एक सवाल और आपसे कर लेते हैं लगे हाथ, कि जो लोग अभी भी डर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं तो यही कहूंगा कि डर से नहीं समझ से फैसला ले, दवा खाइए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को बचाइए।
5: श्रोताओं, हमारा आपसे अनुरोध है, दवा लेने से ही फाइलेरिया रुकेगा, डरे नहीं, आगे बढ़ें।
2: और याद रखिए, आशा दीदियां गांव की असली ताकत हैं। जब वो आपके घर आएं, तो दवा जरूर लीजिए। फाइलेरिया से बचाव दवा से ही संभव है, डरे नहीं, दवा लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो उम्मीद है कि अभी आपने आशा दीदी से बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी ये हमारे साथ बनी रहेंगी

0: निभाए।
1: अच्छा टीकन भाभी, फाइलेरिया पर बातें तो बहुत हुई हैं, कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो फाइलेरिया के बारे में?
2: हाँ, फाइलेरिया को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है नाइट ब्लड सर्वे।
1: अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना है, मैंने ये एक वर्कशॉप में भी सुना था।
2: अरे हाँ भाई, सुनो तो, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये नाइट ब्लड सर्वे होता क्या है और रात में ही क्यों होता है। तो सुनिए, फाइलेरिया के कृमि को हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से हमारे खून में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में दिन में ये छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये बड़ी संख्या में खून में सतह पर आ जाते हैं।
1: ओ अच्छा, जब ही स्वास्थ्यकर्मी रात के समय ही सर्वे करते हुए दिखाई देते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अच्छा, अब समझ आया।
2: हाँ, स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों की उंगली में हल्की सी सुई चुभोकर कुछ बूंद खून निकालते हैं। उस खून को स्लाइड पर रखा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं।
1: लेकिन टीकन भाभी, ये सर्वे करना जरूरी क्यों है?
2: इससे हमें यह समझ आता है कि गांव या मोहल्ले में बीमारी कितनी फैली हुई है, किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है और किन जगहों पर बीमारी लगभग खत्म हो रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कहां दवा वितरण अभियान MDA को मजबूत करना है, कहां जागरूकता बढ़ानी है और कहां बीमारी खत्म करने की घोषणा की जा सकती है।
1: तो भाभी, इसका फायदा क्या है?
2: अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवा देकर उसे आगे फैलने से रोका जा सकता है। इससे गांव के बाकी लोगों की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि बीमारी का स्रोत कम हो जाता है। लंबे समय में यह सर्वे हमें फाइलेरिया की जड़ खत्म करने में मदद करता है। कहावत है ना कि समय को समझ लिया जाए
1: समस्या
2: समस्या को समझ लिया जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही, जब हमें पता होता है कि बीमारी कहाँ है, तभी हम उसे सही तरीके से खत्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, और ये भी तो सही है कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन समाज में लोग मरीज से दूरी बनाने लगते हैं।
2: बिल्कुल, बीमारी से पीड़ित को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन लोग दूरी बना लेते हैं। मेरा कहना है, मरीज को अपनाइए, उससे दूरी मत बनाइए।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे
4: और अपने परिवार

0: लो लाभ कई।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। टीकन भाभी के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। और याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। तब तक के लिए अलविदा और स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, अपने आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो यानस्ली 89.6 FM पर।
2: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9216 9976 9216 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेहमान तो।
1: अरे तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चो कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहे।
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता, यानी कि मैं हूँ आपकी आज समता और साथ में है
8: साथ में हूँ मैं, यानी कि आपकी आरजे अंशिका। और आज जो कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब कुछ सिस्टम से करना चाहते हैं, बट कुछ ऊपर नीचे हो जाता है,
7: लापरवाही से होता है। फिलहाल ऐसे नहीं होता है, लापरवाही से होता है।
8: वैसे कुछ
7: तो हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जब काम करने के लिए सीट पे बैठो तो दिमाग स्थिर होना चाहिए।
8: हाँ मैम,
7: है ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए तो हाँ वो गया, सब आ गया, उड़ने लगे हवा में, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है सुन सहेली। मैं हूँ आपकी आरजे समता
8: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
7: तो भाई, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल एवरीवन एंड हु मेक माय वंडरफुल लाइफ माय फर्स्ट टीचर, यस ऑफ कोर्स माय मदर, और उसके बाद मेरे गुरु। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान की जिंदगी बना दे वो होता है उनका सच्चा गुरु। तो भाई, हमें सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो लाए वो है हमारी गुरु, यानी मम्मी। और मेरी मम्मी एग्जैक्टली आज मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट शिफ्ट लेके जाऊँ, ताकि वो सरप्राइज हो जाएं और कहें कि अरे वाह, मतलब इनको मैं याद थी और मेरे लिए इतना अच्छा सा गिफ्ट। तो हालांकि ये सूट फूट तो मैं बहुत ज़रा हमेशा से उनको देती हूँ, तो आई थिंक उनकी ज़रूरत की चीज़ आज मैंने सोच के रखी है माइंड में कि मैं उनको क्या देने वाली हूँ। एंड ऐसे ही अगर आप सभी भी अपने गुरु के प्रति, अपनी माँ के प्रति और अपने सच्चे उस गुरु के प्रति जिनको आप, आपकी नैया जो लोग पार कराएं, यस ऑफ कोर्स मेरे गुरु भी, आप अंशिका को बेहतर पता है कि मेरे तो रग रग में है वो, जहन में तो छोड़ दो, रग रग में वो है। तो ऐसे ही प्यार भरी शुरुआत करते हैं आज टीचर्स डे के दिन, क्योंकि आज है हमारा दिन। अंशिका ने अभी तक मुझे विश नहीं किया है एंड ऑन एयर, मुझे लग रहा था ये विश करेंगी तो अगली आवाज इनकी होगी, अगर इनको अगर थोड़ी भगवान बुद्धि दे दे कि इनके बगल में मैम बैठी है और इनकी ही मैम है ये। तो जैसे मैंने अपनी मैम को विश करके मैं नीचे आई, तो आज मैं कॉलेज में आई, तो मेरी तीन टीचर यहाँ पर ऐसी हैं जिनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं उनको विश करके आई। तो देखते हैं अंशिका,
8: हैप्पी टीचर्स डे मैम।
7: कह करके विशिंग लेने में मज़ा थोड़ी नहीं है, जैसा कि सामने से जब मतलब कहते हैं ना कि वापसी में जो मिलता है सामने से मिलता है। लेकिन मैं आपसे मजाक कर रही थी, मेरे आते ही अंशिका ने मुझे चॉकलेट दिया, मेरे पैर छुए और उसने मुझे विश किया। तो थैंक यू सो मच अंशिका, एंड मुझे लगता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और जिंदगी में कभी भी। आज एक छोटी सी सीख मैं तुम्हें देना चाहती हूँ,
8: ओके?
7: क्योंकि कहते हैं कि गुरु जो सीख देते हैं ना वो आजीवन काम आती है। मेरे गुरु ने भी मुझे यही सिखाया कि आप इतने कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो जाओ पर आपको कभी भी अहम नहीं होना चाहिए। आपकी पोस्ट का, आपके कर्मों का, आपके अच्छे नियति का और अच्छी चीजों का। तो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए हमेशा से, अच्छा बनना चाहिए, कभी भी अहम की भावना नहीं।
8: बहुत ही अच्छी वाली मैम ने भी मुझे सीख दी और बहुत ही अच्छे दिन पर भी उन्होंने दिया कि कभी भी अहम नहीं होना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे अंदर वो चीज़ ना आए और हमारा जो रिश्ता है वो यूं ही चलता रहे। और बिल्कुल वही विश करना तो सुबह सुबह बनता ही था। मैं तो जब घर से निकली हूँ तो मैं चॉकलेट लेके निकली थी और मेरे मन में यही था कि मुझे मैम बस मिल जाए। और आज हुआ भी ऐसे ही कि जब मैं यहाँ पे थी और मैंने देखा कि अरे आशा मैम जल्दी आ गई और मैं शो कर रही थी लेकिन मेरा जो ध्यान था वो उधर ही था और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट से मिले और विश करें। तो मिले, विश किया और बिल्कुल कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स सिर्फ ऐसी होती हैं जो आप फील कर सकते हो, शब्दों में कह नहीं सकते हो लेकिन कोशिश है कि शब्दों में कह सकें हम।
7: एग्जैक्टली। तो आज टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट होता है, किस कारण से होता है, हम सब कुछ बताएंगे क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का आज बर्थडे होता है। तो उसी के उपलक्ष में आज हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ट्यूशंस में आज मतलब धुआंधार होती है। बच्चे घर पे आते हैं और कहते हैं कि मम्मा मेरे साथ आज ना मेरी आज मेरी टीचर्स डे है और मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत सारा कंट्री होता है स्कूल में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैसे इकट्ठे करके और गिफ्ट लेना, तो बच्चों को वो अलग सी खुशी आती है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है। सेम थिंग हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, ऐसे कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। मतलब पहले जब छोटे थे तो प्रोग्राम करते थे, बड़े हुए तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगे, टीचरशिप में आए तो प्रोग्राम को देखने लगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है वो स्ट्रांग हमारे अंदर हमेशा से बनती चली आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के शो को, एंड एक साथ एक ही फ्रेम में पहले हम दोनों आपको विश कर दें शुभ दोपहरिया। एग्जैक्टली। तो शुरू करें?
8: जी मैम, तो शुरू करते हैं
7: अंताक्षरी
8: के लिए तो अभी आपके पास समय है, शुरू करते हैं कविता। लेकिन उससे पहले जो कहते हैं ना रीत है, रस्म है, वो निभा लेते हैं। तो आज के दिन भी निभाते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा कुछ कोशिश की है, देखते हैं कोशिश किस हद तक सफल होती है। वो मिल गए

0: ऐसा होता है कि जो ये मुझे लाइन देती है मुझे उसकी एक ही लाइन गाना आता है, दूसरी लाइन मुझे नहीं आती है।
1: एक लाइन इतनी है, क्या कहते हैं वो, सॉफ्ट फीलिंग वाली थी। ऐसे मतलब ऐसे अगर कोई गाए गाना तो कहते नहीं यूनिवर्स होता है कि जो हम
0: जो नहीं मानने वाला होगा वो भी मान जाएगा।
1: हाँ, कहना तो ये था।
0: हो गया तुम्हारा,
1: एक लाइन में कह दिया।
0: हो गया चले
1: चल
0: आगे बढ़े। चले
1: तो मेरी लाइन, हाँ मुझे याद आ गया कि उन्हें देखा तो खुदा नजर आया, लोग कहते हैं हमने उसे चलते फिरते बोलते हंसते कभी नहीं देखा, हमसे पूछो क्योंकि हम जानते हैं हमने तो उसे हर नजर में देखा। लेकिन कहते हैं ना, नजर चाहिए नजरिया चाहिए, देखो देखो तो वो मूर्ति लगती है, देखो तो वो मूर्ति लगती है, समझो तो वो श्रद्धा लगती है। लेकिन ये तुम्हारी नजर है कि तुम्हारा नजर और नजरिया क्या कहता है और क्या समझता है। तो आइए करते हैं इन्हीं बातों के साथ आज की बहुत ही प्यारी सी पोएम की शुरुआत, आपकी अपनी प्यारी वाली आरजी और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर आरजी संता के साथ।
0: तो एक लाइन में हम भी जोड़ दें कि अभी तुमने लास्ट लाइन क्या बोली थी, वो आधा वाली और वो वाली,
1: आधी वाली
0: एक लाइन तुमने बोली, कुछ लाइन बोली थी कि वो दिखती है स्ट्रिक्ट के पहले, आधा अधूरा, पता नहीं क्या बोला था तुमने।
1: आधा अधूरा नहीं बोला था मैम, मैंने बोला था थोड़ी सी
0: उसके पहले की लाइन क्या बोली थी।
1: आइए करते हैं पोयम की शुरुआत।
0: उसके पहले पोयम तुमने, ये तो उसको सजाने का काम होता है। लास्ट लाइन क्या बोली थी तुमने?
1: मैंने नजरिए को लेकर के बोला।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जिस भी,
0: हाँ हाँ हाँ, याद आ गई मुझे। तो मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहती हूँ, जो इतना ये बटरिंग और इतना ये वो चीज कर गई ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी पोयम का आज मुझे एक लाइन आंसर देना है, नजरे हटी दुर्घटना घटी। अगर
1: पूरा
0: मैंने इसकी पोएम को धो दिया है क्योंकि इसने मुझे लास्ट में बोला कि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर, तो मैंने इसीलिए इसको बता दिया।
1: अच्छा, अच्छा।
0: नजरें हटी
1: दुर्घटना घटी
0: इन्होंने नजरिए पे बोला था, तो मैंने इसीलिए बोल दिया कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी। तो प्लीज अपनी नजरों को संभाल के रखें, और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो फटाफट पोएम की ओर चलते हैं।
1: जी मैम।
0: एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आप रेडी रखिएगा।
1: जी
0: मतलब मैं फटाफट चावल दाल बना रही हूँ, आप रोटी तैयार रखिए इधर,
1: बस तुरंत तैयार होती है सासू माँ।
0: बिना कहे जो सब सुन ले, यह तो रूह का पावन संगीत है, इसमें ना कोई शर्त होती है ना कोई तकरार होती है, दो दिलों के इस बंधन में बस अटूट विश्वास की डोर होती है। हंसते हुए चेहरे पर तो दुनिया अक्सर मरती है, पर रोती आंखों को जो पढ़ ले वही मोहब्बत सच्ची है। दूर रहकर भी जो पास लगे वो एहसास ही तो प्यार है, पतझड़ के सूने जीवन में जो ले आए वो बहार है। प्यार नाम है त्याग का, जिसमें खुद को खोना पड़ता है, किसी और की सच्ची खुशी के लिए कभी पलकों को भिगोना पड़ता है। ये वो मखमली धागा है जो दूरियों को मिटा देता है, रूठे हुए इस जीवन को फिर हंसा देता है, हंसना सिखा देता है। ना तराश इसे शब्दों में, यह तो सिर्फ महसूस करने की कला है, जिसके दिल में प्यार बसा उसका पूरा जीवन सवरा है, एक दूजे की परवाह में ही छुपा इसका असली संसार है, जिंदगी अधूरी है जिसके बिना, वही तो अनमोल प्यार है।
1: वाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत पोयम। तो आइए अब पढ़ते हैं अगला सेगमेंट जो कि है हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, उसकी तरफ। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो ये है लिसनर्स की, आज है टीचर्स डे, तो उसी पे बता देते हैं आपको कि परिस्थितियाँ सबसे बड़ी गुरु होती हैं। आपकी परिस्थिति जो आपको सिखा देती है वो कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन कई बार क्या होता है ना मैम कि हम कोसना शुरू कर देते हैं।
0: हाँ जी।
1: कि मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही सारी तकलीफें मिलती हैं। लेकिन क्या आपने अपनी खुशी के लिए कभी कहा है कि मुझे ही सारी खुशियाँ क्यों मिलती हैं? ऐसा तो होगा नहीं है कि हमारी लाइफ में हमें सिर्फ तकलीफें मिली होंगी।
0: हाँ।
1: आपके पास जितने भी रिश्ते हैं, आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन परिवार, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो भी नहीं होता। तो खुशियों के लिए अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ही क्यों, अगर नहीं कहते हैं ऐसा, तो फिर दुखों के लिए भी नहीं कहिए। और जो आपकी परिस्थिति सिखाएगी वो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कभी भी अपनी कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कोसना नहीं चाहिए, ये गलत बात।
0: जी बिल्कुल। तो चले हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही प्यारी सी पोयम जो कि हम लेकर के आए हैं, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया तो हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। और आज है बड़ा ही प्यारा सा दिन, यानी कि भाई जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और टीचर्स के लिए भी, यानी कि आज है टीचर्स डे। इस खूबसूरत से खट्टे मिठ्ठे और प्यारे से रिश्ते का दिन है आज, और आज इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, जो कि अभी आपसे रूबरू होंगी, आपसे बातें करेंगी और अपनी कविता के थ्रू आपको बताएंगी कि ये बेहद ही प्यारा रिश्ता होता कैसा है। और आज हम भी सुनेंगे उनकी कविता के थ्रू। कहते हैं ना कि जब दिल के जो जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती है, उन्हें जब शब्द मिल जाते हैं तो वो और भी खूबसूरत बन जाते हैं। तो आज सुन सहेली में इस प्यारे से रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, कौन है वो, आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका वेलकम करते हैं। हेलो।
4: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
3: गुड आफ्टरनून, और आपका नाम?
4: मेरा नाम अंशिका कौशल है।
3: जी अंशिका, तो भाई देखिए, अंशिका अंशिका मतलब आपकी RJ अंशिका, और आपके भी जो गेस्ट आई हैं उनका भी नाम अंशिका है, राइट?
4: यस मैम।
3: ओके, तो भाई अंशिका जी आज हमें एक बहुत ही प्यारी सी पोएम सुनाने वाली हैं, जो कि टीचर्स डे पे है। तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज़ कोई होने वाली होती है तो उसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने वेट किया तो वो अच्छी चीज़ का जो मज़ा होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे घर में बन रहे हों गुलाब जामुन और हमें उसके लिए वेट करना पड़े तो अच्छा नहीं लगता है, क्यों अंशिका जी? मैं सही कह रही हूँ ना?
4: राइट मैम।
3: यस, तो वेट करना बिल्कुल भी अच्छा लगता, मन करता है बस जल्दी से बन जाए और हमें मिल जाए। तो ठीक वैसे ही भाई, इतनी प्यारी सी कविता और इतनी स्वीट सी हमारी गेस्ट है, इनकी स्वीट स्वीट आवाज़ है, तो वेट नहीं करते हैं, आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी सी कविता। जी अंशिका।
4: गलती गलती गलत साबित हो सकती है, पर सबूत भी तो होने ज़रूरी है। गलती गलत साबित हो सकती है, पर सबूत भी तो होने ज़रूरी है। घर ऊंचे भी बन सकते हैं, बस नींव मजबूत होनी ज़रूरी है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना कैसे बतलाएगा, इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना कैसे है बतलाएगा, गुरु ही का हाथ थाम तू अपनी मंजिल पाएगा। जग में रहेगा तो जग कहेगा, जग में रहेगा तो जग कहेगा कि कर चुका अब तू अभ्यास, गुरु का सानिध्य पाले। वो फिर कहेंगे तू कर प्रयास, निज जीवन में तू आने दे गुरु अनुशासन की चिंगारी। निज जीवन में तू आने दे गुरु अनुशासन की चिंगारी, तू भूल जा उनको जाने दे जो आए हैं संकट भारी। पिघला देगी हर जंजीरे जिस दिन भड़की ये चिंगारी। गलती करके जब आया तू, गुरु ने तुझको समझाया है। गलती करके जब आया तू, गुरु ने तुझको समझाया है। चरणों से उठा करके तुझको सीने से अपने लगाया है, चरणों से उठा करके तुझको सीने से अपने लगाया है। दे दोगे प्राण भी दान अगर तो भी ना मोल दे पाओगे, दे दोगे प्राण भी दान अगर तो भी ना मोल दे पाओगे। छाती चौड़ी होगी उनकी अगर कुछ अच्छा कर दिखलाओगे। तो नींव अपनी मजबूत बना और बना ले सबसे ऊंचा घर, तो नींव अपनी मजबूत बना और बना ले सबसे ऊंचा घर। गलतियाँ भी तुझसे ना होंगी यदि गुरु कृपा तेरे सिर पर, गुरु क्या है, कैसा है, कहाँ, अब ये ना बतला पाएंगे। गुरु क्या है, कैसा है, कहाँ, अब ये ना बतला पाएंगे। फिर भी यदि कहना चाहें तो, फिर भी यदि कहना चाहें तो, ग्रह में मात्र रूप दर्शाएंगे। कि जननी अपनी है प्रथम गुरु, अनमोल मिला जीवन जिससे, पग पग चलना है सिखलाती, किस गुरु की करूं तुलना उससे। एक गुरु का नाम बताती हूँ, जीवन भर साथ ना छोड़ेगा, गुणवान समय बलवान समय कुछ सिखला कर ही छोड़ेगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही अच्छी अंशिका आपने सुनाई, बहुत प्यारी लगी और आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छी लगी हो, तो बहुत ही प्यारी थी और थैंक यू सो मच। और देखिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, नागेश्वर जी लिख रहे हैं नाइस कविता अंशिका जी, तो भाई हमें भी बहुत अच्छी लगी और वाकई जो ये रिश्ता है प्यारा सा, आपने इसे बहुत बेहतरीन से बताया है। सो आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ यहाँ सुन सहेली में आज जुड़कर?
4: बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ तो उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है।
3: आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि पहली बार जब हम किसी नई चीज़ से जुड़ते हैं, कोई नया एक एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। सो थैंक यू सो मच अंशिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं, बस यूँ गए और यूँ आए। स्टे ट्यून्ड।

के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वह 0981 23 मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड आज

0: हाँ जी, आ गए हैं फिर से आपके आपसे मिलने के लिए। तो फटाफट आइए शुरू करते हैं आज के OTT सीरियल्स को, क्योंकि अभी तक हमारे चैट बॉक्स में किसी ने भी एंट्री नहीं दी है। तो भाई ये तो होती है बहुत गलत बात, क्योंकि आज गेम सेक्शन है और गेम सेक्शन के दिन मुझे नहीं लग रहा है कि सभी लोग आज सभी टीचर्स हैं जो हमारे FM से जुड़े हुए हैं। तो फटाफट नंबर लिख करके अब भेजिए, यानी गाना लिख करके भेजिए। हम लोगों ने अक्षर दे दिया है और अक्षर है क। तो क से बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं, अगर आप नहीं भेजेंगे तो क से अंशिका मेरा गाना चला दोगी?
1: बिल्कुल मैम, नेकी और पूछ पूछ।
0: बताएं
1: कौन सा?
0: कहो ना प्यार है।
1: ओ गॉड, ओ भाई।
0: अच्छा आ जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ
1: ना प्यार है। तो मैंने क्या कहा, मैंने सॉन्ग ही तो कहा।
0: नहीं, तुम्हारा जो रिएक्शन होता है ना, लगता है पता नहीं कहाँ चली गई। तो
1: नहीं यही,
0: वापस आ जाओ,
1: वापस आ जाओ।
0: ठीक है, चलिए तो OTT सीरियल्स को सुनते हैं। क्यों हंस रही हो? तुमने बर्गर खाया? नहीं खाया। चलो अभी खिलाते हैं, पहले काम करो।
1: पहले काम करते हैं। तो हंसी की आज वजह जो है वो बहुत खास है, और आज दो है रीजंस। पहला तो आज
0: अच्छा हमें सुनने को मिलेगा, शायद अभी अंशिका कहेगी कोई आज बहुत खूबसूरत लग रहा है।
1: कोई आज खूबसूरत तो लग रहा है, और फिर तारीफ भी मिल गई कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और फिर सामने से पूछा गया क्यों अच्छी लग रही हूँ, तो कहा गया आज आपने मेकअप नहीं किया है ना, इसलिए। फिर उधर से आता है रिएक्शन, मैं तो रोज नहीं करती हूँ।
0: हाँ अंशिका तुम बताओ, हम लोग रोज करते हैं क्या मेकअप? नहीं करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। ठीक है, तो OTT सीरियल्स में हम लोगों ने ये मेकअप की बात इसीलिए करी क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम रोज नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सीरियल्स या कुछ कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसका मतलब और महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई महिला नॉर्मल डेज में बिल्कुल नॉर्मल रहे और खास दिनों में एक छोटी सी बिंदी लगा लेना जस्ट लाइक मी, तो वो खूबसूरत लगने लगती है। भाई आज तारीफ सुनने का मेरा मन कर रहा है, ठीक है मैं क्या करूं। और ऐसे ही सीरियल्स की बात अगर की जाए तो अगर डेली सोप जो वाले सीरियल्स हैं जो डेली चलते रहते हैं, अगर सैटरडे संडे जो स्पेशल आता है तो उसकी बात कुछ अलग होती है।
1: बिल्कुल बात कुछ अलग होती है, और आज बात कुछ अलग होगी भी, क्योंकि आज सबसे पहले बात करते हैं बॉस की। बॉस की यानी कि भाई देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे जो मैरिड होते हैं स्पेशली, वो कहते हैं ना घर में बीवी बॉस होती है और ऑफिस में बॉस होता है, उसकी माननी पड़ती है। तो भाई हमारी तो दोनों तरफ से सैंडविच वाली कंडीशन हो जाती है।
0: हाँ।
1: ऐसा सुना जाता है। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ वो नया जो सीजन आने वाला है भाई, बहुत मजेदार, क्योंकि ये टाइम से पहले आने वाला है। कई बार होता है ना कि कुछ चीज जब आपको समय से पहले मिलती है तो बहुत मजा आता है
0: जी।
1: तो इस बार बिग बॉस सीजन 20 आने वाला है, जो कि लेकर के आने वाले हैं आपके अपने और हमारे सुपरस्टार यानी कि सलमान खान जी। और बता दूं कि इस बार ये TV पे नहीं आने वाला है, इस बार ये जियो हॉटस्टार पे आने वाला है। और सबसे जो अच्छी बात है इसे लेकर वो ये है कि ये इस बार 6 सितंबर से शुरू हो रहा है।
0: okay.
1: यानी कि आज 5 है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है बिग बॉस OTT पे, जो कि आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं रात को 9 बजे।
0: और इसी देखा हमने क्या कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर रोज ना होकर के कभी कभी हो तो उनका महत्व बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, सो वो शुरू होने वाली है, और मैं बता दूं कि बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार इस शो की जो थीम होने वाली है वो करण अर्जुन वाले कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। करण अर्जुन वाले कॉन्सेप्ट का मतलब समझे आप?
0: नो no.
1: वो ये
0: यानी दो लोग तो नहीं आने वाले हैं कोई?
1: थोड़ा थोड़ा यस,
0: दो लोग आने वाले हैं प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए।
1: यस,
0: है ना?
1: और यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन करण अर्जुन का ये कॉन्सेप्ट इस बार कंटेस्टेंट्स के लिए होने वाला है।
0: ओके.
1: क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट को ऐसा कंपेनियन दिया जाएगा उसी घर में उसके साथ, जो होगा बिल्कुल उसके अपोजिट।
0: ओह माय गॉड,
1: यानी कि अगर एक सीधा होगा तो दूसरा उल्टा।
0: ये तो बहुत और टफ हो गया ये तो।
1: यस मैम, तो इस बार आपको जो कहते हैं ना केमिस्ट्री बिठानी है, वो अपने से बिल्कुल अपोजिट इंसान के साथ बिठानी है, तो बहुत मजा आएगा।
0: हाँ, और जब लाइफ में अगर ऐसा करना पड़े कि अपने कंपटीटर के साथ में आपको जोड़ी बिठानी पड़े, तो यही कहते हैं कि आपकी ये रियल लाइफ है। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि सीधे के साथ तो हर कोई निभा सकता है, मजा असली तब है जब आप टेढ़े के साथ निभाओ, जैसे कि अंशिका निभा रही है। ये इसके लिए बहुत बड़ा टास्क है, मतलब आप मतलब ये खुद सोचे, मैंने आज खुद बोल दिया ये बात। मतलब अंशिका कभी तो सोचती होगी कि आज समता के साथ बैठना इट मींस कि क्या ही, और अगर RG हटा दो समता मैम के साथ में बैठना, तो ये कभी कभी मन में इसकी फुद होती है, तो आज मैंने कहा कि चलो आज टीचर्स डे है तो आज मैं खुद ही इसके मन की बात निकाल देती हूँ। तो इसने ये जो ये जर्नी की है 3 साल की अभी तक, तो बहुत ही मतलब क्या ही बता दे, है ना अंशिका, इस पर तुम बात कुछ बोलो।
1: तो सबसे पहली
0: मन की बात थी ना?
1: नहीं ऐसा नहीं है, मन की बात थी बट जैसे मुझे ये ऐसे फील आई, स्ट्रॉन्ग फील कि अभी मैम यही बोलेंगी और उन्होंने वही बोल दिया। तो ये होती है केमिस्ट्री। और रही बात टेढ़ा, तो नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान टेढ़ा नहीं होता है। देखिए कहते हैं ना
0: यार, टेढ़े का मतलब ये नहीं था यहाँ पर, ये मतलब था कि हाँ मतलब एक जो बाहर जो मतलब ये चीजें हैं, ऑरा जिसको बोलती हो तुम, तो उस ऑरा जो है एक स्ट्रिक्ट, अभी आपने एक पोयम बोली थी स्ट्रिक्ट टीचर, तो वो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये निभाना जैसे एक सीधे के साथ निभाना तो हर कोई निभा सकता है भाई, जो बात सच्चाई है। तो ये
1: मेरे साथ स्ट्रिक्ट रहती कहाँ है मैं?
0: तो
1: अब मुझे वो नहीं महसूस होता है, वो ऑरा ऑरा को महसूस होता है, मतलब ऐसा नहीं है।
0: हंसी आ रही है मुझे ये बात सुनकर।
1: नहीं मैम पॉजिटिव लीजिए ना, मतलब
0: नहीं हम तो पॉजिटिव ले ही रहे हैं जी, हम तुम्हारे
1: नहीं भाई मुझे कहना पड़ता है क्योंकि अभी माइक ऑफ।
0: इसीलिए कहते हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि अंशिका से कुछ पूछा जाता है कि तुम बोलो अंशिका, तो बस वो मुझे देखने लगती है और सब लोग बोलते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। खैर हो गई हंसी मजाक अपनी जगह पर, तो आइए चलते हैं हम मेरी पसंदीदा सॉन्ग को। मैंने अंशिका से कहा था कहो ना प्यार है गाना मुझे सुनना है, और जो कि क से है, तो अभी लिसनर्स नहीं आए हैं तब तक हम सुन लेते हैं कहो ना प्यार है, जो कि मूवी भी है कहो ना प्यार है। आइए फटाफट सुनते हैं।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सब्सक्राइब

0: ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सारे शिकवे गिले भुला कर कहो, जिसकी की फरमाइश नहीं भाई, क्या होता है ना कि जब भी सॉन्ग की बात आती है तो सीधा हम फरमाइशों पर पहुंच जाते हैं। बट ये जो थी, ये सॉन्ग भेजा था गेम में, आई थिंक धर्मेंद्र जी ने भेजा था, जी धर्मेंद्र जी का सॉन्ग था। तो आइए अब चलते हैं लिसनर्स, बढ़ते हैं हमारी लव राशिफल की तरफ और उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं लव राशि फल पे। तो आज का पहला जो लव राशि फल है हमारा, वो है मेष राशि वालों के लिए। तो आज मेष राशि वालों के लिए है कि आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अपने पार्टनर के साथ कोई छोटी सी बात पर आपका झगड़ा जो पहले हुआ था वो आज सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपके रिश्ते में होगी एक बेहतरीन और नई शुरुआत। अब आते हैं वृषभ राशि वालों के लिए है कि आज सितारे जो हैं वो कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो उलझने काफ़ी टाइम से चल रही हैं उनमें ब्रेक लगने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। सो दोस्तों के साथ जाने के बजाय आज का पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएं तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज चंद्रमा जो है वो आपकी राशि में है, इसलिए आज आप पूरा दिन खुश मिजाज बने रहने वाले हैं और आपकी जो आवाज़ है वो आज प्यारी प्यारी मीठी मीठी होने वाली है, जो कि आपके पार्टनर का दिल जीतने वाली है, यानी कि आपकी बातें मीठी होने वाली हैं। और साथ में जो भी सिंगल है वो आज उन्हें कोई मिलने वाला है, तो भाई कोई मिल गया वाला सीन आज है। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए है कि लव लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपका पार्टनर आपको किसी छोटी लेकिन सोचे समझे सरप्राइज देने वाला है। जी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी बातों को लेकर नोक झोंक बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जो कि है आगे सिंह राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए हो गया और सिंह राशि वालों के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि सिंह राशि वालों के लिए आज काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि आपकी सगाई या शादी की बातचीत जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, यानी कि डेट नहीं हो पा रही है, वो डेट आपको जल्दी मिल जाएगी।
1: और जिनकी हो गई है वो?
0: जिनकी हो गई है उनके
1: लिए बिखर जाएगी।
0: हाँ हो सकता है भाई।
1: नहीं,
0: कहते हैं ना डिपेंड्स ऑन कर्मा।
1: नहीं, जिसकी हो गई है ऐसा नहीं है उसकी बिखरे इखरे ना भाई, कुछ नहीं है।
0: अच्छी रहे। और ऐसा है भी, आपकी राशि भी कह रही है, वैसे तो आज ये कह रही है कि कोई नया मिलने वाला है, जो अटकी हुई बात है वो सही होने वाली है। और उसी के साथ ये भी आज आपकी लव लाइफ में है कि बहुत ही जल्द कुछ नई बातें आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं। नई बातों का मतलब है कि नई लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया होता है, तो कुछ नया होने वाला है।
1: हाँ जी, तो चलिए फटाफट हम भी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बता देते हैं बाकी राशियों के बारे में। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। तो कन्या राशि में है कि विवाह से जुड़ी बातचीत आपकी उम्मीद के मुताबिक सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। काम की व्यस्तता के बावजूद रिश्तों में आपसी विश्वास और सकारात्मक बनी रहेगी। तुला राशि, आज आप शादी को लेकर थोड़े असमंजस में रह सकते हैं, खासकर माता पिता या परिवार के दबाव के कारण। ओ माय गॉड। वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज प्रेम जीवन में किसी भी तरह का फैसला भावनाओं में बहकर ना लें। साथी से कोई भी बात छिपाने से बचें, पारदर्शी होना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब आती है भारी धनु, मकर, कुंभ और मीन, जो कि बताएंगी अंशिका, क्योंकि मुझे मेरा राशिफल किसी और के मुंह से सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है।
0: तो आइए बताते हैं धनु राशि वालों के लिए है कि चंद्रमा आज आपकी राशि में है, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में प्यार और खुशियां बनी रहेंगी और कोई अच्छी सी खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है। मकर राशि वालों के लिए है कि आपकी लव लाइफ अच्छी चलने वाली है। और हाँ, इसमें भी यही है कि जिनकी भी शादी की चर्चाएं चल रही हैं उन्हें जल्दी पार्टनर मिलने वाला है। क्या बात है, आज सभी राशियों में पार्टनर मिल रहा है।
1: पता नहीं, हो सकता है शादी सीजन आने वाला हो।
0: हाँ मैम, शादियां, फिर गिफ्ट्स वगैरह रेडी रखें शादी में जाने के लिए। मुझे भी एक शादी में जाने के लिए गिफ्ट रेडी रखना है। आते हैं कुंभ राशि वाले।
1: हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी।
0: तो कुंभ राशि वालों के लिए है, ओहो, चंद्रमा आज आपके प्रेम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रिश्ते में बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो परिवार से उसे स्वीकार्यता मिल सकती है। दी है,
1: वो मिल चुकी है पहले ही।
0: बहुत प्यारा
1: जी।
0: आते हैं मीन राशि वालों के लिए कि आपकी लव लाइफ में आज मधुरता बनी रहेगी यदि आप कम बोलेंगे तो।
1: ओके, तो चलिए फटाफट अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अंशिका देखो चैट बॉक्स में किसका गाना आया है।
0: मैम नाजिया जी का सॉन्ग है,
1: तो फटाफट लगा दें और अब जितना भी टाइम बचा हुआ है फटाफट एक से दो गाने तो हम आपको सुना के जाएंगे। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ जी, अपने चेहरे पे भस्म लगा करके वाकई में बहुत ही प्यारा सा गाना है। कुछ यादें ऐसी हैं इस मूवी के साथ में जो कभी भी मर मिट नहीं सकती हैं, और कुछ 90s की ऐसी मूवीज एग्जैक्टली दिल पर अभी भी राज करती हैं। तो भाई चलिए, अब राज करने का जो टाइम है वो नहीं है, लेकिन लिसनर से मेरा निवेदन है कि सैटरडे के दिन प्लीज़ आप सभी लोगों की एंट्री जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि गेम सेक्शन में देखिए बहुत देर हो गई और मुश्किल से 4 से 5 ही गाने आज गेम में चलाए गए। तो नेक्स्ट सैटरडे प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब आप जल्दी आ जाएंगे तो हम गेम पूरा 1 घंटे का ही प्ले करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम दोनों को दें इजाज़त, टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी उन्नति, एंड प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा, यानी कि आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम। तो अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए 6393316429 6393316429 दोनों और भेज दीजिए अपनी फरमाइश हम तक। एंड भैया, क्योंकि आज है हमारा सैटरडे यानी कि शनिवार रात, नी मैनू नींद नहीं आती और शनिवार को होता है हमारा बॉलीवुड वाला, लेकिन आज बॉलीवुड से हट कर क्योंकि भैया आज है टीचर्स वाला डे, तो आप सभी को भी तरफ से पहले तो हैप्पी टीचर्स डे सभी हमारे लिसनर्स को, सभी टीचर्स को और सभी मम्मियों को, स्पेशली जो घर में हमारी पहली शिक्षक होती हैं, हमें पढ़ना लिखना सिखाती हैं, चलना उठना बैठना सिखाती हैं, ज़िंदगी भर सिखाती ही रहती हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। एंड आइए ट्यून कर लेते हैं आपकी पहली फरमाइश को, जो कि हमारी देवी प्रसाद जी की आई है और आई है ये चांद के पार चलो फिल्म से ढिंचक लड़ गए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी कॉल करते रहिए, तब तक खेलिए स्टे ट्यून्ड।

0: एंड ये थी फरमाइश हमारे देवी प्रसाद जी की। एंड इसी के बीच, क्योंकि आज है आपका सैटरडे वाला माहौल, तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिस्नर। लेट्स सी कौन जुड़ा है। हेलो हेलो, आई थिंक भाई हो रही है कुछ इश्यूज। ऑल राइट, तब तक के लिए
1: हेलो।
0: क्या भैया, आज लगता है सिग्नल को ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। फिलहाल कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे आप सभी से हम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन एयर। एंड क्योंकि हमारे पास भैया लगता है किसी की आवाज तो आई है। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार रईस साहब, कैसे हैं आप?
2: मैं एकदम
0: ठीक। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कहीं तो हमारा सिग्नल जाके मैच हो जाए, एंड फाइनली आपसे मैच हुआ है।
2: जी
0: साहब। चलिए हम आपको बता दें कि आप हमारे साथ ऑन एयर कनेक्ट हैं, और क्योंकि आज टीचर्स डे है तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे।
2: आप सबको भी, आप सबको भी।
0: जी, और अब आपसे कुछ सवाल कर लिए जाए।
2: जी बिल्कुल कर लिए जाए।
0: ऑल राइट, तो ये बताइए आपके स्कूल में आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है? ऐसी कौन सी याददाश्त है आपकी, कौन सा ऐसा पल है जो सबसे ज्यादा पसंद आता था आपको स्कूल टाइम के लिए?
2: अब जब सुबह आते थे मतलब स्कूल में, तो जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम खेला था हम लोग खेलते थे आपस में,
0: जी
2: वो सबसे प्यारी मेमोरी है।
0: और मुझे तो सुबह सुबह आते ही नींद आने लग जाती थी, मैं यही सोचती थी सुबह आ क्यों रहे हैं हम।
2: जी साहब, वो तो अच्छा लगता था। और हमारी टीचर थी मैडम श्रीवास्तव जी,
0: जी
2: उनके ही मार के बल के हम करें थोड़ा।
0: वाह, मतलब ये तो होता है ना, वो कहते हैं कि हीरा तभी निखरता है जब उस पे कहीं ना कहीं चोट लगती है।
2: अगर अगर कुछ गलती हो गई दूसरा मार भी नहीं लगता कि हम लोग तो खेलता
0: है। अब ये एक्सपीरियंस तो हमने भी लिया हुआ है, मतलब कुछ टीचर्स हैं जिनके बलबूते ही हमने पढ़ना सीखा है। चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका?
2: उनको सुनना चॉकलेट मूवी से।
0: कौन सा?
2: मम्मी को नहीं पता।
0: मम्मी को नहीं पता? मम्मी को क्या, आपने चॉकलेट खाई है बाद मम्मी को नहीं पता? चलिए आपकी मम्मी को नहीं बताते हैं, बस ऑन एयर सुनाते हैं। ओके थैंक यू। तो भैया ये तो थे हमारे रईस साहब, और सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको कनेक्शन नहीं कर पाए। अरविंद जी आप दोबारा कॉल प्लीज कीजिएगा, और आइए एंजॉय करते हैं मम्मी को नहीं पता, बट हम जोर जोर से गा के बताने वाले हैं।

0: इससे पहले कि हम अपनी मम्मी को कुछ और बता पाते हैं, हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं भैया उनको क्या अनाउंस करना है। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
1: मनी शर्मा बोल रहे हैं, गोंडा यूपी से।
0: मनी शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने कॉलेज गोंडा में। तो कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए।
0: चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी आवाज़ सुनके दोबारा से अच्छे हो गए हैं। और क्या अनाउंस करना चाहते हैं आज आप?
1: मुझे अजूल सॉन्ग सुनना है।
0: तो ये आप सॉन्ग सुनाने के लिए हमें ऑन ईयर बुला रहे थे?
1: जी हाँ।
0: इसको कहते हैं टोपी पहनाना। तो ये बहुत लोग जो सुन रहे हैं, अब इन्हीं से कुछ और भी सुनवा लिया जाए। चलिए आप मुझे ये बताइए, टीचर्स का फेवरेट डायलॉग कौन सा है?
1: टीचर्स का फेवरेट डायलॉग ये है कि कल होमवर्क नहीं होगा तो मैं बहुत मारूंगा लेकिन मारते नहीं
0: है। सही में इतने अच्छे टीचर्स थे आपके कि आपका होमवर्क नहीं होता आपको मारते नहीं थे? हमको तो बाहर खड़ा कर दिया जाता था,
1: उनको नहीं मारते थे।
0: फिलहाल हमारे स्कूल में तो ये डायलॉग नहीं थे। एक और डायलॉग होता है जो कहते हैं कि होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते हो। आपके में था ऐसा कुछ?
1: नहीं, मैं मतलब मारा तो बहुत गया हूँ, लेकिन जब ये बात आती तो मारते नहीं थे, भूल जाते। कुछ मास्टर बोलते थे जो है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना।
0: क्या बात है, ऐसे टीचर्स हमारे हिस्से में क्यों नहीं थे?
1: भगवान जाने।
0: हमारे में तो कहते थे, अच्छा तुम होमवर्क करना भूल गए हो, तुम खाना खाना तो नहीं भूलते हो, तुम कॉपी घर पे भूल गए हो, तो ऐसा करो तुम खुद भी घर पे क्यों नहीं रह गए?
1: नहीं, वो असल में वो मेल थे ना, फीमेल का सपोर्ट नहीं करते थे।
0: ओके, फिलहाल हमारे साथ ना मेल ने सपोर्ट किया ना फीमेल है, लेकिन टीचर्स कमाल के थे। चलिए गाना बता दीजिए आप अपना प्लीज।
1: अजूल सॉन्ग, गुरु रंधावा।
0: अजूल, ओके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो भैया ये तो थे हमारे मनी शर्मा जी, जिन्होंने अपने गाने की फरमाइश कर दी है। तो पहले हम एंजॉय करते हैं रईस साहब का गाना, उसके बाद हम चलेंगे आपकी अगली फरमाइश की ओर। स्टे ट्यून्ड।

0: ये ना ऊपर वाले की दो क्रिएशन है ना, माइंड ब्लोइंग है। सेक्सी गर्ल्स एंड वेरी सेक्सी गर्ल्स। मैं आपको पहले मिल चुका हूँ या आपको पहले मिल चुका हूँ?
1: लगता है भैया मम्मी तक आज हम किसी को भी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। लेट्स सी वो कौन है और क्या मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे, बिकॉज हम तो खेल रहे हैं केबीसी। वो अलग बात है, केबीसी में आप 7 करोड़ नहीं, आप सिर्फ गाना ही जीतेंगे। हेलो
2: हेलो
1: जी, आपका नाम
2: अरविंद
1: जी, आपका सिग्नल गायब हो गया था बीच में, इसलिए हमने आपको रोक दिया था।
2: आप हमारा सिग्नल जान के गायब करी, हमें पक्का पता है।
1: अरे हम कहां गायब करेंगे भैया।
2: अरे ये कि आप बहुत तेज बोला चाहते रहे, वो हम स्लो बोलते रहे, ये
1: अच्छा, तो मतलब आप स्लो बोलोगे तो हम तेज बोलेंगे तो हम आप गायब कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हम, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये सब नहीं करते।
2: अरे मैम ऐसा इसलिए होता है कि दोनों का जब तक आमने सामने विपरीत दिशा और सम दिशा सामने होगा तभी तो सब कुछ होगा सही।
1: ऑल राइट, मतलब जब तक हम अपोजिट नहीं होंगे तब तक कुछ अट्रैक्शन नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलिए मैग्नेट को साइड में रखते हैं।
2: सुनिए, आप एक बार कह रहे थे ना, हम अपने स्कूल में गए थे एक बार पढ़ने, एक बार गए थे, मतलब कहा कि कल होमवर्क करके नहीं आओगे मुर्गा बनाएंगे,
1: मतलब आप एक ही बार गए थे क्या?
2: चले गए थे।
1: वाह, स्कूल में एक ही इंग्लिश का टीचर होता है जहाँ तक मैंने देखा है,
2: वो पता नहीं क्यों उनको हम जैसे हिंदी वाले लोगों से बहुत नफरत होती है।
1: ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात अगर कोई इंग्लिश टीचर सुन रहा होगा तो अभी आगे सुनाएगा।
2: मैम अब क्या बताएं, तो उन्होंने कहा कि अरविंद

लगता है भैया जरा आपका सिग्नल फिर से खो गया और फिर से इल्जाम हम पर लगे, उससे अच्छा है कि हम आपके गाने को प्ले कर देते हैं जो आप इंजॉय कर रहे हैं। और आइए मनीष शर्मा जी का सॉन्ग आप इंजॉय कर लीजिए, अजूल, स्टे ट्यून्ड।

0: और भैया आप सुन रहे थे मनीष शर्मा जी की फरमाइश, अजूल इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक ऑल लिसनर। लेट्स सी अब मैं किसकी टांग खींचने वाली हूँ फिलहाल के लिए। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: मैडम संजय तिवारी बोल रहे हैं।
0: जी संजय जी, कैसे हैं आप?
1: बस आपका आशीर्वाद है।
0: तब तो बड़े मस्त होंगे।
1: कपड़े की दुकान है आपके बगल में ही
0: है? सच में कपड़े हैं, मुझे बड़े पसंद है। आपने बताया नहीं, अभी तक हम डाका डाल चुके होते आपकी दुकान पे। ऑल राइट, वेल ये बताइए आप स्कूल गए हैं? स्कूल तो आप भी गए होंगे ना, मतलब डाक तो आपने भी खाई होगी टीचर्स की। क्या बात है, टीचर से तेज बोलना भी नहीं होता क्योंकि हमारे टाइम के टीचर्स बहुत खतरनाक हुआ करते थे। जी हाँ, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ आपसे आप ही के बचपन का कुछ सवाल कर लूँ। अच्छा ये बताइए, कभी मैम से ये पूछकर कि मैम या सर से पूछकर कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, बोल कर कि मैम पानी पी आए, पूरे स्कूल का चक्कर काटा है?
1: हाँ, पानी पीने के लिए आदेश लेना पड़ता था मैडम जी।
0: नहीं वो तो लेना पड़ता था, लेकिन पानी के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर काटा है आपने? हमारा तो होता था कि मैम की क्लास बोरिंग लग रही है, संस्कृत पढ़ने में नहीं आ रहा, टेस्ट होने वाला है, तो मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर करके पूरा स्कूल देख कर आते थे।
1: हमारा जो संस्कार था, जो हमारी आदत थी ना, हम खाली पढ़ाई के टाइम की पढ़ाई करते थे, खेलने के समय मुझे मैच ज्यादा पसंद था, तो मैं मैच में जब घर पे आते थे तो क्रिकेट खेलने निकल जाते थे, उसके बाद में फिर पढ़ाई का अपना समय बीत जाता था।
0: ओके,
1: तो ज्यादा तो हम सुखी से ही रहते थे, गोंडा से ही रहते थे।
0: मतलब आपको देखने के बाद लग रहा है ना कि सबसे दुष्ट बालक हम ही थे अपने स्कूल टाइम पे।
1: नहीं, हम टीचर लोगों के साथ में बहुत सम्मान करते थे, उनका पाँव छूते थे सुबह, और जो भी होता था उनके साथ में ही आदर भाव करते थे, और हम लोगों से उल्टा सीधा कोई बात ही नहीं होती थी, ना कभी टीचर हमको मारे हैं, ना कभी टीचर से हम लोग उल्टा सीधा बात की।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप अपना गाना बता दीजिए। अब
1: जो हमारे ससुर भी हैं, वो भी प्रधानाध्यापक हैं, हमारे घर में सब वकालत पेशा नहीं, मतलब हाई कोर्ट सरकारी वकील भी हैं, तो हम लोगों से इस तरह से नहीं, संस्कार बचपना से ही दिया।
0: जी जी जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। वैसे मेरे घर में भी सब टीचर्स ही हैं, तो मेरा घर घर कम हॉस्टल ज्यादा है।
1: मैडम सुनिए, एक कहावत भी कही गई थी कि गुरु गोविंद जो खड़े काटो लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे बताया।
0: बिल्कुल,
1: माँ बाप से बड़े के पहले गुरु ही होता है।
0: जी जी जी,
1: संस्कार देगा वही अच्छा रहेगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि बच्चे घर से नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे को गुरु ही पढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो देंगे वही देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अपनी जो संस्कार है उसको सीखना पड़ता है बचपना से ही। माँ बाप कभी किसी के पीछे नहीं लग के पढ़ा पाएंगे, ना बच्चों को बता पाएंगे।
0: जी चलिए, अब अपना गाना बता दीजिए फिलहाल आप।
1: मैडम आप अपनी मर्जी से कोई अच्छा को सुना दीजिए।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार अपना नाम और बता दीजिएगा आप हमारे लिसनर्स को।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते। तो भैया ये हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय जी, और संजय जी की बातें

उनके लग रहा है ना कि हमने ही सबसे ज्यादा दुष्टता की है अपने स्कूल के टाइम पर, क्योंकि हम तो मैम से पूछते थे जब भी टेस्ट हुआ करता था कि मैम टेस्ट आप लेने वाली हैं क्या, वो एक बालक पीछे बैठ कर हमेशा याद दिलाता था मैम आपने टेस्ट बोला था, और जैसे ही वो टेस्ट का नाम लेता था मैं बस अपने महिला मंडली के साथ पूछ के निकल जाती थी, मैम पानी पिया है क्या, लाओ तुम्हारी भी बॉटल भर लाते, तुम्हारी भी भर लाते, क्या पता टेस्ट ना ही हो इसी बहाने। फिलहाल अगर आपने ऐसा किया तो चैट बॉक्स में बताइए और एंजॉय कीजिए मोहम्मद मुसीब जी की फरमाइश। हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अन जी और आप मोहम्मद मुसीफ जी की फरमाइश को एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ जुड़ गई है हमारे साथ एक और लिसनर। लेट्स सी कौन है और वो क्या बातें करने वाली। फिलहाल के लिए हेलो।
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम और आपके पीछे चिड़िया की आवाज बहुत अच्छी आ रही
1: है।
0: गुलफशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आपकी आगाज आते ही आपका वेलकम होते ही पीछे चिड़ियों ने भी बता दिया था उन्होंने भी बता दिया कि बहुत खूबसूरत इंसान हमारे साथ जुड़ा है। देखिए अभी भी बता रही है।
1: अरे नहीं मैम, आपसे खूबसूरत नहीं है हम।
0: क्या बात है, बस यही तो सुनना था मुझे।
1: मतलब हम दोनों एक ही लेवल के हैं।
0: जी हाँ, अभी तारीफ सुनने के लिए पहले तारीफ करनी पड़ती है।
1: जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ सुनने के लिए मतलब थोड़े पंख लगाने पड़ते हैं क्योंकि उड़ना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। चलिए ये बताइए, आपका नाम स्कूल टाइम में कितनी बार गलत लिया गया है?
1: मेरा नाम हमेशा गलत ही लिया जाता है। कभी भी हम, जी मैम, जब कभी भी हम रेडियो पे कॉल करते हैं ना तो हमें 2-3 बार अपना नाम बताना पड़ता है।
0: ओके, वैसे यूनिक नाम करना यही नुकसान भी होता है कि लोग जल्दी आपका नाम ले ही नहीं पाते हैं।
1: जी जी मैम, कभी कभी ईमेल भी करते हैं या मैसेज भी करते हैं तो उसमें भी कुछ मैम सर नाम गलत पढ़ देते हैं तो फिर हम दूसरा मेल करते हैं।
0: अच्छा, और ये दुख आपको भी होता है ना कि जैसे मेरा नाम लिखा जाता है तो कई लोग एक एन गायब कर देते हैं, आधा एन लिख के छोड़ देते हैं। वो मेरा नाम फिर उन्नति से यूनिटी हो जाता है।
1: लेकिन अच्छा लगता है मैम, वो भी उसमें भी प्यार झलकता है।
0: अब कभी कभी तो प्यार झलकता है, कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं कि भैया कभी तो नाम सही ले लो मेरा।
1: कोई बात नहीं, सब आ जाता है।
0: जी हाँ, चलिए ये बताइए, आप स्कूल टाइम पे लंच खाने जाती थी कि पढ़ने जाती थी?
1: अरे हम शरारत करने जाते थे।
0: मतलब लंच भी करने नहीं, वो तो वैसे भी होता है
1: नहीं जाते थे।
0: अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है कि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड ना आ रही हो तो उस दिन आपने भी छुट्टी मारी हो कि हम भी नहीं जाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर कभी ऐसा होता था, अगर हम पहुंच भी जाते थे और वो नहीं आती थी तो हमें पूरा दिन मतलब ऐसा लगता था कि हमारा कुछ खो गया है।
0: हाँ, ऐसा लगता था ये दिन कब ढलेगा, ये रातें कब होंगी।
1: नहीं मैम, जब दूसरे दिन वो आती थी तो हम उसको इतना मारते थे कि तूने मुझे कल क्यों नहीं बताया था।
0: ऐसा मेरे साथ भी होता था, मतलब छुट्टी करनी है तो एक दिन पहले बैठ के साजघाट बना लो कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे।
1: अकेले बैठे रहे, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा, और जब अकेले बैठे होते तो और भी मतलब उत्पाती होती है।
0: और जब हम लोग ये करते थे तो मुझे याद है कि मेरी पूरी आधी क्लास खाली हो जाती थी, टीचर कहती थी बच्चे कहाँ गए।
1: जी जी मैम, अकेले में कुछ और भी शरारतें आती हैं यार।
0: बिल्कुल, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है कि आपने, बहुत मजा आया।
1: तो इतने शरारती थे, हमारी मैम तो यही कहती थी बेटा अच्छा दिन देख के सुधर जाओ। मैम से तो यही कहते थे कि मैम अच्छा दिन आएगा तब,
0: और वो दिन आज तक नहीं आया
1: क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, वो अच्छा दिन 8वां दिन कब आएगा।
0: और
1: मतलब बता दीजिए हम सुधर जाएंगे।
0: मैं तो आज भी पूछती हूँ कि मैम मैं सुधर जाऊँ या मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, तो मैम अब कहती है कि नहीं बेटा तुम ऐसे ही अच्छे हो, सुधरो ही मत।
1: जी मैम, लेकिन कभी नहीं सुधरे, अब तो मेरी शादी भी हो गई, माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं है अभी भी।
0: तो सुधर के करेंगे, बिगड़े कहाँ थे हम,
1: करेंगे भी क्या दुनिया में सुधर।
0: मतलब अगर आप देखा जाए तो हम बिगड़े ही नहीं थे, असल बात ये है, तो सुधरना भी नहीं होगा।
1: जी जी मैम बिल्कुल।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लीज अपना गाना बता दीजिए।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा गाना है दीवाने मूवी का कयामत कयामत।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, थैंक यू मैम।
0: भैया ये थी हमारे साथ हमारी गुलफशा जी, जिनका नाम ऑलमोस्ट सब लोग गलत लेते हैं, ये दुख दर्द पीड़ा कष्ट हम समझ सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ भी यही होता है। फिलहाल आप चैट बॉक्स में चल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली फरमाइश की ओर। तो हमारे साथ चैट बॉक्स में जो मैसेजेस लगातार आ रहे हैं वो आए हैं अरविंद जी के, ओहो नाइस सॉन्ग लिखा है। इसके बाद मोहम्मद मुसीफ जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर राज, मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोडा में। नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू एंड अरविंद जी लिख रहे हैं हेलो मैम, कैसे हैं आप? आज कॉलिंग का प्रोग्राम नहीं है क्या? बेशक है, क्यों नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या कि सैटरडे आए और हम आपको परेशान ना करें। एंड इसके बाद हमारे साथ सैनी पांडे जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार आपको भी। एंड ओके, तो इसके बाद लगातार आपको सॉन्ग को लेके मैसेजेस हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके बाद लिखा है धर्मेंद्र जी ने, उन्नति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बीत गई जन्माष्टमी, लेकिन मजा तो अभी भी आने वाला, बिकॉज त्यौहार चाहे कहीं भी चले जाएं मजा उतना ही आता है, और आपको हैप्पी टीचर्स डे। इसके बाद है कि भैया सिग्नल भी नाच रहा था। ये सिग्नल नाच रहा था कहाँ? एंड आपने होल्ड पे कर दिया। भैया आपने होल्ड पे नहीं किया था, बस आपका नेटवर्क हिल चुका था। एंड मेरी भी एक टीचर थी जो जिस दिन मुझे मारती थी उस दिन साइकिल की हवा निकाल देता। ओह माय गुडनेस, ये काम सिर्फ नागेश्वर धाकर जी कर सकते हैं। और मैंने इसे देखा है, कुछ बैकबेंचर्स ऐसे होते हैं जो टीचर के मारने पर टीचर की गाड़ी के साथ छेड़खानी करके चले आते थे। आप भी उनमें से एक थे?
1: जी
0: नहीं, अच्छा ऑल राइट। चलिए भैया इसके बाद लिखा है कि बेटा सुधर जाओ अच्छा दिन देख कर। जी हाँ, यार इसके बाद लिखा है नागेश्वर जी ने, मेरी भी एक टीचर का फेवरेट डायलॉग यही था, जब मैं बोलता था मैम होमवर्क किया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, मैम बोलती थी तुम क्यों नहीं रह गए घर पर। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, इवन मैंने होमवर्क किया नहीं होता था और इसीलिए बोलते थे कि मैम कॉपी घर पे रह गई है, और मैम कहती थी तो तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों नहीं रह गए घर पे। और ये सुनने के बाद मैं सोचती थी मैम अगर मैं रह जाती तो डायलॉग कौन मारता आपके सामने, और आप कैसे डायलॉग मारती फिर मुझे। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास सुनील कुशवाहा जी का आया है, एंड लगातार आपके कॉलिंग प्रोग्राम को चालू रखेंगे क्योंकि ये है आपका अपना क्वालिटी उनको ना फरमाइशों वाला कार्यक्रम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: और आप एंजॉय कर रहे थे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और लिसनर, लेट्स सी कौन आया है हमसे बातचीत करने। हेलो
1: हेलो
0: अंजी, आपका नाम?
1: हमारा नाम पंडित भोलानाथ शास्त्री।
0: कैसे हैं भोलेनाथ जी आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं, बस आप लोगों की दुआएं हैं, प्रभु की कृपा है।
0: अच्छा, आपका नाम बहुत प्यारा है, भोले भी हैं आप और ऑफ कोर्स शिव जी पे नाम है, तो क्या सच में आप भोले हैं?
1: बिल्कुल भोले हैं, लेकिन साथ में भोला भाला भी है, जरूरत पड़ जाए तो।
0: अच्छा, मतलब वो दोनों खूबी है आपके अंदर की, जब तक हम भोले हैं हमें भोला रहने दो, जब तक हम नहीं है फिर बहुत खतरनाक हो जाएंगे।
1: और सभी भारतवासियों को और आज शिक्षक दिवस के रूप में जो दिन है, ये बड़े उत्साह का दिन है कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला, इसके सभी के लिए गुरुजनों को प्रणाम और सभी देशवासियों को यथाउचित शुभकामनाएं। आपको भी
0: बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। फिलहाल क्योंकि आज टीचर्स डे है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो स्कूल असेंबली में हर दिन सुबह हम लोग एक प्रेयर करा करते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, अब आपको समझ में आया कि इतनी शक्ति हम क्यों मांगते थे?
1: जी बिल्कुल, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: जिंदगी की किस पड़ाव पर आकर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ ये शक्ति की जरूरत अब पड़ रही है?
1: जिंदगी तो शुरुआत से जब से हम जानने लगते हैं उस आने लगता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है।
0: क्या बात,
1: जिंदगी पड़ा हुआ। लेकिन आज मुझे जब लगा, जब हम GIC में गए हुए थे, एक विज्ञान संगोष्ठी थी आज जिला स्तरीय
0: जी,
1: और शिक्षक दिवस भी था वहाँ, हम इस समय अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रतियोगिता भी थी, तो निर्णायक मंडल के साथ में। लेकिन जब बच्चों से कुछ सुनने को मिलता है और निर्णायक जब निर्णय करते हैं वहाँ कुछ मौका मिलता है, तो लगता है कि जिंदगी में शिक्षक का महत्व क्या है, शिक्षक से हमें जुड़ना कैसे चाहिए और फिर अपने जीवन को गुरुजनों से मिलकर बनाना कैसे चाहिए, ये मिलता है जो है, तब पता आता है कि जीवन क्या है।
0: जी वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है ना स्कूल से निकलने के बाद हम स्कूल को थोड़ा ज्यादा मिस करते हैं।
1: जी जी, देखिए एक बात बताएं, जब व्यक्ति सामने होता है तब उतना उसको प्रेम या कोई चीज उतना समझ में नहीं आता, जब वो हट जाता है जैसे दूर से कहीं से बात होती है।
0: जी
1: ये बात होती है,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी पहले जिस स्कूल में थी वैसे सोचती थी कि बस निकल जाओ कैसे भी निकल के मम्मी के पास पहुंच जाओ, और अब मुझे याद आता है यार क्या दिन थे।
1: अब जैसे मुझे वो दिन याद आता है जब अपने ज्ञानस्थली में रेडियो जिस दिन ओपनिंग हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था
0: जी,
1: और हमारी बच्ची प्रीति वहीं से जो है म्यूजिक से बीए की है।
0: ओके,
1: तो जो है 2 साल कंटिन्यू विद्यालय में, ऑफिस में, कार्यालय में, स्टूडियो में बैठने का मौका मिला
0: जी,
1: अभी भी जाते रहते हैं। तो ये बड़ी, जैसे जब वहाँ से हटते हैं व्यक्ति को कहीं चर्चा होती है तो याद आता है कि वहाँ ये लगा था, वो होता था, ये प्रोग्राम था, वो दृश्य बिल्कुल नजरों में घूमने लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बातें सुनकर मुझे मेरा स्कूल याद आने लगा।
1: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने भाई। आप अपने कुछ विद्यालय के बारे में कुछ साझा करिए उन्नति जी, कैसे आपको विद्यालय क्यों याद आया?
0: क्योंकि एक तो मैंने बहुत मस्ती की हुई है अपने स्कूल में, शैतानी भी बहुत ज्यादा की है, और मैं फेमस थी कि तुम बहुत हंसती हो उन्नति, क्लास में कुछ भी ना हो रहा हो, कोई भी शोर ना कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है।
1: अच्छा,
0: इसके बाद भी मेरा नाम आ जाता था कि उन्नति तुम शांत बैठो, तुम बहुत हंस रही हो, बल्कि मैं हंस भी नहीं रही हूँ।
1: अच्छा,
0: और ये चीज मुझे हमेशा याद थी कि संस्कृत वाली मैम ही अक्सर मुझे टोका कर देती कि उन्नति तुम बहुत हंसती हो, एंड आई वाज लाइक मैम मैं कब हंस रही हूँ।
1: और एक बात और बात बताएं बेटा, जैसे जब कोई इस तरह से हंसमुख बच्चे मिलते हैं तो उनको अगर ये कह दो अपना मुंह बंद रखिए, अपना मुंह बंद रखिए, तो बार बार उनको हंसी आ जाती है।
0: बिल्कुल, तब ज्यादा हंसी आती है एक्चुअली में।
1: अगर ये कह दो कि अपना मुंह बंद रखिए तो फिर कहीं ज्यादा आ जाता है उन बच्चों से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही मेरे साथ भी होता था, जब तक मैं नहीं हंस रही हूँ तब तक मैं नहीं हंस रही हूँ, जैसे मुझे टोका गया है मेरी बत्तीसी बार आ जाती।
1: अच्छा, जैसे एक बात मैं थोड़ा सा प्रश्न तो नहीं कर लेकिन कुछ पूछ सकता हूँ?
0: जी पूछिए।
1: जैसे आपका नाम उन्नति है
0: जी,
1: तो विद्या मैं जानना चाहूंगी उन्नति का अर्थ जो है वो तो लोग जानते हैं कि आगे बढ़ना, लेकिन आप कहाँ तक उन्नति किए हैं?
0: फिलहाल हम यहाँ तक उन्नति किए हैं कि हम आपसे जुड़ गए हैं, हमारे लिसनर से जुड़ गए हैं, और अभी तक हम उनसे कनेक्टेड हैं।
1: आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए कि उन्नति से बात हुई, उन्नत करने के लिए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: ठीक है, हमारा गाना वही फेवरेट गाना है पुराना वाला।
0: जी जी जी
1: चला माँ के लिए।
0: जी हाँ, मैंने आपका गाना नोट कर लिया, थैंक यू सो मच। तो भाई ये तो थे हमारे साथ जुड़े हुए भोलेनाथ जी, जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की और इनकी बातों ने मुझे मेरे स्कूल के दिन याद दिला दिए। स्पेशली वो मेरे सर के साथ जो परेड में मुझे दो दो बार लड्डू मिला करते थे, स्पेशली वो दिन बड़े याद आते हैं कि मैम एक तरफ तो लड्डू दे ही रही हैं, दूसरी तरफ सर भी दिया करते थे बिकॉज हम परेड में थे और सर कहते थे परेड वाले बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट है थोड़ा सा। फिलहाल आइए चलते हैं, इन्जॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश को, जो किसी और की नहीं रेनू तिवारी जी की है। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और भैया ये थी फरमाइश हमारी रेणु तिवारी जी की। आइए चलते हैं अगली फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। और अब आ रही है हमारी गुलाब शाह जी की, बिकॉज उन्होंने कहा था कयामत कयामत कयामत, तो थोड़ी सी कयामत ढाते हैं उनके नाम पर और एंजॉय करते हैं दीवाने फिल्म से। हाँ, मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी नाजिया अंसारी जी की, जानवी जी की, चांद बाबू जी की, सनी पाने जी की और राजू ट्रेलर्स की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा विद राजू नदी गोंडा की अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली पर।

अफशर जी की फरमाइश थी सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे कयामत। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित भोलानाथ मिश्र जी, आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोदा में। एंड हमारे साथ एक कॉल से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल अगला गाना हमारे पास है नाजिया अंसारी जी का और हमारे अरविंद जी का। भैया आपने इंग्लिश वाले टीचर बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पास आपके इंग्लिश वाले टीचर का कॉल आने वाला है, इसलिए क्योंकि आपने उनकी बहुत तारीफ तो कर दी है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, आपको अपना कॉल ट्यून गुना। मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर, क्योंकि आज मौसम जरा बेईमान है।

भैया मद्देनजर रखते हुए टाइम को आइए चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं अपने अगले सॉन्ग को, बिकॉज मैंने कहा ही था आज मौसम जरा बेईमान है, जरा बेईमान है, क्योंकि ये गाना हमारी फरमाइश है जानवी जी की, तो एंजॉय करते हैं। एंड हमारे अरविंद जी का पूछना है कि उनका गाना कहाँ गया, आपका गाना ट्रैफिक के बीच में थोड़ा सा लटका हुआ है, बहुत ही जल्द प्ले करने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। एंड भोलेनाथ जी का कहना है कि भैया आज मुझसे बात करके उनको अपने विद्यालय की याद आ गई और आपसे बात करके मुझे मेरे स्कूल के डेज याद आ गए, तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। एंड हाँ, मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में, तो बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

एंड ये थी फरमाइश हमारी जानवी जी की। आइए बात कर लेते हैं या फिर आगे बढ़ लेते हैं अगले सॉन्ग पर। अलका जी की आवाज में आप जरा इंजॉय कीजिए हमारे अरविंद जी की फरमाइश, थम के बरस ओ जरा जम के बरस। वैसे बरस ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो आप क्यों बरसाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी अभी मेरे गली का रास्ता सूखा था और आप चाहते हैं कि फिर से बारिश हो जाए, और बारिश हो जाएगी तो फिर सोचे फिर से कीचड़, फिर से वही दिक्कत। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा। मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि होने वाली है हमारी चांद बाबू की।

भैया बरस चुके हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे अरविंद जी कह रहे थे कि वाह लियो आज तो मौसम भी बेमान हुई गो हो जाता है कभी कभी, मौसम भी बेमान हो जाता है जिस तरह से आपके यहाँ बारिश हो रही है और मौसम आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। फिलहाल आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास है चांद बाबू जी का, और चांद बाबू जी कहते हैं दिल तो खोया है कहाँ खोया है, आइए देखते हैं उनका दिल जरा ढूंढ ढांड के लेकर आते हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, नहीं मिलेगा तो CBI बुला के लेकर आएंगे, लेकिन चांद बाबू का दिल जरूर ढूंढ के लाएंगे हम। सुनते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गुंडा।

चांद बाबू जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं, इसीलिए हम बढ़ेंगे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो हमारे सनी पांडे जी का है और वो सुनना चाहते हैं क्रिश फिल्म से दिल तू ही बता, अभी तक कहां था छुपा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारा है बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना तुम किधर जा रही हो।

0: एंड जस्ट इमेजिन, आप अपने दिल से पूछे, दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आंसू थी धड़कन पहली बार, और दिल से अंदर से आवाज आ जाए क्योंकि आला तुमने आज पहली बार लगाया है, मैं तो बचपन से ही धड़क रहा था, तुम ही नहीं लगा रहे थे, तो कैसा लगेगा? मतलब सोचिए, अगर दिल बात करने लग जाए तो दिल कहेगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, जितना बदनाम मुझे कर दिया गया है। आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग मेरा फेवरेट है और बहुत ही प्यारा है, बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना तुम कहाँ जा रही हो, राजू टेलर ने फरमाइश कर दी है, एंजॉय कीजिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में। हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे भोलेनाथ जी की है, और आखिरी गाना जो ऑफकोर्स मैं आपको देकर जाती हूँ, लेट्स सी आज का आखिरी गाना कौन सा होने वाला है।
1: लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

आए हाय भैया, इतने खूबसूरत गाने को बीच में रोकने के लिए माफी मिल सकती है क्या? अगर मिल सकती है तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए, बिकॉज भोलेनाथ जी का गाना हमारे पास है और अभी तक हम बहुत मस्ती कर रहे थे। फिलहाल आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाइए क्योंकि हमारी माँ की ममता आ चुकी है, यानी कि तेरी उंगली पकड़ के चला। एंजॉय करते हैं और अपनी माँ को थोड़ा याद कर लेते हैं भैया, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है।

ये फरमाइश थी हमारे भोलेनाथ जी की, और वो लिख रहे हैं उन्नति बिटिया आज स्टूडियो में, स्टूडियो से गीत बजाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और शुभकामनाएं एवं शुभ आशीष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इतने सारे प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे आखिरी फरमाइश की ओर, आखिरी फरमाइश जो कि बहुत ही गजब की हमारे नागेश्वर धाकर जी की है। हम ये गाना डेडिकेट करते हैं उन सभी लिसनर्स को जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आज के अपने कॉलिंग वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गुना में। और अब चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए, आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 6.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अगला प्रोग्राम भूलिएगा नहीं, आपके गानों वाला शो, जी हाँ, नाम है क्या असली बीट, सुनना मत भूलिएगा। अच्छा प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार, और एंजॉय कीजिए जरा थोड़ा सा लाल गरारा बन के शरारा। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो क्या स्टलिंग बेस।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में, एंड दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, और स्पेशल गेस्ट का नाम खुलासा करने से पहले मैं बता दूं, आज बतौर को होस्ट है आपकी अपनी आरजे जिमी। सो वेरी वेलकम टू यू आरजे जिमी।
1: थैंक यू सो मच मोनिका अपने इस प्रोग्राम में मेरा वेलकम करने के लिए। प्लीज हमें जल्दी से बताएं कि आज गेस्ट कौन है।
0: ओके ओके ओके, सो जितना आप एक्साइटेड है उतना आई एम श्योर लिसनर्स भी एक्साइटेड होंगे। सो टुडेज स्पेशल गेस्ट इज मिस्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी, जो कि फिजिशियन है। सर, आपका बहुत बहुत है हमारे इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर।
2: थैंक यू सो मच,
0: अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमें बताएं, यानी कि आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय हमें दें, जैसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी, आपके माता पिता के बारे में, आपके बचपन के बारे में, प्लीज।
2: मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी है, मैं वर्तमान में जिला चिकित्सालय में फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यही गोंडा का ही रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, माताजी गृहिणी थी। मेरी प्राथमिक पढ़ाई यही गोंडा से ही, चैम्बर्स मेमोरियल से मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई वहाँ की। उसके बाद मैं महर्षि विद्या मंदिर में इंटर किया।
0: जी सर, अब जानना चाहूंगी कि आपके बचपन में शौक क्या क्या थे, या कौन सी हॉबीज हैं आपकी जो आप अभी भी जिन्हें परस्यू करते हैं, प्लीज बताएं।
2: मैं ज्यादा प्रेफर करता था आउटडोर गेम्स, जिसमें क्रिकेट था जो मेरा पसंदीदा था। मैं अभी भी कभी मौका मिलता हूँ तो उसको खेलता हूँ।
0: अक्सर ऐसा होता है ना, जिनको क्रिकेट पसंद होता है वो कोई भी क्रिकेट का मैच देखना नहीं मिस करते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, आप कैसे मैनेज करते हैं, या फिर आप देख पाते हैं सारे के सारे मैचेस, कि आपका भी मैचेस स्किप हो जाते हैं?
2: अमूमन स्किप हो जाते हैं, बाकी का मोबाइल से अपडेट लेते रहते हैं।
0: ओके, दैट्स ग्रेट। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन में हम सोचते हैं कि हम कुछ और बनेंगे, और बड़े होते होते हम कुछ और बन जाते हैं। जैसे बचपन में सोचा था पायलट बनने का, लेकिन बड़े हुए तो पता चला बिजनेसमैन हो गए। सो आपके साथ भी यही हुआ था क्या, कि आपने बचपन में ही सोच रखा था कि आप जो है डॉक्टर बनने वाले हैं?
2: बिल्कुल सही आपने कहा, मेरा मोटो डॉक्टर बनने का था, और माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से हमने अपना गोल को अचीव किया।
0: जी सर, जानना चाहूंगी कि जैसे भी आपने बताया कि आपने अपना गोल अचीव किया, सिंस आपने बचपन से ही सोच रखा था कि आपको डॉक्टर बनना है, तो जाहिर है डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो चाहूंगी कि आप अपना इस मेहनत का जो वाकया है वो हमारे साथ शेयर करें विस्तार से, प्लीज।
2: मैंने अपनी 12th की पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर से 2004 में कम्प्लीट की, और उसके बाद मैंने 2005 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। 2012 में मैं पास आउट होके दिल्ली में पहली बार जॉब करना स्टार्ट किया। काफी स्ट्रगल था स्टार्टिंग में, कहीं पे भी प्रैक्टिस स्टार्ट करना और पब्लिक को फेस करना, उनके सवालों के जवाब देना, इमरजेंसीज, एवरीथिंग, बट समय के हिसाब से सारी चीजें सीख ली हमने। फिर उसके बाद हमने कानपुर में रेजेंसी हॉस्पिटल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वहाँ पे काम किया। उसके बाद हमने बनारस में एक हॉस्पिटल को रन अप किया, प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर 2015 में हमारी शादी हो गई, और हमारी वाइफ भी हेल्थ सेक्टर में है, NHM में सिप्सा डिविजनल ऑफिस में पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने ही मेरे जॉब के लिए यहाँ फॉर्म डाला था, और इंटरव्यू दिया मैंने। तो यहाँ पे पहले मैंने NRC ज्वाइन किया, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज होता है। 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है, खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। हमारे CMS के आदेश पर हमने यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मेडिसिन डिपार्टमेंट, IPD और OPD हमने संभाली, और अभी तक मैं यहीं पे ही कार्यरत हूँ।
0: जी सर, आपने बड़े ही संक्षिप्त में बता दिया आपकी पूरी जर्नी करियर की। एक चीज है जो हम कहीं
1: कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं और शायद हमारे लिसनर्स भी ये चीज जानना चाहते हैं कि जिसे आपने बताया कि ट्वेल्थ के बाद जो है आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, कहने में तो बड़ा आसान है कि ट्वेल्थ के बाद आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन, बट किस तरह से आपने उसमें प्रिपरेशन की, किस तरह से आपने उसे क्लैरिफाई किया, किस तरह से आपने उसको क्लियर किया, फिर वो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमें जो सुन रहे हैं जो डॉक्टर का सपना लेकर बैठे हुए हैं और उनको शायद थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी आपकी स्ट्रगल से, आपकी कहानी से, प्लीज बताएं।
2: मैंने अपनी पढ़ाई मेडिकल की फॉरेंसिक की है, मॉस्को यमन यूनिवर्सिटी रशिया से
1: जी।
2: वहीं से मैंने अपना एमडी भी कंप्लीट किया 2012 में। उसके बाद उसमें एफएमजी का एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो इंडिया में काम करने के लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है। 2012 में उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में कम्प्लीट किया, फर्स्ट में कुछ नंबर उससे रह गया था बट सेकेंड में अटेम्प्ट मैंने कम्प्लीट किया
1: जी।
2: तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ग्रीन पार्क हॉस्पिटल नोएडा में पहली बार ज्वाइन किया था, 6 महीने मैंने वहाँ पे वर्क किया, उसके बाद मैं कानपुर आ गया
1: जी। सर एक चीज जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एक अटेम्प्ट देते हैं फिर दूसरा अटेम्प्ट देते हैं तो कई बार होता है कि हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम अगली बार वाला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर भी ऐसा हुआ था कि आप खुद पे क्वेश्चन कर रहे थे कि मे बी सेकंड अटेम्प्ट मैं ना कर पाऊं जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया, या आप पूरी तरह से श्योर थे?
2: नहीं, मैंने सोचा कुछ कमी रह गई थी, उसी कमी को मैंने और मेहनत बढ़ा के किया और हमें सफलता प्राप्त हुई
1: जी। अब जानना चाहूंगी कि बतौर एक फिजिशियन और एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, सर अब जानना चाहूंगी कि आप अपने पहली जॉब का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें।
2: पहली जॉब मेरी दिल्ली में थी ग्रीन पार्क हॉस्पिटल में, एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था, EMO इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। तो वहाँ पे इमरजेंसीज में होती हैं पॉइजनिंग की होती है, एक्सीडेंटल होते हैं, तो पहली बार तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही है बट अपने सीनियर से एक्सपीरियंस लेके धीरे धीरे हमने सीखा और काफी अच्छा काम किया वहाँ पे
1: जी। एक चीज जो हमारे बार बार आ रही है वो ये है कि आपने जब सिंस मेडिसिन फील्ड चुनी, जब हेल्थ सेक्टर में आने का चुना, तो आपने फिजिशियन ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं? आप ऑर्थो में जा सकते थे, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते थे, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो सकते थे यानी ऑन्कोलॉजिस्ट, सो आपने जो है सिर्फ फिजिशियन सेक्टर ही क्यों चूज किया, ये जानना चाहूंगी, कोई तो वजह होगी, प्लीज बताएं।
2: फिजिशियन एक जनरल पर्सन जो होता है, जो आम समाज होता है, उससे कनेक्टेड रहते हैं। हम पहली बार जब बीमार पड़ते हैं सबसे पहले हम रेफर करते हैं फिजिशियन को, फिजिशियन के पास ही सारे पेशेंट आते हैं, फिर उसके बाद वंशेज निकलती हैं। फिजिशियन ही होता है जो डिवाइड करता है कि किस डिपार्टमेंट का पेशेंट है, किस स्पेशलाइजेशन में इस पेशेंट को भेजना है और कैसे इसको मैनेज करना है
1: जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। बातों बातों में बता दूं आपको कि वक्त हो रहा है एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, तो डियर लिसनर्स हम

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स

0: दर्पण फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12 गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: हेलो, वेलकम इन योर शो गौदली। और हम फिर से वापस आ गए हैं छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। और हम सर अभी, क्योंकि आपके इंट्रो की ही बात हो रही थी, हम आपके बारे में ही जान रहे थे, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये था, जब भी आप स्टडी करते थे तो बीच बीच में कई दफा ऐसा होता है, हम हमेशा तो मोटिवेट नहीं रहते, बीच बीच में कई दफा हमारा मोटिवेशन लेवल 1-2% घट जाता है, लगता है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपना गोल अचीव होगा नहीं होगा। उस समय आपको मोटिवेट कौन करता था, आपके फ्रेंड्स, फादर, या कैसे आपको मोटिवेशन का जो कैप्सूल होता है वो कैसे फिर मिलता था, और अपनी स्टडी फिर से आप कैसे शुरू करते थे?
3: हमेशा से मेरी मदर ही मेरी मोटिवेशन मेरा करती थी
2: जी।
3: मुझे हमेशा से, वो कभी मैं डीमोटिवेट हुआ या समथिंग एल्स कहीं भी भटक जाने पे, माता जी हमारी बिल्कुल हमें रास्ते पे बताती थी।
2: ओके सर, आपके बचपन का कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
3: बचपन में हम 9th में थे, तो मेरे दोस्त थे
2: जी,
3: जो यही गोंडा के ही हैं
2: जी।
3: तो उस समय जब टेस्ट या कुछ एग्जाम वगैरह होता था
2: जी,
3: तो अक्सर होता था कुछ एक्स्ट्रा सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना
2: जी। बिल्कुल।
3: तो हमारे टीचर आवास विकास में रहते थे, विनय शुक्ला नाम है जिनका
2: जी।
3: तो हमारे दोस्त में वही रहते थे। मैं 4 बजे साइकिल से उठ के जाके सारे दोस्तों को उठा के और जिसमें से कभी एक दोस्त मेरा था, दोनों में से एक, वो आज तक कभी नहीं उठा।
2: ओके, सो आप एज अ अलार्म काम करते थे अपने दोस्तों के लिए?
3: हाँ, दोस्तों को लिख के जाता था, मैं टीचर को भी उठाता।
2: ओह माय गॉड, ये तो काफी यूनिक था।
3: अक्सर सुबह के टाइम लाइट नहीं होती थी, तो हम लोग छत पे बैठ के पढ़ते थे।
2: ओके,
3: और क्लास 9 से ही हम लोग ने फ्रॉग का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था।
2: वाओ, दैट्स वंडरफुल। वेल, आप शायद पहले स्टूडेंट रहे होंगे जो अपने टीचर को भी सुबह 4 बजे उठाने जाते थे। दैट्स एन रियली इंटरेस्टिंग वन। सर, एक बात जो आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने बताया कि आप सुबह उठकर पढ़ते थे, तो सुबह उठकर पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी होता है?
3: बहुत अच्छा होता है, एक अच्छे से रेस्ट, माइंड रेस्ट सेटअप होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा जो माइंड होता है वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है जो चीजें हम पढ़ते हैं
2: जी। सर, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि एक टाइम टेबल बनाना स्टडी के लिए आपको कितना बेटर लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे डे का एक रूटीन ना बनाएं कि आज मुझे अपना इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, ये मुझे आज कंप्लीट कर लेना है, तो चीजें बिल्कुल बैलेंस नहीं चलती हैं। एक टारगेट के साथ हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी गोल हमें अचीव करना है तो टारगेट बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे चीजों का, सारे चैप्टर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी स्क्रिप्ट ना होने पाए। हम कुछ भी मिस करेंगे, हमने बायो पढ़ लिया, केमिस्ट्री मिस कर दी, केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स मिस कर दिया, हमारी सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए
2: जी। और बैलेंस तभी हो सकती है जब हम एक फ्लो चार्ट और एक टारगेट लेके चलेंगे तभी।
3: ओके, टाइम टेबल नीड
2: जी। सर, अब हम आते हैं आपके कार्य क्षेत्र की तरफ, यानी कि आपके मेडिकल लाइन की तरफ, हेल्थ सेक्टर की तरफ। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज जानना चाहूंगी कि जब आप पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चयनित हुए थे और आपको था कि आपको अपना कार्यभार यहाँ संभालना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तो क्या डर आपके मन में था, क्या चीज आपको लग रहे थे कि आपको फेस करने हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी।
3: जिला अस्पताल में जनरली पेशेंट गाँव के आते हैं
2: जी,
3: लोकल पेशेंट्स आते हैं, तो अपनी भाषा में अपने तरीके से वो अपनी परेशानियां बताते हैं, उनको समझ पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
2: एग्जैक्टली,
3: एक्यूरेट वो नहीं बताएंगे, हमें दर्द हो रहा है, कई शब्द हैं जैसे कि शरीर में हमारे तनतनाहट हो रही है
2: जी।
3: तो इन सबको, इनको जान पाना कि हम कैसे अपने इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, फिर उनको सेटिस्फाइज करना कि

0: तभी हम अच्छा डायग्नोस बना पाएंगे, डायग्नोस अच्छा होगा तभी ट्रीटेबल हम बीमारी को कर पाएंगे।
1: जी सर, अभी आपने जिक्र किया एक फ्रेंडली एटीट्यूड का जो कि हर डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, सो दैट देयर इज अ बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके पास सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स लगभग आते होंगे, तो आप हर एज ग्रुप के पेशेंट को सेपरेटली कैसे डील करते हैं वो जानना चाहूंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है बच्चे से अलग वे में बात करनी पड़ती है, किसी बुजुर्ग से आपको अलग तरीके से बात करके जानना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है। सो हाउ यू मैनेज दीज थिंग्स?
0: जो माता जी आती हैं उनको माता जी से, जो बच्चे आते हैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, बाकी हमारे एज के आते हैं उनको भाई की तरह।
1: जी कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रीट कर रहे हो, स्पेशली जब पेशेंट्स आपके सामने हो, तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि वी आर लाइक हमको समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, कुछ और बोल रहा है या पहली बार ये एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे टैकल करते हैं?
0: फिर तो सिम्टोमेटिक जाते हैं और उसके घर वालों से या रिश्तेदार से कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हैं, पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या रही है, उससे हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं।
1: जी चूंकि सर इस वक्त का मौसम भी कुछ बिल्कुल अलग सा है, तो मौसम में स्पेशली कई सारी जो बीमारियां हैं वो दस्तक दे देती हैं, तो हम जानना चाहेंगे लाइक सीजनल डिजीजेस के बारे में और उससे हम कैसे बच सकते।
0: सीजन में अभी तो वायरल फीवर है और प्रेजेंटली तो डेंगू फीवर भी चल रहा है।
1: जी
0: डेंगू फीवर कहने में बहुत लोग सहम जाते हैं डेंगू हो गया। डेंगू बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें हमारा प्लेटलेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है और डाउन जाता है जब हमारा 20,000 से 30,000 तक डाउन जाता है, तो फिर हमें एडमिट होने की जरूरत है, अदरवाइज हम घर पे खुद को हाइड्रेट करके और बुखार दवा लेके किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उनकी सलाह पे घर पे इसको ट्रीट कर सकते हैं।
1: सर एक चीज जानना चाहूंगी, क्या डेंगू और डेंगू फीवर ये दोनों अलग अलग होते हैं या कुछ एक ही होते हैं?
0: डेंगू फीवर और डेंगू कोई फर्क नहीं है, एक ही है। डेंगू बीमारी का नाम है और डेंगू की वजह से फीवर उसको डेंगू फीवर बोलते हैं।
1: ओके ओके सर, आजकल जो है हमारे शहर में डेंगू का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं और बतौर डॉक्टर आप क्या नसीहत देना चाहेंगे इस बारे में?
0: घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, ये मच्छर डेंगू के जो है साफ पानी में इकट्ठा होते हैं।
1: जी
0: साफ सफाई रखें, मच्छरदानी लगा के रखें। अगर आपको किसी बात पे डेंगू हो भी जाता है तो आप कैसे जान पाएंगे आपको डेंगू हो गया कि आपको डेंगू की जांच करानी चाहिए या किसी फिजिशियन से आपको सलाह लेनी चाहिए? ठंड लग के बुखार आता है पहली बार। दूसरी चीज है इसमें जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होगा और बाकी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो जब हमारा प्लेटलेट 20,000 के ब्लो चला जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, माउथ से, गम मसूड़ों से, नाक से या कहीं से भी ब्लड आ सकता है।
1: जी और अभी आपने बताया कि जब भी आपको लगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू तो आपको चेकअप कराना चाहिए, और होम रेमेडीज के तौर पर हम जो है किन चीजों का सेवन करके इसको कम कर सकते हैं ये जानना चाहूंगी।
0: अगर आपको डेंगू है, डिटेक्ट हो गया आप डेंगू पॉजिटिव हो, तो आपका फिजिशियन जो है वो आपको जो दवाएं देता है उसको लीजिए, खुद को हाइड्रेट रखिए।
1: जी
0: हाइड्रेशन ही हमारा प्लेटलेट बढ़ाएगा, जब डिहाइड्रेट हम हो जाएंगे तो प्लेटलेट उतनी तेजी से टूटेगा।
1: जी थैंक यू सो मच सर, हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन एक वंडरफुल से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तो वक्त हो गया है इस प्यारे से सॉन्ग का और मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गौधली में। दिस इज योर फेवरेट RJ मोनिका, और बतौर को होस्ट आज हमारे साथ हैं RJ जिमी, स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी जो कि फिजिशियन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर, हम आपसे बात कर रहे थे सीजनल डिजीजेस के बारे में कि इस वक्त का मौसम ऐसा है, बारिश भी है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो लोगों को हो रही हैं। हमारे शहर गोंडा में कौन कौन सी और डिजीजेस हैं डेंगू एंड वायरल को छोड़कर जो इस वक्त और लोगों को ज्यादा हो रही है, और हमें इससे कैसे सावधान रहना चाहिए या अपने तौर पर हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्लीज बताएं।
3: मोस्टली इस समय कॉमन कोल्ड है, बाकी डेंगू के बारे में हमने बात की है इससे, और दूसरी है बीमारी सांस से संबंधित बीमारी। मौसम इस समय कभी बरसात हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो ऐसे में जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, जिनको एलर्जिक अस्थमा होता है, वो पेशेंट थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, तो उनको थोड़ा सा खुद को ठंडी और खट्टी चीजों से दूर रखना चाहिए। कूलर या पंखे की सीधी हवा में नहीं रहना चाहिए, या बरसात में भीगने से बचना चाहिए, या फिर कहीं से भी आके तुरंत खुद को बिल्कुल ठंडा पानी से या फिर AC में तुरंत नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं।
2: जी सर, एक चीज जो हम सबके जहन में आ रही है, चूंकि आपने बताया है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, तो एक चीज हमारे जहन में ये आ रही है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं अपने अदर टीम मेंबर्स के साथ, लाइक पेशेंट्स के साथ, कैसे आप नर्सेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कैसे आप अदर डॉक्टर्स और अदर फिजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं जिससे आप एक बेहतर सेवा दे पाएं।
3: IPD पेशेंट के लिए हमारा टीम वर्क ही बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करता है, डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट एडवाइस करता है, लेकिन उसको फॉलो करने का काम हमारी नर्सिंग स्टाफ का होता है, या पेशेंट की बेड केयर का वार्ड बॉय का काम होता है। हम सभी के साथ सामंजस्य बना के, बाकी पेशेंट को अटेंडेंट को अपना पर्सनल नंबर भी कभी कभी दे दिया जाता है, अगर उनको कोई पर्सनल परेशानी होती है ड्यूरिंग एडमिशन या घर पे रहते हुए, तो फोन पे भी वो कंसल्ट कर लेते हैं, फिर हम सिस्टर से बात करके उनके समस्या का समाधान करवा देते हैं।
2: जी, तो कितना हद तक आपको लगता है कि ये आसान है, क्योंकि हमें दिखता है कि आसान होता है, बहुत इजीली हमने कोलैबोरेट कर लिया, बट कितना हद तक ये सच में आसान होता है? क्या ये जो कोलैबोरेशन है इसमें कोई डिफिकल्टी आती है?
3: डिफिकल्टी आती है, हर पर्सन अपना अलग अलग नेचर होता है, और सभी को एक साथ बाउंड करके रखना थोड़ा सा चैलेंजेबल है, बट हम कर लेते हैं।
2: बेशक। सर, एक सवाल जो कब से मेरे जहन में घूम रहा है वो ये है कि कहा जाता है कि अभी भी हमारा हेल्थ सेक्टर, यानी हमारे शहर गोंडा का हेल्थ सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कुछ कमियां अभी भी हैं, या रादर आई शुड से वी हैव माइल्स टू गो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, स्पेशली अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो। तो आपको क्या लगता है कि हमारे शहर गोंडा के हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी चीजें और ऐड होनी चाहिए, यानी क्या सुधार और होना चाहिए?
3: तो बेस लाइन पे काफी चीजें होनी चाहिए, और हेल्थ सेक्टर की जहाँ तक बात है तो इसमें कमी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं।
2: जी,
3: बाकी अभी जिला चिकित्सालय संबद्ध हो गया है मेडिकल कॉलेज से, सुविधाएं इसमें बढ़ेंगी, हमारे पास MRI भी आ जाएगी, उसके बाद वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाएगी जो कि अभी नहीं है।
2: जी, जानना चाहूंगी कि इस मेडिकल कॉलेज की संबद्धता से हमारे आम जनमानस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है।
3: स्पेशलाइजेशन हमारे पास बढ़ जाएगा, जैसे कि हमारे पास केवल मेडिसिन डिपार्टमेंट यहाँ पे था, कार्डियो डिपार्टमेंट था बट अभी इस समय बंद पड़ा हुआ है, डॉक्टर जीके सिंह थे वहाँ पे, वो रिटायर हो गए थे। मेडिकल कॉलेज आने से हमें गैस्ट्रो मिल जाएगा और न्यूरो मिल जाएगा, कार्डिक डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जो पेशेंट लखनऊ जाते थे उनको सारी सुविधाएं यहीं पे मिल जाएंगी।
2: जी, एक चीज जो बतौर फिजिशियन मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार हमें सुनने में आता है, अखबारों में खबर होती है ये कि सरकारी अस्पतालों में बाहर से दवा लिख दी जाती है या बाहर की दवा लिख दी जाती है, तो उसके लिए जो है पेशेंट्स परेशान होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, इस पे आपके क्या विचार है?
3: कभी कभी उपलब्धता नहीं हो पाती है, इमरजेंसी में पेशेंट आता है शाम के टाइम, तो वार्ड में कभी उपलब्धता नहीं हुई, सैटरडे को आया, शाम को नहीं हुई, संडे को स्टोर बंद रहता है, हम उसको इंडेंट करवा के जो दवाएं नहीं रहती उसको मंगाई जाती हैं, तो इमरजेंसी केसेस में कभी कभी जान बचाने के लिए कुछ दवाएं मंगानी पड़ती हैं, ये बात सही है, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए नहीं, पेशेंट के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये चीजें की जाती हैं।
2: जी, आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हद तक अभी बेनिफिशियर है, कितना ज्यादा वो ठीक ठाक बना हुआ है, या आपको भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और बढ़ावा होना चाहिए ताकि जो है पेशेंट्स को एक अच्छी सुविधा मिल पाए?
3: थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इम्प्रूव हो भी जाएगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, अभी OPDs भी बढ़ जाएंगी, उसके IPDs भी बढ़ जाएंगे, बेड्स भी बढ़ जाएंगे, और हमारे सबसे बड़ी इंटेंसिव केयर यूनिट ICU हो जाएगा, जो क्रिटिकल पेशेंट को हम यहाँ रख नहीं पाते हैं और उनको रेफर कर देते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, उनको हम यहाँ पे ट्रीट कर पाएंगे।
2: सर, अभी तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, आपको एज अ डॉक्टर क्या लगता है कि और क्या क्या अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए?
3: हॉस्पिटल में पर तो सिक्योरिटी होनी चाहिए,
2: हम विस्तार से बताएं प्लीज।
3: अब कभी समय मिलेगा तो हमारे OPD में आएगा, 13 में बैठता हूँ, तो वहाँ एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जो पेशेंट को एक एक करके भेजे।
2: एग्जैक्टली, ओके, वी गॉट इट, कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक साथ काफी लोग आ जाते हैं और लाइन बहुत लंबी होती है,
3: हर पेशेंट को जल्दी होती हर कोई, बट हम चाहते हैं पेशेंट अपनी सारी समस्याएं बताए, ये तभी मुमकिन है जब एक पेशेंट खुद की समस्या खुद से बताए, एक साथ 10 लोग बताएंगे और तो डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है।
2: जी, ये है कि जिस डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा सब्र होता है उसका सब्र भी इम्तिहान लेने लगता है उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और सबको चेक करना इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स, तो एक सिक्योरिटी चेक का होना जरूरी है। बिल्कुल, आई एग्री। और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप बदलाव चाहते हैं या सुधार चाहते हैं या एड ऑन करना चाहते हैं?
3: अभी OPDs कम है, फिजिशियन की 2 OPDs हैं, 3 चलती हैं, थोड़ा सा दवा वितरण काउंटर भी कम है, अभी 2-3 महीने में ये सब सुधार हो जाएंगे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेडिकल कॉलेज से।
2: सर, एक चीज अभी हमारी RJ मोनिका ने बोला कि सब्र भी इम्तिहान लेने लगती है, सो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आपको, जाहिर सी बात है आप एज अ डॉक्टर, आपका ये बचपन से एक हॉबी था, एक सपना था, आपने उसको अचीव किया तो आप इसको शौक से करते होंगे, लेकिन कई दफा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो चाहे फिर पेशेंट की वजह से हो या काफी लंबी लाइन को देख के हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस दौरान आप क्या करते हैं अपने मूड को चिल करने के लिए?
3: मैं सब रखता हूँ, फिर भी अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं वार्ड में राउंड पे चला जाता हूँ।
2: वाओ, इट इज अ गुड वे टू हैव अ गुड स्लीप। बिल्कुल, ये अच्छा है। वैसे सर, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो कुछ लोग तो नॉर्मल वे में आपको बता देंगे, कुछ लोग को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, मगर कुछ आते हैं बिल्कुल इतर किस्से, कुछ ऐसे किस्से जिसको सोचकर आप जो है कभी हंसते हैं, कभी आपको लगता है कि ये किस्सा आपको ताउम्र याद रहने वाला है, तो कोई एक ऐसा किस्सा जो आपका पेशेंट के साथ हुआ हो जिसे आप कभी नहीं भूलने वाले हो?
3: कई पेशेंट आते हैं जो पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो खुद का ना बता के हमको ये पेशेंट डॉक्टर को ही बताता है यहाँ दर्द कर रहा है यहाँ दर्द कर रहा है।
2: ओके।
3: तो सारी चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है।
2: जी सर, कई दफा क्या होता है कि हम जब अपना पूरा दिन भर का काम करते हैं तो काफी जब हम थक जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी दिन बहुत सारे पेशेंट की लाइन लगी होगी और आप घर जाके उस दिन काफी थके हुए महसूस करते हैं, सो उस दिन अपनी क्या करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद उस टाइम पे आप करते हैं या म्यूजिक से आपका कितना संबंध है? मैं एज अ डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक क्या कभी आपके थकावट के लिए करती है?
3: म्यूजिक नहीं, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ।
2: okay.
3: अगर वो जगह भी मिल जाते तो।
2: ओके, बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उनके उठने से पहले आई थिंक आप चले जाते होंगे और आपके आने से आई थिंक वो सो जाते होंगे। yes. ये मैक्सिमम टाइम आपके साथ होता है और फिर भी आप अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं ये आपसे हम जानेंगे बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, हमारा संगीत से काफी घना रिश्ता है, सो हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और एंजॉय करते हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग और मैं मिलती हूँ अपने गेस्ट के साथ इस सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: हेलो, वेलकम इन योर शो गाधली, और हम फिर से लौट चलते हैं हमारे गेस्ट के साथ। और मेरा अगला सवाल ये है सर से, हम डेली रूटीन पे बात कर रहे थे, सो सर, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है? भाई, हम तो हॉस्पिटल पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, और लिसनर से भी बस यही उम्मीद करूंगी कि आप हॉस्पिटल का मुख कभी ना देखें। सो आप क्या बताना चाहेंगे, आप अपना डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हैं और हेल्दी डाइट को आप कितना सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कि हम घर पे ही क्या कुछ कर सकते हैं कि हमें कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े?
3: मेरी डेली रूटीन में पहले तो मैं सुबह 1 घंटे जिम करता हूँ
2: जी,
3: अपने लिए वक्त निकाल के। उसके बाद 8 बजे से हमारा अस्पताल स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक अस्पताल में रहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी प्राइवेट OPD है सिटी गार्ड में
2: जी,
3: वहाँ पे हम 2 बजे से 6 बजे तक रहते हैं। उसके बाद 6 बजे हॉस्पिटल राउंड होता है, 7:30 तक वापस क्लिनिक पे आते हैं, 10 बजे तक, 10:30 तक रहते हैं, उसके बाद घर जाते हैं।
2: ओके, वाओ, सच अ हेक्टिक शेड्यूल। सर, अभी तो आपने बताया अपने डेली रूटीन के बारे में, हमारे लिसनर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि दिन में थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा खुद के ऊपर देना, एक्सरसाइज करना या फिर योगा करना, इसको आप कितना मोटिवेट करेंगे?
3: मेरी खुद की, मैंने आपको बताया इतना टफ रूटीन है, फिर भी मैं अपने लिए 1 घंटे निकालता हूँ
2: जी
3: वर्कआउट के लिए
2: जी।
3: सभी को करना चाहिए, थोड़ा सा या आप ओवरवेट हैं या बुजुर्ग हैं तो योगा करिए, नहीं तो थोड़ा सा रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, स्वेटिंग होगी, जिससे टॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का कम होगा, हम कम बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव्ड करेगा
2: जी। सर, बात यहाँ जब लाइफस्टाइल की हो रही है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चुनने की हो रही है, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की हो रही है, तो ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली ये चीज़ हमने कोरोना के टाइम पे जो है जानी कि हमें हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त हमने एहसास किया कि हमारी हेल्थ ही सब कुछ है, अदरवाइज उससे पहले हम न जाने किन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। और कोरोना से हमें ये याद आता है कि कोरोना काल के दौरान सारे डॉक्टर्स ने अपना भरसक प्रयास दिया था, ये यूँ कह लीजिए अपने बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट दिया था। तो उस दौरान आपने किस प्रकार से चीजों को हैंडल किया, कैसे मैनेज किया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ये जानना चाहूंगी।
3: कोविड टाइम में तो जिला अस्पताल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, लेकिन जिला अस्पताल में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया था और हॉस्पिटल बेड सारे फुल होते थे, 140 बेड्स थे उस टाइम पर, सारे फुल होते थे, वेटिंग में पेशेंट रहता था और एक्स्ट्रा बेडेड की भी व्यवस्था कराई जाती थी, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। उस टाइम में हम हॉस्पिटल में ही रूम लेके स्टे करते थे, घर भी नहीं जाना होता था, क्योंकि ये डिजीज़ फैलने वाली होती है, बच्चे हैं, माता पिताजी बूढ़े बुजुर्ग थे, तो इसलिए घर पे नहीं आई पे स्टे करके हमने 3 महीने कोविड पेशेंट को ट्रीट किया था
2: जी, ये तो था आपका कोरोना काल का एक्सपीरियंस। अब मुझे लगता है कि आरजे जी के पास बहुत सारी बातें हैं करने को, चूंकि वो बार बार बोल रही हैं, तो प्लीज। ओके, सो सर अभी हम डेली रूटीन पे बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि वाकई में एक्सरसाइज और जिम को लेकर आपने हमें बताया कि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अगर आप वक्त दे रहे हैं तो हम तो दे ही सकते हैं। सो ये तो हो गई डेली रूटीन में योगा और जिम को शामिल करना। अब आते हैं डाइट पे। आजकल देख रहे हैं कि यंग जो है वो बाहर का जो फास्ट फूड है वो काफी चाव से वो उसको खाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपने डेली के डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए?
3: जंक फूड के लिए तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, जंक फूड आप बंद करिए, क्योंकि सारे जितने जंक फूड है सारे टोटल उसमें स्टार्च होता है जो कि हमारे आंत में चिपक जाता है, बाद में हमें कोलाइटिस आईबीएस जैसी दिक्कतें होती हैं, जो इसमें सबसे ज्यादा बीमारियां पेट की हैं।
2: एग्जैक्ट,
3: एवरी पर्सन कुछ ना कुछ पेट की दिक्कत से
2: जी,
3: या फिर सांस की बीमारियां जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड है।
2: सर ये तो हो गई डाइट की बात। एक चीज जो सर ये होती है कि डेली दिन का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम आज 7 बजे उठ रहे हैं, कल हम 10 बजे उठ रहे हैं और कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी हम नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य जो होता है उसमें काफी सारे चांसेस होते हैं बीमारियों के। आप इसको कितना क्या कहना चाहेंगे अपने लफ्जों में कि एक डेली का भी रूटीन होना चाहिए, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए?
3: बिल्कुल होना चाहिए, आपकी रूटीन और टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। जैसे आपका योगा का टाइम है या फिर ऑफिस जाने का टाइम है, कुछ कहीं आपने थोड़ा सा उठने में या फिर आपके टाइम टेबल मिस कर दिया तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट हो जाएगा आपका।
2: जी, ये तो आपने हमें बताया कि काफी सारी चीजें अभी आपने हमें बताई। सर एक चीज ये होता है कि सपोज दैट अभी मान लेते हैं कि कोई भी पेशेंट आया आपके पास, तो हमने क्या देखा है कि वो काफी छोटी सी ही बीमारी होती है लेकिन वो काफी उसको बड़ा सोचने लगते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। सो उस दौरान आप पेशेंट को पॉजिटिव रहना कितना बताते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पॉजिटिव हम रहते हैं तो हमारी जो बीमारियां होती हैं वो सही तो नहीं हो सकती हैं लेकिन बढ़ भी नहीं सकती हैं। सो पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कुछ कहते हैं और करते हैं?
3: इलाज के साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी है।
2: जी।
3: पेशेंट पॉजिटिव सोचता है तो दवाएं भी उसको उतनी असर करती है। पेशेंट सोचता रहता है मुझे पेट में दर्द है तो उसको ना होते हुए भी फीलिंग होने लगती कि दर्द है।
2: एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मेरा पूछने के पीछे जो रीजन था वो ये था क्योंकि हमारे बाबा जी कहा करते थे कि कोई भी मेडिसिन होगी, वो चाहे फिर होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी हो, जब आप उसको एज अ पॉजिटिव तौर पे लेंगे कि मैं इसे ठीक हो जाऊंगा तो आप वाकई हो जाएंगे। और अगर आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन ले लें और आपकी निगेटिव थिंकिंग हो तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करे। सो ये तो आपने हमें बताया कि पॉजिटिव हमें रहना चाहिए। एक जो दूसरी चीज आती है सर, अभी हमने बात किया कि हमारे पेशेंट आते हैं वो काफी सोचने लगते हैं कि अरे मुझे ये हो गया वो हो गया, तो अवेयरनेस कितनी जरूरी है और अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं?
3: अवेयरनेस के लिए मैं अपने क्लिनिक पे कैंप रखता हूँ। हफ्ते में शुगर की जांच या पीएफटी की टेस्ट, जो लंग्स का टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है
2: जी।
3: तो जिससे कई पेशेंट कई बार डिटेक्ट होके नए आते हैं, डायबिटिक पेशेंट या सांस के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट, तो हम बीच बीच में ऐसे कैंप करते रहते हैं, निःशुल्क कैंप करते हैं।
2: सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि कई दफा आपने देखा हो कि मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि आपके साथ पेशेंट भी कई दिन हॉस्पिटल का शेड्यूल भी काफी बिजी रहा होगा और उस वक्त घर पे भी काम रहा होगा, सो उस वक्त आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? फिर आप अपनी फैमिली को चुनते हैं या अपने पेशेंट को चुनते हैं? क्योंकि आपका तो कर्तव्य है कि आपका कोई भी पेशेंट खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त आप क्या करते हैं?
3: ऑफ कोर्स मैं पेशेंट को ही चूज करता हूं
2: जी,
3: बाकी किसी तरीके से मैनेज कर।
2: ओके, फिर वापस आके फैमिली को मनाना पड़ता होगा।
3: बिल्कुल, ये तो आए दिन हम लोग के साथ है।
2: जी जी, बेशक हम समझ सकते हैं ये चीज। सर अब जो है बढ़ते हैं आखिरी सवालों की तरफ, और आखिरी सवाल की लिस्ट में सबसे पहला आखिरी सवाल जो हमारा है वो ये है कि बतौर एक डॉक्टर, बतौर एक फिजिशियन, आप हमारे शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एक जीवन शैली को फिक्स कर लीजिए, टाइम टेबल रखिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने काम करिए, अपनी डाइट को थोड़ा संभाल करिए, सलाद का प्रयोग ज्यादा करें, जंक फूड कम खाएं, बहुत ज्यादा नहीं कंट्रोल होता आपको तो सैटरडे को थोड़ा सा खा सकते हैं।
2: एंड व्हाट इफ अगर कोई मंडे को खाना चाहे तो?
3: वंस अ वीक आप कोई भी डे चूज कर लीजिए।
2: ओके फाइन। सो आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, एंड दैट इज कि रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM जो है वो देवी पाटन मंडल का पहला FM स्टेशन है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये शहर के लिए और शहर वासियों के लिए क्या बदलाव लाने वाला है।
3: पहले चीज, जब से ज्ञानस्थी FM आया है तब से हमारी गाड़ी में कभी ब्लूटूथ से या फिर कोई चिप नहीं लगी है। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो सुनता हूँ FM को, अमूमन 2-1.5 के बीच में होता है तो सुन सहेली कार्यक्रम चलता है
2: जी।
3: और आपके यहाँ के भी हैं?
2: ओके।
3: कि माता जी का इलाज हमारे यहाँ चला है, इनको कोविड में हम इन्हें ट्रीट किया था माता जी।
2: ओके ओके। सो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमने आपसे खूब सारी जानकारियाँ हासिल की, कई सारी रोचक बातें की। आशा है कि दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। सो डियर लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड विद योर फेवरेट RJ मोनिका एंड योर फेवरेट RJ जिमी। इजाजत दें अब हमें, मिलते हैं कल हम ठीक 5 बजे किसी और खास मेहमान के साथ, रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। Take care, bye.

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9761 9860। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
6: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई कोई बहार बन के आता है, कोई बहार बन के चला भी जाता है, पर क्या करें, ये जिंदगी है बॉस, आना जाना तो लगा ही रहता है। पर कोई है जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को स्टेबल कर सकता है, वो है आपके खास, आपके आरजेस, ऑब्वियसली आपके आरजे बिना एंड ऑल। तो सभी का स्वागत है भाई आज की शाम में। आज की शाम ना सिर्फ ओनली शाम है, बल्कि ये वो शाम है जो आपको, मुझको एंड इवन सबको खुशी के रंगों में रंग देने वाली है, क्योंकि आपके डॉक्टर लव वापस हॉट सीट पे मेरे साथ बैठे होंगे और आपके सवाल होंगे। तो सवालों के जवाब देने के लिए कौन होगा साथ, वो हैं आपके खास, आपके डॉक्टर लव। पर डॉक्टर खास यानी कि डॉक्टर लव की बात अगर हम करें तो वो तो आपकी परेशानियों का समाधान निकालते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसके समाधान में डॉक्टर लव भी खुद फंस जाते हैं। ऐसे में क्या करें, हाँ, ऐसे में फिर से वही नंबर घुमाएं और आरजे बिना से अपनी समस्या का समाधान पा जाएं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो कंपाउंडरशिप है ना, और उसे मैंने एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था, सीखते सीखते अब मैं थोड़ा ज्ञानी तो बनी चुकी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुकी हूँ। पर हाँ, डॉक्टर लव के सामने ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो पक्का मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्हें डर हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर लव की

तो वो गर्लफ्रेंड भी आपकी होती है जो आपको ये शिक्षा देके चली जाती है कि बिना जाने समझे किसी डेटिंग फ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज बार बार नहीं करना चाहिए। कभी कभी वो डेटिंग फ्रेंड जो है वो धोखा देके आपके रिचार्ज के वह पैसे लेके चली जाती है। क्यों, उन गुरुओं को भी नमस्कार जिन्होंने कई बार आके हमें ऐसे ताने भी मारे हैं जिनको सीरियसली लेके हम काफ़ी आगे बढ़ गए। तो गुरु होना तो मतलब मुझे लगता है कि सारे ही गुरु हमारे जीवन में खास हैं, स्पेशली जो क्लास में हमें पढ़ाते हैं आके वो तो गुरु हैं ही, बाकी हमारे पेरेंट्स तो बहुत बड़े गुरु हैं। और सीधे तौर पे यही कहूँगी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिलहाल के लिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपने गुरुओं को सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट दीजिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे लैकिंग चीज है वो है रिस्पेक्ट। आप गिफ्ट दीजिए ना दीजिए पर अपने टीचर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। क्योंकि मैं आज देख पा रही हूँ कि जो रिस्पेक्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो कम होता जा रहा है, और अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना तो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। सो टीचर्स नीड रिस्पेक्ट। टीचर की रिस्पेक्ट इसलिए भी लोग नहीं करते क्योंकि उनके साथ कोई टाइटल नहीं है। तो प्लीज, उन्होंने आपको टाइटल लेने लायक बनाया है तो इसलिए सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट दीजिए। फिलहाल मैं आज आपसे बात करूंगी डॉक्टर लव के जो स्पेशल सेगमेंट है, थोड़ी अलग सी, क्योंकि आज मोहब्बत की बात होगी, लेकिन उस मोहब्बत की जिसमें ना कोई वैलेंटाइन होगा और ना ही कोई डेट होगी। आज बात होगी उस रिश्ते की जहां सिर्फ एक छोटी सी डांट होगी, दूसरी तरफ एक दुआ होगी। एक तरफ होगा होमवर्क और दूसरी तरफ मैडम आज कॉपी घर पे रह गई, ये वाला बहाना हर किसी की जुबान पे होगा। तो हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन एवरीवन। एंड यस, कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ वो नहीं जो दो लोगों को एक दूसरे के चाहतों तक पहुंचाए, जहां कोई कमियों के बावजूद आपके बेहतर भविष्य पर विश्वास करे। एक टीचर भी आपसे मोहब्बत करता है, आपकी हैंडराइटिंग देखकर उसकी आंखों को आराम आना चाहिए। आपका होमवर्क देखकर कल पूरा करके आओगे इस उम्मीद में एक आशा की रोशनी होनी चाहिए। जब आपके परीक्षा का रिजल्ट आए तो आपकी मेहनत पर उसे गर्व होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को आपके मार्क्स से ज़्यादा आपके मेहनत की चिंता होती है, आपके फ्यूचर की चिंता होती है। तो चलिए, आज शांति क्यों है हमारी क्लास में, हमारी डॉक्टर लव की क्लास में क्यों शांति है। आज की डेट में डॉक्टर लव आपके गुरु ही हैं, तो सबसे पहले टीचर्स डे अपने डॉक्टर लव को विश करिए और उन्हें प्यारा सा गिफ्ट भेजिए, और ऑब्वियसली मुझे भी, मैं भी टीचर ही हूँ आपकी। फिलहाल चलिए गाना सुनते हैं आज के टीचर्स डे पे, और शिक्षक दिवस को और खास और एनर्जेटिक बनाते हैं आपके साथ।

0: सच में वो वाले बापू तो आजकल नहीं दिखते जो हानिकारक होते हैं, जो हम लोग के टाइम पे होते थे। मतलब मैं अपने घर में, मतलब अगर बात करूं अपने मतलब स्ट्रिक्टने मतलब सिखाने की, तो हर घर में पिता जो होता है, मतलब माँ तो क्या ही सिखाती है, माँ बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें पिता ही सिखाता है, और ख़तरनाक हो के सिखाता है। कई बार वो डांटने के बाद ये सोचता है कि मैंने ज़्यादा डांट दिया, लेकिन उसकी डांट जो है वो बड़ी सीख की तरह काम करती है, और बड़े होने पे समझ में आता है यार इस चीज़ पे ये डांट मिली थी, और हम लोग अपनी जनरेशन को डांट नहीं पा रहे हैं। और उस तरह के बापू पहले हुआ करते थे, अब तो मतलब बापू थोड़ा मॉडर्न हो गए, मोबाइल चलाने वाले हो गए। और मैं अभी भी कहूँगी कि अगर फादर थोड़ा सा हानिकारक हो के थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो शायद बहुत अच्छा होगा। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि बस डंडा उठाओ, मूवी में भी आपने देखा कि आमिर खान ने कहीं भी अपनी बेटियों पर डंडा नहीं उठाया था, बस डांटा ही था और थोड़ा रूल स्ट्रिक्ट कर दिए कि नहीं ये रूल है तो है, इसके बाद ना कोई रूल है ना इसके पहले कोई रूल है, बस यही एक रूल है। तो चलिए हम अपने जो कहते हैं ना कि आज के मास्टर साहब हमारे डॉक्टर लव को भी बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें हमारे जीवन में बड़ी बड़ी सीखें दी हैं, ऐसी सीखें जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मतलब मैं कह सकती हूँ कि कंपैरिजन नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपके पास कोई बड़ा टीचर है जो आपको विद्या दे पाए, प्यार की, मोहब्बत की, जो इश्क की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, तो आप सीधे तौर पर कह दीजिएगा कि तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास तो
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: तो डॉक्टर लव साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ संध्या और मास्टर दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी।
0: और आपने एज अ गुरु, एज अ मास्टर, एज अ टीचर बनके बहुत प्रेमियों के घर बसाए हैं, तो आपसे बड़ा टीचर हमारे श्रोताओं के लिए तो कोई नहीं होगा।
3: नहीं, हमने घर बसाए हैं और हमने 30 लोगों के घर उजड़ने से बचाए हैं, बसाए भी हैं और बचाए भी हैं।
0: और क्या, ऐसा ना कहिए, तब तो आप उड़ गए होते। अगर उड़ने वाले, उजड़ने वाले घर होते तो आपके तो 30 शादियां हुई हैं, तो आपकी भी तो ऐसे।
3: तो वही तो मतलब हम है, हम जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर लव की डिग्री लेकर आए हैं, तो मतलब हमको मैनेज करना आता है। तो हमने घर लोगों का बसाया है और 30 घर बचाया है।
0: देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं,
3: क्या करती हैं,
0: जैसे इंसान बहुत पढ़ लिख लेता है लेकिन फील्ड में जब तक काम नहीं करता है,
3: हाँ तो बस वही तो फील्ड
0: तब तक सुनिए, तब तक उसको मतलब समझ में नहीं आता, या उस लाइन में जाके प्रैक्टिस करे एज अ इंटर्न। इंटर्न रखते हैं वो, चाहे आप कितनी बड़ी डिग्री लेके आए हो, अगर आप फ्रेशर हो तो। तो मैं चाहूँगी, जैसे आप 30 पत्नियों को संभालने का आपके पास एक्सपीरियंस, एक बड़ी कंपनी आपकी चल रही है
3: जी,
0: अगर देखा जाए तो आप हमारे श्रोताओं को भी प्रैक्टिस दीजिए इंटर्नशिप।
3: हाँ तो एकदम वो जो है क्लिनिक ज्वाइन करें और
0: इंटर्नशिप ऑफ लव,
3: लव वो जो है उनको बड़े आराम के साथ समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि समय देना पड़ेगा और सब रखना पड़ेगा।
0: आज इंटर्नशिप ऑफ लव में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है।
3: हाँ मतलब एक
0: इंसान क्या करे, गर्लफ्रेंड बनाए तब सीखे, तब धोखा खाए या फिर ना धोखा खाए, तो भी किस्मत की बात है।
3: किस्मत
0: तो क्यों ना एज अ इंटर्नशिप वाला सिस्टम।
3: हाँ मतलब पहले से आप मैच्योर होकर ही फील्ड में घुसे। हाँ तो मतलब पहले जो है वो जैसे जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो पहले प्रैक्टिस करके तब फील्ड में उतरते हैं, बिना प्रैक्टिस के फील्ड में।
0: सोनिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
3: हाँ
0: और आपको देख के और ठीक हो जाते,
3: और ठीक हो गई।
0: और मास्टर दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। अब शिक्षक दिवस मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पहले शुरू में हमारे देश में टीचर को मास्टर जी ही कहा जाता था।
3: अच्छा मतलब आपने जहाँ पढ़ा वहाँ मास्टर जी पढ़ा।
0: नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ मतलब सुनने में मतलब आ रहा है कि हाँ पहले के जमाने में चलता था। मैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, आपसे 25-30 साल छोटी हूँ। तो
3: छोटी मतलब आप हमारे सामने बहुत छोटी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है मैंने धीरे धीरे आपको दे रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो कि ये नर्स ही हमारी जो है वो कहीं डॉक्टर बन जाए।
0: देखिए शो सुनते हुए आ रहे थे लग रहा है।
3: हाँ एकदम शो सुनते हुए आ रहे थे। वैसे शो इंसान देखते हुए आता है, SHOW शो मतलब देखना होता है। अच्छा ये शो सुनना कैसे जाता है? शो तो देखने वाली चीज नहीं थी।
0: देखिए इवनिंग शो चल रहा है अभी।
3: हाँ वही तो सोच रहा हूँ मैं, तो उसको शो क्यों कहा गया
0: ये तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।
3: नहीं मतलब चूंकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपने मास्टर्स किया है।
0: मेरी अंग्रेजी नहीं, मतलब हमने मास्टर्स किया तो आपने नेट किया है।
3: हाँ तो मतलब वो बात एक अलग है, हमने नेट नहीं किया, हमने तो लव में नेट किया है, इसमें तो अंग्रेजी में नेट आपका है, MA मास्टर्स है। तो मतलब ये जब शो चलता है तो भी मतलब शो मैंने तो दिखाना होता है मेरे हिसाब से। क्या होता है जैसे अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है।
0: रियलिटी शो नहीं सुने हैं?
3: हाँ
0: उसमें क्या दिखा?
3: तो उसमें तो रियलिटी शो मतलब उसमें दिखाया जा रहा है ना, उसमें दर्शक देख रहे हैं, और इसमें दर्शक देख कहा रहे हैं तो इवनिंग शो
0: सुन के इमेजिन तो कर रहे हैं।
3: अच्छा ये है मतलब शो का मतलब वो भी होता है कि आप सुनकर इमेजिन कर लीजिए, उसे भी शो कहा जाएगा
0: जी।
3: तो ये डिक्शनरी में संशोधन करना पड़ेगा, यानी शो माने दिखाना और शो मतलब सुनकर देखने की कल्पना करना। मतलब हमारे श्रोता लोग ये देख रहे होंगे, इमेजिनेशन कर रहे होंगे कि कंपाउंडर साहिबा के बगल डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और ये उनकी कल्पना, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये अनिल जी भी हमको दिखाई पड़ गए जो है, बहुत तो भाग्यवान इंसान है, भाग्यवती नहीं है भाग्यवान है।
0: शुभ संध्या अनिल जी, स्वागत है आपका।
3: और बताइए आपका मतलब कैसा रहा दिन आज का? अभी
0: ठीक ही था।
3: ठीक ही था मतलब क्या मतलब?
0: अब बहुत ज्यादा उपहार नहीं मिले तो ठीक नहीं था।
3: मतलब उपहार से आप दिन को तय करती हैं?
0: दिन को मतलब जैसे टीचर डे है तो जब कोई ग्रीटिंग वीटिंग मिलती है पढ़ने में मजा आता है।
3: हाँ मतलब एक वो दौर था कि वो
0: मतलब ग्रीटिंग पढ़ने में
3: बड़ा मजा आता था। अब वो लफ्ज़ जैसी खुशबू हमाम में नहीं, और बीना जैसी कंपाउंडर हिंदुस्तान में नहीं, इस प्रकार के लोग जो है वो संदेश भेजते थे। वो जो ग्रीटिंग पहनने का एक अलग
0: संदेश, जानते हैं किसे कहते हैं?
3: किसे कहते हैं?
0: सफेद वाले
3: वो शोक संदेश होता है।
0: सफेद वाले रसगुल्ले को बोलते हैं।
3: अच्छा सफेद, अच्छा वही हम समझे कि सफेद वाला आपने कहा तुम
0: तो वो तो मैसेज, वो भी है। ये भी मैसेज ही है।
3: वही तो
0: क्या
3: अच्छा
0: बात
3: तो
0: कहते हैं?
3: शोक उसको कहते हैं, मतलब सफेद रसगुल्ले को शोक कहा जाता है?
0: नहीं संदेश।
3: अच्छा शोक संदेश।
0: अरे संदेश,
3: अच्छा संदेश। ये
0: अरे बाप रे, आपने वो मूवी नहीं देखी है क्या?
3: कौन सी?
0: देवदास पारो वाली।
3: देवदास नहीं, हमने पुरानी वाली जो देखी है, संजय लीला भंसाली वाली।
0: हाँ देवदास।
3: हाँ
0: उसमें वो पारो संदेश लेके लेके बार बार आती है।
3: अच्छा वो जो बंगाल वाला संदेश।
0: हाँ।
3: और जिसमें डोला दे डोला था।
0: हाँ।
3: अच्छा ये देख के डोला है कि नहीं डोला है? अच्छा उस नृत्य को देख कर डोलता है कि नहीं डोलता है, क्या लगता है आपको?
0: पता नहीं, हमारा तो तन डोला ना मन डोला, बस हम मूवी देख के डिसअपॉइंट हुए।
3: अरे क्या मतलब ऐसे इतनी अच्छी मूवी आप देख कर?
0: अरे ठीक ही है, इतना दर्दनाक प्रेम की कहानी देख के क्या ही मजा मिलने वाला है। तो हमारे श्रोता लोग जल्दी से आप लोग एक्टिवेट हो जाइए, अपने अंदर की जो कहते हैं ना बैटरी, उसको चार्ज करके एक्टिवेट कर लीजिए
3: एकदम, मतलब तुरंत एक्टिवेट कर लीजिए।
0: तब आपके मन में सवालों का जो भंडार है वो उमड़ उमड़ के आएगा।
3: उमड़ उमड़ के आएगा, घुमड़ घुमड़ घिर घिर आए बदरा, उमड़ेगा फिर घुमड़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल। और चलिए शिक्षक दिवस है तो चलिए हम डॉक्टर लव को भी गाना सुना ही देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी हमें बहुत सारी सनशाइन दी है। तो मतलब सनशाइन बोले तो ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश, तो उस प्रकाश को चलिए हम लोग फील करते हैं और एंजॉय करते हैं। सुनिए ये प्यारा सा गाना डॉक्टर लव के लिए। आप सुन रहे हैं कुछ खास, तो डेफिनेटली आर जबीना के साथ सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गोंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला विद योर डॉक्टर लव एंड आरजे बीना। स्टे ट्यून्ड 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।
4: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मजाल किसी की मजाल सुलझे ना सुलझे, फिलहाल हमारी मजाल सुलझ गई है क्योंकि हम कॉल कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने किसी खास श्रोता का। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइव। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम, हैप्पी टीचर्स डे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद, और आपको भी शुभकामनाएं आज के दिन की। एंड
1: मैम, आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। मैं तो भूल ही गई थी, आप तो भी टीचर हो।
2: नहीं, यही टीचर है, हम तो डॉक्टर हैं।
1: आप लव गुरु हो ना, और मैम बस पढ़ाने वाली टीचर है।
2: वही बात है,
1: और आप लव के गुरु हो।
2: नहीं, हम डॉक्टर हैं, गुरु गुरु नहीं है भाई। गुरु लोग बहुत बड़े।
1: आप लव गुरु भी तो बोलते हो ना, डॉक्टर लव लव
0: लव।
2: नहीं नहीं, डॉक्टर लव ही बोलते हैं। हमने कभी अपने जीवन में लव गुरु,
1: अरे नहीं सर, मैंने सुना है एड में लव गुरु है मेरे पास।
0: ये लवली गुरु है, लवली।
2: नहीं,
0: ये लव गुरु नहीं है, लवली। फेयर एंड लवली में एक तो लवली आता ना, वही वाले लवली।
2: हाँ,
1: लवली। और मैम, मैंने बस स्पेशली इसीलिए कॉल किया है, आप दोनों से बात करनी थी और आप दोनों को विश करना था।
0: अरे वाह,
2: अच्छा, हमको लगा कि अमृत करना है।
1: क्या?
2: हमको लगा कि अमृत करेंगे।
0: देखिए, डॉक्टर लव, डॉक्टर लव नहीं है, ये मरहम है। ठीक है, जो सबकी चोटों पे लगते ही सबकी चोटों से आराम दे देते हैं। वो सुना है ना, एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए। एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम ना मिला, मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। तो ये हमारे डॉक्टर लव जो है मरहम ही है, समझ लीजिए।
1: और मैम, आपसे बात करके ना अभी मैं इतनी खुश हो गई कि मेरा स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया, अभी मैं बहुत अच्छी हो गई।
0: स्वास्थ्य मतलब बिगड़ा था क्या?
1: अरे मैम पूछो मत, मैं ऊपर से जाके नीचे वापस आई हूँ।
0: हाँ, ऐसे मत बोलो, मतलब ऐसे बोलोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा।
1: नहीं सच्ची बता रही हूँ मैम, तो भगवान जी ने कहा वापस कर दिया, आपसे बात तो करनी थी।
0: क्या हुआ था?
1: अभी अचानक
0: तो डॉक्टर लव के पास एक बार आई तो होती, मरहम की जगह ये खुद मरहम हो जाते हैं।
1: अरे मैं लव वाली बीमारी थोड़ी ना हुई थी जो मैं डॉक्टर लव के पास आती।
0: अरे सब खांसी जुखाम बुखार हर चीज की तो दवा ले लेते हैं, क्योंकि कहते ना कि प्रेम हर चीज की दवा है।
1: लेकिन हमको ना खांसी थी, ना बुखार था, ना जुखाम था। जुखाम बुखार खांसी
0: तब क्या था,
2: तब क्या था।
1: अचानक से हम रात में बीमार हो गए थे, लगभग 12 बजे रात में, मंगलवार को। एक तारीख को बीमार हुए, 2 तारीख में हॉस्पिटल पहुंच गए रात में ही, फिर 3 तारीख को हॉस्पिटल से वापस आए।
0: तो हुआ क्या था?
1: अरे अभी नहीं बताऊंगी,
0: अभी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं पूछ लूंगी बाद में, कोई बात नहीं। बस आप जहाँ रहिए, जैसे भी रहिए, बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: अब क्या बताऊँ, क्या बता, अभी तो बस खुश होके बात करो, ऐसे मुस्कुराते हुए, सबको
2: हंसाती रहूँ, बस यही। आपके जीवन में यही है, मतलब मुश्किलें आएंगी तो हम उनको आपके आगे आने नहीं देंगे। अब हम आपको जो है वो एक ताबीज बना कर देंगे, उसको आप पहन लीजिए, ताकि जो है वो।
1: मैं ताबीज नहीं पहनती।
2: पहनती नहीं, लेकिन तब अस्पताल जाने का शौक है। अब पहन लोगी तो
1: अस्पताल जाने का तो शौक नहीं है। तो पहले सर बहुत डरती थी, पर अब तो आदत पड़ गई है।
0: आदत पड़ गई है,
2: मतलब कई बार ऐसे हो जाता है क्या? अच्छा, मतलब
1: पहले मैं जब छोटी थी ना तो बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा डरती थी, पर अभी उतना नहीं डरती।
0: डर के आगे जीत है, पियो माउंटेन ड्यू।
1: पहले मैं जाती थी, हमको कोई हॉस्पिटल लेकर जाता था, मैं बीमार होती थी तो मैं उठा।
0: अब बस इन सब बातों को हटाते हैं, चलिए संगीत की दुनिया में चलते हैं। और अनु, मैं चाहूंगी आप एकदम सही रहें, खुश रहें, और ऐसे।
1: और मैम अब तो ना अपना ये गोंदा ऐप है, मैं तो मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ, मैं कैसी भी रहूँ वही भी रहूँ ना, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ आप लोगों का सुन
0: के। क्या बात है,
2: ये बात बढ़िया है। तो मतलब अब आप पूर्णतया स्वस्थ
1: हैं। आप लोग बातें करते हो ना तो ये सबसे बड़ी दवा होती है, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ। लेकिन जब आप लोग नहीं आते हो तो थोड़ा सा कितने दिन की छुट्टी के लिए जाएंगे, अभी जल्दी आ जाना चाहिए था। ये मैं याद भी नहीं कर रही, क्या बात है।
0: मैं हमेशा आप लोग को याद करती हूँ, दिल में लेके जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ दिल में ही लेके वापस।
2: ये फोटो खींच कर लेकर गई थी।
1: अच्छा,
2: इन्होंने फोटो
1: यही तो मैम की यही अदा तो हमको बहुत पसंद है कि मुझे देखी भी नहीं फिर भी मेरा फोटो अपने सीने में रखती है।
2: नहीं, हमने फोटो आपका दिखा दिया था।
1: आपने दिखाया है।
0: हाँ? दिल में रहने वालों को आंखों से देखने की जरूरत
2: नहीं होती, उनको दिल में देखा जाता है।
0: और दिल में हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए मैं दिल में एक छोटा सा कमरा बना के उसमें खिड़की लगा देती हूँ, और तुम्हारे लिए गाना भी सुनाती हूँ, बड़ा प्यारा सा है।
2: अच्छा तो ये दिल, कमरा और खिड़की अगर कहीं एक जगह याद आए तो कौन सा गाना हो सकता है?
0: मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा।
2: क्या बात है, वाह, ये मैंने अनु से पूछा था, बताया आपने दिया।
1: बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इतना सुंदर गाना तुरंत बना के दिन के
2: काले के लिए। अरे तो मतलब ये वेल ट्रेन्ड कंपाउंडर है।
0: तो चलिए अनु, आपके लिए हम देखो, खिड़की में, खिड़की को बारी भी कहा जाता है, ठीक है? तो दिल में जब खिड़की लगती है तो उसको बारी कह देंगे, तो उसी बारी को फील करके ये गाना आप सुनिए और आप एंजॉय करिए, ठीक है?
1: ओके, बाय
0: बाय, थैंक यू। ऐसे हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और डॉक्टर लव से अपनी दवा का, जो कहते हैं ना, दर्द की जो दवा है वो पाते रहें। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम आरजे बीनास प्लेलिस्ट।
3: पर यार सानू भी टाइम दे दिया कर,
4: हले आना है, आज लेट नहीं होगी वैसे थोड़ा जा?
3: ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।
4: ਮੈਂ ਤਿਕ ਭਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਟੂਕੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
3: ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ
4: ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਲੈ ਲੈ।
3: ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ
4: ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ
3: ਲੈ। ਵੀ ਆ ਗਈ।

0: तो डॉक्टर लव
1: जी,
0: अक्सर टीचर लोग फेल होने पे बच्चों को पनिश करते हैं।
1: जी,
0: एक कॉल भी आ गया, चलिए बात करते हैं और इन्हीं से जवाब मांगते हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: मैं गोरखपुर से, मैं एक्चुअली अनिल बनर्जी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ईमेल है अनिल शास्त्री।
0: क्या बात है, स्वागत है अनिल जी आपकी आवाज का। वैसे तो मैं
1: पहले आपका ईमेल है, हमको लगा फीमेल।
0: अच्छा अनिल जी, जैसे कि आज टीचर्स डे है, मतलब शिक्षक दिवस है, तो एक सवाल आपसे करना चाहते
2: आप लोग, आप सारे गुरुओं को बधाई पहले।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: और अभी कोई आपका कॉलर में कोई थे तो आपने बोला कि नहीं, मतलब डॉक्टर लव ने बोला कि टीचर आप हो और मैं नहीं हूँ, तो डॉक्टर लव गुरु हो, गुरु तो ऑलरेडी हो आप,
0: और क्या।
1: नहीं नहीं, हम एक्चुअली पहले तो आपको नमस्कार करेंगे। जी नमस्कार जी। तो
2: एक्चुअली क्या कि हम लोग अपनी भाषा में
1: जी
2: गुरु अपने आदरणीय जो हमारे गुरु जी होते हैं यानी टीचर होते हैं, उनको सबको गुरु ही बोला जाता है।
1: हाँ।
2: तो आप ऑलरेडी गुरु हैं श्रीमान
0: गुरुदेव।
1: हाँ, मतलब हम डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर लव हैं, तो मतलब उन्होंने कहा आप टीचर होने का नहीं, नहीं का।
2: आप डॉक्टर लव गुरु हैं।
1: नहीं, हम लव के साथ गुरु कभी लगाए ही नहीं, वो टाइटल जो हमको ऑक्सफोर्ड से मिली है वो डॉक्टर लव की ही मिली है।
2: ऐसे मिलती है, वो डिग्री के साथ ही मिलती है।
1: हाँ, तो डिग्री के साथ उसमें डॉक्टर लव ही लिखा।
0: आपने अनुभव, आपने ज्ञान अर्जन किया तभी।
1: अच्छा, मतलब ज्ञान अर्जन किया, हम तो आपसे भी सीखते हैं।
2: सही बोल रही है। तो आप दोनों लोगों को शिक्षक दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नहीं, शिक्षिका दिवस की भी बोल दीजिएगा, नहीं तो उनको लगेगा खाली हम ही को बोला आपने।
2: नहीं शिक्षिका।
1: हाँ नहीं भाई,
2: एक्चुअली टीचर में,
1: हाँ
2: टीचर देखिए वहाँ पे ना मेल है ना फीमेल है, टीचर शब्द ही है, तो वहाँ तो है ही नहीं। तो मैंने टीचर डे के लिए, मतलब डे नहीं, टीचर दिन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।
0: क्या
1: ये तो बात बहुत सही है, आपकी बधाई का असर बहुत दूर तक फैलेगा।
2: अरे ऐसा ना पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल एक आपसे सवाल पूछना।
1: जी बिल्कुल, निसंदेह,
2: अगर आप मतलब
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम बैठे हुए हैं।
2: बैठे हैं इसीलिए
1: जी।
2: मैं आजकल जब सो जाता हूँ तो नींद नहीं आती मेरे को,
1: ये बहुत बड़ी समस्या है जान लीजिए। तो कहिए, आपने हमसे पहले अब शेयर कर दी
2: जी, और उसके बाद मैं खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती,
1: तो भूख नहीं लगती है
2: जी।
1: ये दो समस्याएं हैं और इन दोनों का निदान सिर्फ मेरे ही पास है।
2: एकदम एकदम, इसीलिए मैं आपसे।
1: जी हाँ, तो पहली चीज तो जब आप भोजन करें, तो आप जब भोजन करते होंगे तो बैठ कर करते होंगे?
2: नहीं, बैठ कर तो करता ही नहीं मैं ना।
1: हाँ, तो खड़े होकर करते हैं।
2: ट्यूब चौपर
1: जी,
2: वो बफर सिस्टम, मतलब हाथ में लेके।
1: हाँ,
2: हाँ। वाला स्टाइल।
1: अच्छा, तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपना पैर बांध लेना है और पैर को रस्सी से बांध करके आप हुक में लटका दीजिए, और आपका मुंह जो है वो हुक में, जो घरों में हुक होते हैं जिसपे पंखे टंगे जाते हैं,
2: तो पंखा रेडी टंगा हुआ तो उस पर जगह ही नहीं बनता ना।
1: तो उस पर उतनी जगह होती है कि वो रस्सी आ जाएगी।
2: अच्छा, आ जाएगी रस्सी?
1: आ जाएगी, आ जाएगी, मजबूत वाली रस्सी आ जाती है। पतली वाली मजबूत वाली रस्सी लीजिएगा अपने वजन के हिसाब से, और आपका जो सर होना चाहिए वो नीचे पेंडुलम की स्थिति में घूमता हुआ होना चाहिए।
2: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात।
1: तो अब आप ऐसा कीजिए कि आप पहले जो है वो खाइए, मतलब इस स्थिति में खाइए, तो आपको
2: उसके बाद उसमें खाना खाएं।
1: हाँ, उस स्थिति में जब आप भोजन करेंगे तो आपको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगेगी।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे ये अनुभव मुझे मिल के।
1: हाँ,
2: जो आपका अनुभव है।
1: हाँ, नहीं हमारा ये ट्रीटमेंट देता हूँ मैं,
2: बता रहा हूँ
1: जी,
2: आपने जो एक्सपीरियंस किया है अपने ऊपर,
1: हमने
2: दिया जो बहुत अच्छा लगा।
1: नहीं, हमने अपने ऊपर बिल्कुल नहीं किया है, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया अपने जो है वो मरीजों पर, और ये कारगर दवा निकली।
0: क्या बात,
2: तो मैं रहा हूँ एक्चुअली, मरीज से पहले डॉक्टर खुद एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर, उसके बाद ही तो
1: वैज्ञानिक कभी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो दूसरों पर करता है और नतीजे निकालता है।
2: अच्छा
1: हाँ, तो ये मतलब मरीजों पर हमने नुस्खा आजमाया तो ये काम कर गया।
2: चलिए पश्चात धन्यवाद।
1: और जब आप सोने लगे तो लाल मिर्च का पाउडर अपने आँख में डाल लें, आपको सोने के बाद नींद नहीं आएगी।
2: आज तो वही तो मेरे को प्रॉब्लम है कि जब मैं सो जाता हूँ नींद नहीं,
1: नींद नहीं आती है। आप तो आँख में लाल मिर्चा डाल कर सोइए, आप सो जाएंगे और आपको नींद भी आएगी।
2: क्या प्रॉब्लम नहीं समझे
1: जी,
2: मैं बोल रहा हूँ जब मैं सो जाता हूँ तो नींद नहीं आती।
1: हाँ तो आप अब मिर्चा डालकर सोएंगे तो आपको नींद आ जाएगी।
2: अच्छा
1: हाँ,
2: तब तो ये एडवाइस बहुत अच्छी है।
1: मतलब लाल मिर्चा मतलब पिसा हुआ कायदे का बारीक और आंखों में डाल लीजिए,
0: तब देखिए कैसी नींद आएगी।
1: मतलब ये मतलब जबरदस्त नींद आएगी आपको।
2: तो इसको मुझे एक बार करना पड़ेगा
1: मतलब तुरंत, मतलब इसको आज ही आजमाइए और हमको अगले शनिवार को रिजल्ट बता दीजिएगा 100% आपकी दोनों समस्याएं। हाँ जी
0: क्या
1: जी, एकदम आप स्वस्थ रहेंगे और आपके जितने भी दोस्त परिजन,
2: मैं सबको एडवाइस दूंगा।
1: हाँ,
2: डॉक्टर साहब ने क्या है।
1: हाँ,
2: ये आप इसको करो।
1: हाँ,
2: और सुकून की जियो,
1: सुकून की जिंदगी जिए। और सुकून तेल भी आता है रोगन सुकून, अगर फिर भी ना मिले तो एक ढक्कन पी लीजिए।
2: तो डॉक्टर साहब जब इतना हमको आपने वो दे दिया, गाना ही सुनवा दीजिए।
1: हाँ तो बताइए, गाना बिल्कुल सुनवा देते हैं आपको।
2: नहीं अगर सुन मतलब टाइम हो तो सुना दीजिए।
1: नहीं बिल्कुल, मतलब इच्छा पूरी की जाती है।
2: हाँ भाई, आखिरी बंदे की तो इच्छा पूरी।
1: नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है, हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं।
0: आप हर किसी की पूरी की जाएगी, आप अपनी फरमाइश बस चैट रूम में भेज दीजिए।
1: हाँ
0: ठीक है।
2: हाँ एकदम एकदम, मैं चैट रूम में भेजता
0: हूँ। जी
2: जी,
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। तो हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ये आवाज़ धीमी सी किसकी है? बहुत आराम से कोई हमारे लिसनर बोल रहे हैं, नाम तो गेस नहीं कर पा रहे। डॉक्टर लव, आपने गेस किया?
3: पहचान जी, जी, जी, मेरा नाम मोहम्मद मुशीब।
1: ये जो
0: बाराबंकी से,
1: बाराबंकी से आवाज आ रही है, हवा ये ध्वनि बता
3: जी,
1: रही
3: जी,
1: है।
3: जी, जी,
0: जी। सबसे पहले तो
3: है, आवाज आ रही है।
1: जी
0: हवा हो या ना हो, खास बात ये है मुशीब जी, आपका अंदाज बड़ा अच्छा है। इतने आराम से आप मतलब बात करते हैं, क्या मतलब सुकून
1: हमारे सामने दूसरे।
3: अरे अंदाज हमारा कहाँ अच्छा है। हाँ। आप लोगों का बहुत प्यारा अंदाज है प्रोग्राम पेश करने का, और बाकी अगर कोई ज्ञानवर्धक बातें होती वो बताने के लिए बहुत बढ़िया अंदाज है, बहुत बेहतरीन।
0: तो मुशीब जी ये बताइए, समस्या क्या है आज आपको?
3: समस्या कुछ नहीं है, बस डॉक्टर साहब से ये पूछना था।
1: जी जी,
3: कि नींद गहरी आए।
1: हाँ।
3: नींद गहरी आए ऐसी कोई दवाई बताइए।
1: नींद गहरी आए अभी ऐसी दवाई तुरंत बताइए। जब आप जी, सोने चलिए तो आँख में लाल मिर्च का पाउडर। हाँ। डाल लीजिए।
3: अच्छा,
1: मतलब एक दो चम्मच पाउडर लीजिए, एक चम्मच इस आँख में, एक चम्मच इस आँख में।
0: नहीं नहीं, तो जैसे उनको दिक्कत थी कि वो सो जाते थे उठ जाते थे।
1: हाँ।
0: इनकी नींद गहरी नहीं। अच्छा। हो पा रही है।
1: गहरी नींद होने का बस यही।
3: हाँ, गहरी नींद आ जाए
1: बस, गहरी
3: वो लाल, वो लाल मिर्च का पाउडर,
1: लाल मिर्च का पाउडर आँख में डालिए और सोते समय। अच्छा। इसके पश्चात
3: तो इससे तो कोई मतलब आँखों में जलन वगैरह तो नहीं?
1: जलन वगैरह बहुत शीतलता, ये जो लाल मिर्च
3: अच्छा,
1: होता
3: अच्छा,
1: है
3: मतलब
1: ये बहुत शीतल
3: ठंडक प्रदान करेगा,
1: ठंडक प्रदान करता है। जब ये जबान पर जाता है तो लगता है कि कड़वा है, और आँखों पर इसका असर दूसरा है। आजमा कर देखिए, मतलब ये गजब का काम। हाँ, मतलब जबान पर तीखा और आँख को तो नहीं, कभी कभी कुछ लोग बाहर से बहुत कठोर होते हैं, अंदर से बहुत नम्र होते हैं, देखा होगा। ऐसे ही लाल मिर्च है, दिखने में लाल है।
3: अच्छा।
1: जबान पर खाइए, सूसू कीजिए, मतलब ऐसे वाली फीलिंग वो। हाँ
3: सही।
1: और इसके पश्चात
3: तो आज तो शिक्षक दिवस है, तो जी के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो मतलब आप उम्मीद है कि आप लाल मिर्च आज आँख में डालकर ही सोएं।
3: अच्छा, आज इसे हम सोच रहे हैं इसको जो है यूज करना स्टार्ट कर दें।
1: मैं आज बहुत शुभ दिन है, शिक्षक दिवस है।
3: शिक्षक दिवस है, उसके बाद में आज शनिवार भी है।
1: शनिवार भी है, साक्षात बजरंग बली।
3: गाना आया नहीं था, शनिवार आती मुझे नींद नहीं आती।
1: बस
0: बिल्कुल शनिवार रात ही नींद ना आने का बिल्कुल लॉजिक बनता ही, क्योंकि अगले दिन संडे है। मस्त सोइए 10 बजे तक,
1: 11 बजे जब तक सोना हो अलार्म लगा दीजिए, उससे पहले नींद।
0: मेरे कुछ लिसनर ऐसे हैं जो सुबह सोते हैं 4-5 बजे और शाम को अगले दिन उठते हैं 4-5 बजे।
1: हमारे एक सोता है जो शनिवार को सोते हैं फिर अगले शनिवार को ही उठते हैं।
0: अरे ये 4-5 वाला
1: वो खाली यही कहते हैं कि आपको कहते हैं कि हम खाली आपका शो सुनने के लिए जगते हैं, बाकी सो जाते हैं।
3: अच्छा।
1: मैं कलयुग में कुंभकर्ण का दूसरा अवतार हूँ।
3: कुंभकर्ण, हाँ सही बता रहे हैं।
1: तो वो आप 6 महीने के लिए सोते थे, ये हफ्ते भर सोते हैं।
0: क्या बात है, मुझे आपकी समस्या का मुझे लगता है कि अब तो समाधान हो ही जाएगा।
3: जी, निवारण हो गया। जी जी जी जी, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजीब जी ऐसे ही कॉल करते रहिए और अपने सवाल का जो जवाब है वो डॉक्टर लोग से लेते रहिए। शुभकामनाएं आपको भी, शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो मुशीब जी की समस्या का समाधान तो हो गया। हमारे साथ हैं मानवेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से। कैसे हैं, गुड इवनिंग। धर्मेंद्र मोहन जी हैं। सर जी, मेरा सवाल है, नागेश्वर धाकड़ को अधकपारी है, 6 महीने से वह कैसे ठीक होगी। ये भी बड़ा कॉमन मतलब सवाल नहीं है, बड़ा पेचीदा सवाल है। चलिए देखते हैं हमारे।
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपको।
3: आपको भी, आप दोनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम विजय पाल यादव।
1: जी नमस्कार।
0: जी जी विजय जी,
3: नमस्कार गुरु जी, नमस्कार।
1: जी जी, अरे हम गुरु जी नहीं है, डॉक्टर साहब हैं।
3: अरे तो डॉक्टर भी गुरु होते हैं, जब दिखाते हैं।
1: हम कितनी बार समझा चुके, मानने।
3: देखिए देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ
1: जी,
3: सीखने के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आपसे अगर छोटा है वो भी ज्ञान दे रहा है, वो भी गुरु के समान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, ये बात है। आपने हमसे कुछ सीखा हो तो बिल्कुल।
3: हाँ, तो हमने आप लोगों से बहुत सीखा है, सीखते रहेंगे। तो आप लोग गुरु हैं, पहले गुरु हैं।
1: पहले गुरु,
3: क्योंकि आप इतनी अच्छी जानकारी देते रहते हैं सुबह से शाम से लेकर के आप लोग
1: जी,
3: और उससे ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग गुरु तो है ही, और यहाँ भी ज्ञान देते हैं, बाकी कॉलेज में भी ज्ञान देते हैं। तो आप तो सबसे पहले गुरु हैं, सभी के गुरु हैं।
1: जी मतलब गुरुओं के गुरु अर्थात महागुरु।
3: हाँ महागुरु आप लोग हैं।
1: तो और आपकी कोई
3: शिक्षक दिवस पर आज हमने एक जी, हमें गिफ्ट मिला है।
1: अच्छा, शिक्षक दिवस पर आपको गिफ्ट मिला है।
3: जी हाँ, हमें गिफ्ट मिला है।
1: आप वो गिफ्ट हमारे कंपाउंडर साहिबा तक पहुँचा दीजिए।
3: अच्छा, पहुंचा देंगे। तो उस गिफ्ट का सोचते हैं क्या किया जाए।
1: हाँ, क्या मिला, क्या है
3: आ?
1: मिला क्या है?
3: ड्रेस का कपड़ा मिला है।
1: जी
3: कपड़ा मिला है,
1: कपड़ा मिला है, तो उसको सिलवा लीजिए।
3: हाँ, उसको सिलवा लेंगे। उसके सिलवाने का सही मुहूर्त बता दीजिए।
1: सिलवाने का सही मुहूर्त, आपको शुक्ल पक्ष की, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम है विजय पाल।
1: विजय पाल, वी से इनका नाम होता है। और आप कब पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ बताइए।
3: डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता नहीं हुई, लगभग होगी 85 के करीब।
1: 85 के करीब, मतलब आप 85 साल के हैं।
0: अरे 85,
1: 1985। अच्छा अच्छा, हम समझ गए।
3: 1985।
1: अच्छा 1985, हम वही सोचे थे कि मतलब इतने बुजुर्ग इंसान की प्यारी सी आवाज, हम तो आश्चर्यचकित हो गए थे। तो कहीं कंपाउंडर साहिबा रहती हैं तो हमको समझा दिया करती हैं। तो मतलब आप 1985 में पैदा हुए थे
3: जी।
1: तो 85 और ये सन चल रहा है 2026। नहीं नहीं, तो इस साल आप कपड़ा मत सिलाइए।
3: हाँ,
1: इस साल आपका कपड़ा सिलाने का मुहूर्त नहीं बन रहा है।
3: अच्छा,
1: आपको कपड़ा 2030 से पहले नहीं सिलाना है।
3: 30 से पहले?
1: हाँ, अगर जो 1985 में पैदा हुआ है वो या तो 2025 में सिलाएगा या 2030 में। उसके बीच में आपको जितने भी वस्त्र मिले उनको आप किसी संस्था में दान कर दीजिए, और अगर कोई न मिले तो हमारा क्लिनिक है, आप चले आइए यहाँ दान।
3: अच्छा।
1: हाँ।
3: पिन भी मिले हैं उनको, क्या करें, पिन भी मिले हैं
1: तो पिन उनको लगा लेने दीजिए उसी में।
3: अच्छा।
1: हाँ, हम पिन को चुभने के काम में लगा लेंगे किसी को, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। जी,
3: मीठा भी मिला है,
1: फीता भी देने दीजिए।
3: मीठा, मीठा जी, मिठाई।
1: अच्छा, मिठाई मिली है, क्या बात है। तो मिठाई आप बिल्कुल मत खाइएगा,
3: पानी तो नहीं आ रहा मुँह में मिठाई का नाम सुन के।
1: नहीं नहीं, असलियत में मिठाई का नाम सुन के पानी नहीं आता, इमली का नाम सुन के मुँह में पानी आता। अब देखिए, आपके आपके मुँह में आया होगा।
3: हमें तो मिठाई का नाम सुन के भाई पानी आ जाता है।
1: तो हमको इमली का सा, अच्छा इमली का नाम सुन के मुँह में पानी नहीं आता।
3: नहीं, इमली हम इमली का नाम सुन के हमारा हमें मुँह में पानी नहीं आता है।
1: अच्छा, अचार का नाम सुन के।
3: अचार हम खाते नहीं।
1: अच्छा, मतलब आप शुद्ध मतलब मांसाहारी हैं।
3: हाँ, शुद्ध मांसाहारी हैं।
1: मतलब आप प्योर नॉन वेजिटेरियन है। तो भाई ऐसी स्थिति में तो आपके पास जो वस्त्र है
3: जी,
1: उसे आप तत्काल प्रभाव से हमारे क्लिनिक गैंगस्थली पर भिजवा दीजिए।
3: ठीक है, भिजवा देंगे,
1: तुरंत भिजवाइए इसको, मतलब सिलवाइएगा।
3: नहीं, पता देना अपना,
1: ये एकदम यही क्लिनिक का पता है।
3: अच्छा, क्लिनिक का यही पता है।
1: क्लिनिक का पता है, और 2030 तक आपको वस्त्र नहीं सिलवाने हैं।
3: नहीं सिलवाएंगे डॉक्टर साहब, इसी आपकी इच्छा।
1: हाँ, 2030 में जो है वो चैत्र वर्ष प्रतिपदा को आप नए वस्त्र पहने।
0: चैत्र की,
1: हाँ, चैत्र मास की प्रथम दिन को आप नया वस्त्र पहनकर धारण करें और आपके जीवन में मंगल होगा।
3: अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब रही मतलब जो हमें गिफ्ट मिला, अब मेरी समस्या सुन लीजिए।
1: जी जी,
3: मेरे एक दांत में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द जिसे कहते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: मतलब दर्द होने के बाद थोड़ा मीठा लग रहा है मुंह में।
1: मीठा लग रहा है।
3: हाँ, मीठा लग रहा है।
1: मीठा, तो मतलब उसको मीठा दर्द को,
0: देखिए दर्द को निकाल, देखिए दांत को निकालिए और उसको ग्लास में भिगोइए, बहुत बढ़िया है उपचार है। उपचार क्या है आपके लिए फायदे क्या, मतलब वो है, पानी में भिगोइए और पानी जब मीठा हो जाए तो उसे गैस पे चढ़ा के उसे चीनी बनाइए, क्योंकि चीनी हो गई है महंगी और दांत दे रहा है मीठा दर्द, तो क्यों ना दांत से बनाई जाए चीनी। और आप भी, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में चीनी के व्यापारी हो जाएंगे ऐसे। विजय जी, हाँ मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, दांत में मीठा दर्द तो मतलब मीठे का आपके मुंह में उत्पादन हो रहा है। तो उस दांत को पानी में रख दीजिए, पानी मीठा हो जाए, गर्म करके चीनी बनाना शुरू कर दीजिए, बाहर से चीनी खरीदना खत्म कर दीजिए। मुझे लगता है 65-70 में है चीनी आजकल।
1: और कुछ दिनों के बाद आप चीनी की फैक्ट्री खोल लीजिए।
0: भाई एक दो बोरी हमारे यहाँ भी।
1: और लिखिए विजय शुगर
0: फैक्ट्री। कभी कभी समस्या एक अपॉर्चुनिटी बन जाती
1: है, आपदा में अवसर। हाँ,
0: आपदा में अवसर।
1: हाँ, तो ये आपके जो मीठा दर्द हो रहा है ये चीनी वाला मीठा दर्द है,
0: आपदा को अवसर बनाइए।
1: आप दांत जो जो निकालिए पानी में,
0: नहीं जिस दांत में दर्द हो रहा है। हाँ, क्यों बाकी सारे खाएंगे नहीं, चीनी बनाएंगे तो खाएं भी ना।
1: मतलब जिस दांत में मीठा दर्द हो रहा है उसी दांत की बात कर रहे हैं,
0: उस मीठे दर्द से चीनी बनाई जाएगी।
3: हम यही कहेंगे, लेकिन खुशी हमको इस बात की, डॉक्टर साहब से तो डॉक्टर साहब को बोलना ही नहीं, बड़ा कंपाउंडर साहब ने दवा बता दी।
1: हाँ, अरे देखिए,
0: मैं देखिए दवा नहीं बता रही, मैं आपको अवसर दे रही हूँ।
1: हाँ,
0: क्योंकि मैं जानती हूँ ना, चीनी मैंने खरीदी अभी जल्दी परसों, मैंने कहा यार 68 रुपीस के जी चीनी है, हो गई है वही चीनी, अभी मैंने पिछले महीने 45 रुपए किलो खरीदी थी। मतलब क्या जमाना, अब डबल होगा रेट तब तो चीनी सच में दे

0: आप सबसे बड़े सप्लायर होंगे चीनी के,
1: पूरे विश्व को आप
0: चाइना को बेचेंगे हम लोग चीनी अच्छे दाम में।
1: और उस समय हम दोनों
2: स्वागत है आप लोगों,
1: लेकिन उस समय हम दोनों को भूल मत जाएगा कि ये
0: नुस्खा हमारा चीनी के व्यापारी आप बने और फिर हमें ही भूल जाइए।
1: नमस्कार।
0: तो विजय जी को तो भाई चीनी का नुस्खा देख के हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, और अध कपारी वाली समस्या का भी समाधान निकाले।
1: अध कपारी में बहुत बहुत
0: अध कपारी मतलब कपार बोलते हैं सर को, और सर में जब आधा दर्द हो दैट इज अध कपारी।
1: हाँ, दैट इज अध कपारी।
0: ओ
1: तो उसमें क्या है,
0: बड़ा पेचीदा नाम है, किसने रखा भाई ये नाम, किसने रखा? बीमारी भी एक बार रो रही होगी कि भाई रखना था कुछ और रख दिए होते। अध कपारी,
1: अध कपारी बहुत बढ़िया नाम है।
0: अध कपारी
1: मतलब और क्या, अध कपारी,
0: अध कपारी मतलब बीमारी कम, कोई जादू टोने वाला नुस्खा ज्यादा लग रहा है।
1: तो ये बीमारी नहीं है असलियत अच्छा? में जिस व्यक्ति को अध कपारी हो
0: हाँ।
1: उस व्यक्ति के जिस कपार में कपार के दो पार्ट होते हैं,
0: yes.
1: एक मांग के इस पार एक मांग के उस पार, तो जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर लोढ़े से तीन बार मारना है,
0: लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। देखिए आपको पता है, आपको ये एक मजे की बात बताती हूँ
1: हाँ।
0: आपकी पूरी बॉडी को अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड द राइट। डू यू एग्री विद दिस?
1: हाँ बिल्कुल, मतलब आप,
0: आपके लेफ्ट ब्रेन का टोटल कंट्रोल राइट साइड पे होता है
1: हाँ।
0: और राइट ब्रेन का कंट्रोल
1: लेफ्ट साइड होता है।
0: तो मतलब अगर आपका अध कपारी है, आधा सिर दर्द हो रहा है मान लीजिए, राइट साइड का हो रहा है, तो हथौड़ा किस साइड मारना है?
1: बाएं साइड। तो कंट्रोल तो वही,
0: वो बाया दाया ना बताए करी मुझे, फिर ऐसे चेक करना पड़ता है बाया दाया।
1: अच्छा, ये मतलब लेफ्ट राइट। हाँ तो अगर लेफ्ट में दर्द हो रहा है तो राइट पर मारिए,
0: राइट कपारे पे मारें,
1: और राइट पे बहुत दर्द हो रहा है तो लेफ्ट पे मारिए। कंट्रोल तो वही कर रहा है
0: बस, तो आप हथौड़ा मारिए और नागेश्वर जी का खोपड़ी एकदम सही हो जाएगी। तो चलिए गाना सुनते हैं इसी के साथ।
1: बहुत मतलब तेज मारना है, धीमे नहीं मारना है,
0: वो जो रेलवे लाइन पे मारते हैं
1: हाँ।
0: समझ गई मैं,
1: एकदम वही मार दीजिए एकदम।
0: अध कपारी की जगह फुल कपारी हो जाए
1: हाँ, मतलब खुल कपारी।
0: तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा एनर्जेटिक सा गाना, पास नहीं तो फेल नहीं। टीचर से बोलना पड़ेगा कि अगर हम पास नहीं हुए तो हम फेल भी नहीं हुए ऐसा भी कोई कंडीशन आ जाता तो क्या हो जाता,
1: क्या हो जाता।

0: कई बार बच्चे क्लास में जाने के बाद उड़नछू हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उड़नछू होने से काम नहीं बनने वाला, टीचर ही होता है। हमारी गलतियों को वो पहचान ही लेता है। तो चलिए देखते हैं अगला कॉलर कौन है, हम भी टीचर बन के आपके कॉल को पकड़ ही लेते हैं। हेलो
1: जय जय राम।
0: शुभ संध्या, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम? जय श्री राम।
1: शुभ संध्या सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम?
1: हमारा शुभ नाम, आप यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं शायद वो लगभग जानते हैं।
0: लगभग मतलब मैं जहाँ तक जानती हूँ किसी का नाम लगभग तो नहीं होता।
1: अच्छा अच्छा, तो चलिए ठीक है, बता देते हैं। हमारा नाम आचार्य भोलानाथ तीर्थ है।
0: ओ, इतना खूबसूरत नाम और बताने में मतलब क्या, मतलब आप इतना
2: कम से कम इसी बहाने आपके मुंह से भोलेनाथ निकल गया।
0: भोलेनाथ, भोलेनाथ क्या कहना,
2: मतलब क्या नाम है जी, जैसा नाम है इनका भोलेनाथ वैसे ये भोले वाले।
0: क्या बात है, हाँ क्या बात है।
2: बहुत तो जी बिल्कुल जी, नमस्कार।
1: हाँ
2: जी जी, कुशल नहीं, यही दिक्कत है, कुशल मंगल नहीं हो पा रहा है।
1: अच्छा, आप कहीं आ रही है, हम भूल गए थे।
2: जी
0: शनिवार है। और ये बताइए भोलेनाथ जी, आपको क्या समस्या होगी? नाम इतना बढ़िया आपने रखा है, कम से कम
2: रखा है इनके माता पिता ने,
0: मतलब जिसने भी रखा है इसीलिए रखा होगा कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर साक्षात बनी रहे।
1: अच्छा, तो हम थोड़ा सा निवेदन ही कहीं, अभी डॉक्टर साहब ने एक सज्जन को दवाई बताई थी
2: जी जी
1: कुछ देर पहले
2: जी,
1: दिमागे रेशम सुप्रीम तेल पीने के लिए।
2: हाँ,
1: कि अगर वो पीने से दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाए।
2: हाँ,
0: क्या बात।
1: तो अब हम भाई चाहेंगे कि वो एमएल में आप बताए थे या लीटर में बताए थे पीने के लिए?
2: नहीं, लीटर एमएल में क्या जान पड़ेगा, एमएल में दूसरी चीज पी जाती है। ML में कुछ दूसरी चीज पे जाती है, वो सीसी में आती है। यहाँ राम, देखिए पंडित जी सुन जान गए, राम राम करने लगे और आप पूछ रहे हैं क्या
0: ML में तो दवाइयाँ आती हैं।
2: अब वही तो हम भी कर रहे हैं, अब उन्होंने पता नहीं क्या सोचा।
1: अच्छा, तो हम समझ नहीं पाए थे इसलिए कहा दोबारा कंफर्म कर ले।
2: हाँ, वही
0: लीटर में पीजिए और स्वस्थ रहिए।
2: लीटर में ही पीना है, मिली लीटर आप कैसे बड़े व्यक्तियों
0: के। अरे मिली लीटर ही मिलके लीटर बनाता है, ये भी सोच लीजिए कभी।
2: नहीं, वो बात ठीक है,
0: ML को भूल जाते हैं।
2: हम पैसे की बात करेंगे कि रुपए की बात करेंगे?
0: तो भी पैसे की वैल्यू तो नहीं भूलेंगे ना।
2: नहीं, पैसे की वैल्यू नहीं भूलेंगे, लेकिन इतने महान व्यक्ति के सामने अब हम मिली लीटर की बात करें, ML की बात करें, तो ये अशोभनीय है।
0: बिल्कुल सही,
2: ये एकदम जान लीजिए साक्षात ये कलयुग के भोलेनाथ है। उन्होंने विषपान किया था, ये एकदम पूरा जहर जो है दुनिया का पी सकते हैं। नाम नहीं।
1: अरे डॉक्टर साहब
2: जी,
1: आज शिक्षक दिवस है, तो इसी पर हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत जो कथाओं में बताते वो बता देते, बहुत छोटा सा
2: जी।
1: जी, हम लोग जो भागवत कहते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी कहते हैं, जो अभी आपने मुझे बताया मेरा विशेषण किया है नाम से, उस विशेषण के बारे में आपको छोटा सा सुझाव बताते हैं आपको
2: जी।
1: बहुत जल्दी में बताएं, क्योंकि आपके लिसनर कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए बहुत जल्दी में बताना चाहेंगे
2: जी।
1: कि कभी कभी लोग अपने गार्जियन, जैसे आप लोग हमारे गार्जियन से मान लीजिए आरजे हैं, गार्जियन से मार्गदर्शक हैं, तो इतना बड़ा विशेषण लगाए। ऐसी एक सज्जन थे, उनका एक बेटा था, बहुत जल्दी में बताएंगे समझ लीजिएगा, बेटा था। और उनका बेटा जो है तैराक बहुत था, तो वो हमेशा अपने बच्चे की इतनी तारीफ करते थे कि बहुत तैराक, कुएं में बहुत जल्दी डुबकी लगा के कोई सुई गिर जाए तो वो भी निकाल लाते हैं।
2: अच्छा,
1: तो एक जगह ये लोग बारात गए हुए थे।
2: हाँ।
1: अब पहले कुएं का जमाना था।
2: हाँ।
1: अब बारात में भी ये चर्चा हो गई कि भैया राम सिंह का लड़का बड़ा जो है एक्सपर्ट है पानी में उतरने में, कुएं में उतरने में बड़ा सूख से सूख छोटी से छोटी चीज निकाल लाता है
2: जी।
1: तो भैया आपकी सहयोगी जो आरजे है, मैंने नाम नहीं पूछा इसके लिए आई एम सॉरी, मैंने हम आपको माफ करते हैं कि आपने नाम नहीं बताया। तो हम कहेंगे कि जो है उन्हीं की तरह वहाँ जो है गांव में एक सहेली थी, और चर्चा सुन के उसके मन से रहा नहीं गया, वो भोर में पहले लोग जल भरने जाती थी सहेलियाँ
2: जी।
1: अब वो जल भरने गई, वहाँ हल्ला मचाए, मेरी नथनी कुएं में गिर गई, मेरी नथनी कुएं में गिर गई। अब भैया हल्ला हुआ, कुएं से नथनी निकालना बहुत अनिवार्य है। ये हुआ राम सिंह के बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ
2: जी।
1: अब भैया क्या करते, कुएं में कुदा दिया, कुएं में एक घंटे दो घंटे अब गणित बड़ी देर तक ढूंढ रहा, डुबकी मार के लड़का निकला ही नहीं। अब बहुत ने गांव वाले एक बुजुर्ग आए, बताया रे भैया किस कुएं में कुदा दिया, कुएं में तो खुजड़ा था, खुजड़ा समझते ना, बीच में कहीं कुआ टूट जाता है नीचे से। अब वो लड़का उसी के बीच में गया, उसी में दब गया, ऊपर से निकलने के लिए आता तो यहीं उसे दबा देती। उसी में सीताराम सीताराम बजने लगा वो, बस दो घंटे बाद सीताराम। जब बांस डाल के घुमाया गया तो सात शरीर निकल आया बेचारा। तो आप समझ गए ना
2: जी,
1: अधिक विशेषण का मतलब क्या होता है
2: जी, हम समझ गए।
1: संसार का पी जाने की क्षमता आप बता रहे हैं, और पता लगे ये कटोरी जो है दूध नहीं पी पा रहे हैं भोलेनाथ।
2: अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान क्या बात कर रहे हैं आप, एक कटोरी नहीं, आप एक लीटर दूध पी सकते हैं, हम जानते हैं।
1: चलिए हम दो लाइन आपके, आप लोगों के समाज, आपके लिसनर के 22 करोड़ द्वार तक निवेदन करेंगे
2: जी।
1: आपके बहुत अच्छे श्रोता है ज्ञान तरीके, और पूरे भारत देश से सुनते हैं, सभी को हम शुभ संध्या और जो है शुभ आशीष यथाउचित प्रणाम सभी को निवेदित करते हैं अपने मुखारविंद से। और ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए और हमारे ज्ञान असली के जो आरजे लोग हैं उनके लिए
2: जी।
1: और सभी देशवासियों के लिए पितुमात सहाय एक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिशय करुणा भूल धारे हो भूली है हम तो तुमको तुम तो भूली है हम तो तुमको तुम तो हमारी सुधिना बितारे हो। बस यही कहना कि जब कभी भी फोन करते हैं आप लोग तुरंत समझ जाते हैं, यही आप लोगों का बड़प्पन है हमारे लिए, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है
2: जी। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, और बहुत बहुत प्रणाम आपको।
1: अच्छा आज शनिवार है तो आप लोग उधर से भी कोई गीत सुनाते हैं?
2: हाँ हाँ इधर से गीत सुनाते हैं।
0: 7:45 से आप अपनी फरमाइश
2: सुन भेजिए।
1: अच्छा शाम उसके बाद में ठीक है, मैथिल मसाला में
0: जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत आप लोगों को, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं, शुक्रिया, शुभ आशीष।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही ज्ञान हम सभी को देते रहिए। तो भाई भोलेनाथ जी ने बहुत प्यारा सा ज्ञान दिया,
2: बहुत प्यारा ज्ञान दिया।
0: मुझे लगता है कि हम सभी को जब कुछ अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक गाना है मैं सुनाना चाहूँगी, क्योंकि एज अ आज जानते हैं कि हम लोग शिक्षक दिवस है, हर बच्चे का कहीं ना कहीं मैथ्स टीचर से या तो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है या बहुत ख़राब। तो मैथ्स टीचर्स के लिए एक गाना चलिए सुनते हैं, फिर बताइए कि आपका मैथ्स कैसा था, डब्बा गुल था या डब्बा फुल था। फिलहाल मेरा तो डब्बा गुल ही था।

0: अगर मैं पास हो गई तो छोड़ देगी स्कूल?
1: नहीं, पर अगर मैथ्स में तो मुझसे ज्यादा लंबा लिया ही, तो छोड़ दूंगी।
2: और इसी मैथ्स में डब्बा गुल के साथ हम लेते हैं आपसे फुल अलविदा। कल मिलेंगे फिर आपके साथ इसी ऊर्जा के साथ और करेंगे बहुत सारी बातें। तो डॉक्टर लव क्या कहना चाहेंगे चलते चलते?
3: जी बस हफ्ते की दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका इन सबको रखिए बचा करके और अगले शनिवार को आसमान वाले चाह तो फिर मिलेंगे
2: आप और आपको झटके ऐसे दिलाते रहेंगे नए नए गानों के साथ। तो चलिए इसी के साथ दीजिए आरजे बीना को भी इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए ऐसे ही एनर्जेटिक गानों के लिए, ज्ञान के लिए और अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए ऑन एयर, क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। और आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना एंड
3: डॉक्टर लव।

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर जो सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, आज का दिन है बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा खास। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, यू नो ना, आज है हैप्पी टीचर्स डे, वो दिन जो हमें याद दिलाता है उन सभी लोगों की जिन्होंने हमारी जिंदगी की कोरी सी किताब में सीख और समझ के रंग भरे हैं। जी हाँ दोस्तों, टीचर सिर्फ वो नहीं होते जो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, टीचर तो जिंदगी के हर एक मोड़ पर मिलते हैं ना। हर वो इंसान जो हमें कुछ नया सिखा के चला जाए वही होता है ना हमारा टीचर, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारे दोस्त हों, हमारे कलीग हों या फिर जिंदगी के तजुर्बे। दोस्तों, आज मेरे पास आरजे मनु का कॉल आया और उन्होंने बोला कि बेटा हैप्पी टीचर्स डे। मैंने बोला सर सेम टू यू, हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू सर, लेकिन सर मैं तो टीचर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा लेकिन मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है ना। और देयर वॉज लाइक कि हाँ सही, तो मतलब लव यू सो मच आरजे मनु सर, अगर आप सुन रहे हैं तो। सो ऐसा होता है, शिक्षक और गुरु किसी कोई मतलब लाइक ऐसे आसमान से नहीं आते हैं, ऐसे ही बनते हैं जो हमें कुछ सीख दे के चले जाएं। ऐसे ही महानता को अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी में क्या खूब पिरोया है दोस्तों, कि ऐ रोशनी ऐ तबा तू क्या जाने क्या है गुरु, ऐ रोशनी ऐ तबा तू क्या जाने क्या है गुरु, जर्रे को जो आफताब कर दे वो है गुरु। यानी जो एक छोटे से कण को भी सूरज की तरह चमका दे वही होता है एक सच्चा टीचर। तो आज का ये पूरा शो डेडिकेटेड है हमारे उन सभी मेंटोर्स को, उन टीचर्स को जिन्होंने हमें गिरकर संभलना और संभलकर उड़ना सिखाया है। दोस्तों, आप भी अपने पसंदीदा टीचर्स को याद कीजिए, उन्हें विश कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए इस शाम के खास खास खास माहौल में, आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली हमेशा की तरह लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि गीत आपके, शो आपका, ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही और जज्बात तो आपके रहते ही हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, नवीन राजपूत जी एमपी से, जुगल किशोर वर्मा एमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, सोनिया तिवारी गोंडा से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, सनी पांडे गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, निधि सीतापुर से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, शशि सिंह जी आपका भी स्वागत है गोंडा से, अंश कश्यप, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, मोहम्मद मुशीब जी बारा बंकी से और आकाश कुमार राजपूत आपका भी स्वागत है, नाजिया अंसारी स्टेट यूनिट, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, निम्बर जी रानी बाजार सुनहर गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत है। नाउ लेट्स गो टू पहले वाली फरमाइश की तरफ। और पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है, राजस्थान से उड़ती हुई आई है पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश है महेंद्र की, उनको सुनना है तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा। जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज में इंजॉय करते हैं चाइना गेट का ये सुपर डुपर हिट 90s का आइटम सॉन्ग, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

साधु छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पहचनिया। हम एंजॉय के है ये वाला गाना महेंद्र की फरमाइश पे जो की है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अभी फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, आशु मिश्रा जी की है लखनऊ से। और उनको सुनना है गाना हमें और जीने की चाहत ना होती अगर वो ना होते। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही रोमांटिक इसकी शब्दों को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। सो एंजॉय करते हैं आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। यही गाने हैं, यही नगमे हैं, यही वो गीत हैं जो आपके अर्जित सिंपल को पुराने गानों से जोड़ के रखी हैं, मतलब नए गानों की तरफ आने ही नहीं देती हैं। मेरी प्लेलिस्ट आप अगर सुन लोगे तो आपको लगेगा कि मेरा मतलब मेरा बर्थ 90s में ही हुआ है। 20s में तो कोई सोच ही नहीं सकता, अगर मेरी प्लेलिस्ट देख ले तो सोचेगा ही नहीं कि मैं 20s की बॉर्न हूँ। ऐसा लगेगा कि 90s 80s वाली हूँ, 70s भी सोच लेंगे लोग। स्टे ट्यून्ड।

0: तुम ना होते। हमने एंजॉय किया ये हाउ लवली वाला सॉन्ग, हमारी हाउ लवली आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है। सागर पिक्चर का गाना चेहरा है या चांद खिला है, और आप लोगों ने आज मेरी प्लेलिस्ट चोरी की है लग रहा है। आशु जी ने भी मेरी पसंद का गाना, जग्गू दादा ने भी मेरी ही पसंद का गाना। अभी देखते हैं अनुष्का की प्लेलिस्ट कैसी है, उसकी भी प्लेलिस्ट मेरी ही जैसी है, उसने भी पक्का मेरी प्लेलिस्ट से गाना चोरी किया होगा। क्या आपकी भी प्लेलिस्ट से किसी ने गाना चोरी किया है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

भाई क्या है, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, और सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश है जग्गू दादा की, ये तो फरमाइश थी जग्गू दादा की। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का का श्रावस्ती से कहना है कि आइए थोड़ा सा अगर हम लोगों ने मोहब्बत प्यार इश्क को ऐसे एकदम से आंख भर के देख लिया हो तो क्यों ना थोड़ा सा डांस फ्लोर पे आ जाएं। और अनुष्का ने श्रावस्ती से फरमाइश किया है यो यो हनी सिंह का गाना। जी हाँ दोस्तों, दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए शायद। सो एंजॉय करते हैं ये वाला तड़कता भड़कता सा नगमा, हमारी तड़कती भड़कती सी अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: दिल चोरी सारा हो गया, की करिए की करिए। और अनुष्का जी, आपने तो सच में अपनी आर्टिस्ट सिंपल नॉट सिंपल का दिल चुरा लिया है इस गाने की फरमाइश करके। बढ़ते हमारी आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं अगले फरमाइशी गीत के लिए, बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नवीन राजपूत जी का एमपी से कहना है कि मैडम जी कुछ नया होना चाहिए, क्या फोटो भेज सकते हैं, कुछ तो नया होना चाहिए। जी हाँ, मैं सर से, डायरेक्टर सर से जरूर बोलूंगी कि कुछ तो नया होना चाहिए। और हाँ, 2027 तक आपको कुछ तो नया जरूर डेफिनेटली मिल ही जाएगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना लता मंगेशकर जी की आवाज में गाना ओ बाबुल प्यारे। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा, ओल्ड इज गोल्ड नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेश त्रिपाठी फ्रॉम गोंडा।
1: बदमाश, खतरनाक और जालिम गुनाहगार शायद ही कोई हो। वो पैसे के लिए देश को बेचता है, आयाशी के लिए खून करता है। वो तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना।

इतना इमोशनल गाना, अब पता नहीं क्यों इसकी फरमाइश की गई थी, सोनिया तिवारी जी ने इसकी फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश करने के लिए। ओ बाबुल प्यारे, एक तो लता जी की आवाज़, ऊपर से इतना सुरीला नगमा, मतलब पापा और बेटी के रिलेशन का ये वाला गाना है। और सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ गाना नहीं था, ये शायद हर उस बेटी के दिल की पुकार है जो अपने बचपन का आंगन छोड़कर नए सफर पर निकलती है, मींस अपने ससुराल, और बाबुल का साया और वो पुरानी यादें, ओह माय गॉड, ये सब कुछ पल भर में समेट कर एक आंगन से हमेशा के लिए दूसरे आंगन में शिफ्ट हो जाना, आई डोंट थिंक इट्स ईजी, है ना? मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, इतना बड़ा दिल पर पत्थर, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, एंड लव यू पापा। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है गाना तू जंगल की मोरनी। सो एंजॉय करते हैं फिर से एक ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार मोहम्मद रफी जी की आवाज में और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से आपका स्वागत है, वो भी दिल से। स्टे ट्यून्ड।

मॉर्निंग चाकोर। राज साहब का ये वाला गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश जो है ना, उसको सुनने के बाद में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 440 वोल्ट के झटके लगने वाले हैं मुझे भी और आप सभी को। जी हाँ दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैंने प्यार कर दी है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट एनर्जी से भरपूर वाला नगमा। वैसे मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आप लोग को कैसा लगता है जरूर बताना। देख तो बजते ही ऐसा लग रहा है ना कि कितनी पॉजिटिव एकदम एनर्जी वाली वाइब्स आने लगी है। आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

पार्टी अमला बंगला दीवाना हमने एंजॉय किया है। ये टाइटल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर और उनका कुछ कहना भी है। दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी जी का कहना है कि मेरी फरमाइश पर आपने जो गीत सुनाया, अच्छा मेरी फरमाइश पर आपने जो गीत सुनाया उस पल ने दिल को बहुत करीब से छुआ है। गीत तो वही था मगर एहसास खास बन गया, आपने बजाया तो ये पल यादगार बन गया। थैंक्स अ लॉट मैम फ्रॉम धर्मेश त्रिपाठी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश

हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से, उनको सुनना है गाना नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, और अब प्यार हो गया है तब काहे पछता रहे हो भैया, अब तो चिड़िया खेत चुक चुके हैं, पूरी फसल खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बार हमने एंजॉय किया है ये गाना नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है हेलो ब्रदर पिक्चर की। जी हाँ, अगली फरमाइश है सनी पांडे की, उनको सुनना है गाना चांदी की डाल पर सोने का मोर और ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। से एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सलमान खान रानी मुखर्जी का नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आपने एंजॉय किया है ये वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी सनी पांडे की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से। उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना मैं जिसकी खातिर जा रहा हूँ। सो एंजॉय करते हैं बेवफा सनम पिक्चर का ये गाना अनुराधा जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत।

की खातिर जा रहा हूँ सारी दुनिया छोड़ के। हमने एंजॉय किया है बेवफा सनम पिक्चर का ये वाला गाना। पढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी उषा कश्यप जी की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना दिल तेरा दीवाना है सनम। सो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। निधि की फरमाइश पर स्टेडियम एंट्री।

मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम हमने एंजॉय किया मोहम्मद रफी लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनंग मा। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना। कितना प्यारा है ये चेहरा जिसपे हम मरते हैं, और ये ना पूछो कि इसे कितना कितना सारा प्यार करते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनंग मा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में राज पिक्चर का, और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ चलेंगे हम लोग हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे ना हमारे अपने फरमाइशी की महफिल में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आर्जिस सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि जब पेट भरा रहता है तो दिल ऑटोमेटिक खुश रहता है, ये मेरी मम्मी का कहना है। सो चलिए चलते हैं हम एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश और इस न्यूज वाली ब्रेक पर चलेंगे। मिलेंगे सीधे 9 बजे और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मैम आपसे एक सवाल है, आप ये गाने कहाँ फरमाइश प्रोग्राम अपने घर से करती हैं या ज्ञानस्थली स्टूडियो में आके करती हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर से आखिर कौन सा आरजे प्रोग्राम करता है, आप मुझे ये बताइएगा, और इसी क्वेश्चन में आंसर भी छुपा हुआ है। सो चलिए स्टे ट्यून एंजॉय करते हैं ये मेरे दिल के करीब रहने वाला बहुत ही खूबसूरत सनंगमा सिर्फ और सिर्फ के गुप्ता की फरमाइश पर। स्टे ट्यून, सारे गाने एक तरफ और सच में ये गाना एक तरफ। स्टे ट्यून

0: वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों बिहार पूर्वी राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
7: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
8: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
7: टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
9: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर के पर। ये फरमाइश थी राजू की सीतापुर से। बढ़ेंगे अभी फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी कि आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शमे गम टिमटिमाती रही रात भर, कोई खुशबू दयारे पना से चली, एक शम्माए नजर जगमगाती रही रात भर, याद के बेनिशां रास्तों पर फैस, कोई आवाज आती रही रात भर। सो रात का टाइम हो चुका है और आपके बाहर एक गजल का भी धीरे धीरे वक्त हो ही रहा है। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइशी गीत को। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से उनको सुनना है गाना, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लो 16 कबूतर रे। सो एंजॉय करते हैं दलाल पिक्चर का गुटुर गुटुर गाना, अलका याग्निक इला और उनकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6।

कबूतर रे हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा दलाल पिक्चर का कुमार सानू अलका याग्निक किलार अरुण की आवाज में सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर जो की है सिंचाई विभाग से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अंश कश्यप की, उनको सुनना है गाना हमको ऐसा वैसा ना समझो हमें बड़े काम की चीज। सो एंजॉय करते हैं अंश कश्यप की फरमाइश पर ये वाला गाना।

0: एक दिन हम गए जंगल माँ, अरे एक दिन हम गए जंगल माँ, वहाँ मिल गए हम का डाकू, ससुरा मिल गए हम का डाकू, किसी के हाथ में परछा भाला, किसी के हाथ में चाकू, हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस।
1: हम कहा बस, का कहा बस,
0: ऐसा हाथ जमाया तो गज धरती माँ गए धस धस धस। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम पड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा

0: अरे बड़े प्यार से उसने हमका दिया गुलाबी फूल।
1: हम कहा ही का दे थो हमका फूल, का दे थो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल भूल।

ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही अतरंगी सा गाना अमिताभ बच्चन का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी अंश कश्यप की, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की, उनको सुनना है गाना वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। सो एंजॉय करते हैं ये गाना मोहम्मद अजीज की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है ये बेवफाई वाला नगमा, बहुत ही सैड सैड सैड सॉन्ग। अंश कश्यप की फरमाइश पर बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इनके फरमाइशी गीत से मुझे अहमद फराज की नहीं, चलिए एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। गजलों का कारवां यहीं रहने देते हैं, नज़्में अभी सुनाने लग जाऊंगी तो बहुत वक्त हो जाएगा। बाहर एक गजल आ ही रहा है, अभी नज़्में सुनते ही रहेंगे आप सभी। सो एंजॉय करते हैं अब मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश जो कि है बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीफ जी को बाराबंकी से सुनना है गाना किस नाम से तुझको याद करूं। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: हो आप किसी बेगुनाह को बेहिसाब रुला कर गए हो आप। कर्म कभी तो आपके पास लौट कर आएगा, किसी को जिंदा मार कर गए हो आप। और इसी के साथ में एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश और लेती हूँ इसी के साथ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना प्लीज मत भूलना, नहीं तो ऐसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं जो भी नागेश्वर धाकड़ ने भेजा है कि किसी बेगुनाह को रुला कर गए हो आप, है ना। तो बेगुनाह को ऐसे रुलाते नहीं हैं, वो कर्म पता नहीं कब लौट के आएगा, जब लौट के आएगा ना तो बहुत गंदा तमाचा लगा के जाएगा। सो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और समवन स्पेशल का ध्यान बिल्कुल रखना। फिलहाल अभी चलती हूँ, कल नहीं मिलेंगे, सीधे मिलेंगे मंडे को। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। बाय बाय, मिलते हैं फिर से मंडे को। संडे को बहुत सारा मिस करना मुझे, बहुत सारा। बाय बाय। एंड हाँ, कर्म सच में लौट के आते हैं।
1: मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे इसका काम तो हो गया पर मैं तो अपना सेहरा लेके अभी तक भटक रहा हूँ। कोई है क्या, कहाँ है शादी लाल की शादी के लिए?

लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम

0: होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली। ये सिर्फ गोंडा की ही नहीं, अब बन चुका है हमारे आपके दिलों की धड़कन। जी हाँ, और आज का ये पावन सा पर्व है शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि द टीचर इज लाइक ए कैंडल विच गिव्स लाइट अदर्स कंज्यूमिंग इट्सेल्फ। यानी शिक्षक उस मोमबत्ती की भांति होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। कुछ वर्ष पहले जब यूपी बोर्ड का सिलेबस था तो एक पोएम थी हेनरी विवेन लुइस डेजियो, उनकी एक कविता है इंग्लिश लिटरेचर में जिसका नाम है टू द प्यूपिल्स। मतलब उन्होंने वो कविता ही वाज अ पोएट कम टीचर, वो एक अध्यापक होने के साथ साथ एक कवि भी रहे। तो उन्होंने कविता लिखी टू द प्यूपिल्स, विद्यार्थियों के लिए। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने लिखा, मुझे याद है उसका लास्ट स्टेंजा कि व्हाट जॉइंस रेंस अपॉन मी व्हेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूटिलिटी वेयरिंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन। आह देन आई फील I have not lived in vain। जब मैं ये देखता हूँ कि सफलता तुम्हारा मुस्कुरा कर स्वागत करेगी तो मेरे ऊपर खुशियों की बरसात होती है और मुझको लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाया। यही एक शिक्षक की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसको अपने से ज़्यादा बढ़कर कोई पोस्ट मिले, किसी अध्यापक का कोई विद्यार्थी उससे ऊंची पोस्ट पर पहुँचे, वो IAS हो, PCS हो, इंजीनियर हो, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, तो उसकी छाती चौड़ी होती है कि यस आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से किसी ने पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर्स बनाता हूँ, इंजीनियर्स बनाता हूँ, प्रोफेसर्स बनाता हूँ, सिविल सर्विसेज को करने वाले लोगों को बनाता हूँ, मैं म्यूजिशियंस बनाता हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न हुआ कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया, जी मैं पढ़ाता हूँ। कभी कौटिल्य ने कहा कि सृजन और विनाश ये दोनों अध्यापक की गोद में पलते हैं। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखता रहता हूं मैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से इसकी मुबारकबाद भी देता हूं। अब चलता हूं अपने कार्यक्रम की तरफ। जी हाँ, हमारे सत्यनील शास्त्री जुड़ चुके हैं दादा चरण स्पर्श। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, और साथ ही जुड़ चुके हैं भाई श्रीमती सविता शास्त्री जी भी। शुभ संध्या सर जी। जी, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपको और चरण स्पर्श। जी हाँ, शनिवार इस दिन की प्रतीक्षा हमें होती है क्योंकि कार्यक्रम होता है गजलें हमारी गीत आपके, तो गजल हमारी होती है और गीत आपके होते हैं। इन दोनों का संगम लेकर, इन दोनों का मिलन लेकर हम शनिवार की इस शाम को, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। गजल हमने आपको सुना दी है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। और वास्तव में जो व्यक्ति होता है जो बहुत ही एकदम गर्मी से व्याकुल हो रहा हो, उसको आवश्यकता होती है उस छांह की। तो आइए भाई, हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं, देखते हैं भाई आज पहले ही पहला सा गीत हमारी महफिल में किसका आने वाला है? जी हाँ, बात करते हैं। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: दर्द कुमार जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आपको। अरे आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रसन्न रहे।
1: हाँ, बस आपको खुद आशीर्वाद है, भगवान सदा खुश रखे
0: जी। तो आपको शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। आप हमारे श्रोता ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, तो पहले तो आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
1: आपको भी शिक्षक दिवस का शुभकामनाएं।
0: तो आज हमारी महफिल में कौन सा नगमा गूंजने वाला है?
1: अरे कल वो जन्माष्टमी था तो प्रोग्राम कल हो नहीं पाया
0: जी,
1: तो आज हम भगवान कृष्ण के ऊपर, उनके बर्थडे के ऊपर एक गीत है।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। तो जो कल नहीं हो पाया वो आज होगा। बहुत अच्छा।
1: ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके बिरज बाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, ओ तेरी राह तके बिरज बाला। ग्वाल बालक किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। ओ बड़ी दे बड़ी नंदलाला, तेरी राह तके बिजवाला। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना तट पे धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नटखट, क्यों दुबुदा में डाला रे। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, ओ तेरी रात थके बिरजवाला। संकट में है आज वो धरती,

0: गीता में जो वचन दिया, गीता में वो वचन दिया, कोई नहीं है तुझ दिल मोहन, भारत का रखवाला रे। वो बड़ी देर भई नंदलाला, वो तेरी रात तेज वाला, बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। वो बड़ी देर भई नंदलाला, वो तेरी रात तेज वाला। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राहत तक के बिजबाला। तो कल जन्माष्टमी नहीं हो पाई, तो आपको आज जन्माष्टमी की एक बार पुनः शुभकामनाएं। और आपने वास्तव में कार्यक्रम का आगाज शुरुआत बहुत प्यारे ढंग से कर दी। क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत ही प्यारा सा भजन और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में आपने गाया। जी हाँ, तो भाई अब ये हमारे साथ सुरेश कुमार जी थे, जिन्होंने गीत गाया बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक के बिजबाला। जी हाँ, और हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी उपस्थित हैं। आंसुओं का मजाक बना कर गए हो आप, किसी को बेगुनाह, किसी बेगुनाह का बेहिसाब रुला कर गए हो आप। कभी कर्म तो आपके पास लौट कर आएगा, किसी को जिंदा मार कर गए हो आप। जी हाँ, क्या पंक्ति है भाई। और हमारे साथ नाजिया बानो जी भी हैं, और इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं भाई जी शशि सिंह जी हैं। प्रणाम करते हैं आपको और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी अर्पित करते हैं। और अब देखते हैं भाई दूसरा हमारे पास, जी हम अपने दूसरे कलर से जुड़ते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: हरे प्रणाम, चरण स्पर्श आपको जी, आपका आशीर्वाद।
2: और बताएं
1: जी, आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
2: अरे शिक्षक आप हैं तो हमें बोलना चाहिए सर।
1: नहीं नहीं,
2: शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे शिक्षकों को
1: जी। मतलब आप लोगों के
2: गुरुओं को।
1: हाँ, हम गुरु हैं, लेकिन आप गुरुओं के गुरु हैं।
2: नहीं, गुरु आप हैं।
1: ये आपका बड़ा प्रश्न है। तो आज हम क्या सुनने वाले हैं अपने दादा से, जो हमको सुनते हैं।
2: मैं गुरु शिष्य के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा
1: जी,
2: कि गुरु शिष्य की जो पवित्रता है उसको बना के रखें। सारे शिष्यों से बोलूंगा, क्योंकि गुरु आदरणीय होते हैं, वो हमेशा उनका स्थान बहुत ऊंची होता है
1: जी।
2: तो मैं एक छोटा सा रफी साहब का एक गाना गाना चाहूंगा
1: जी,
2: चले से साथ मिलके।
1: क्या क्या क्या,
2: कोशिश कर रहा हूँ
1: जी। हम जानते हैं कि 100% कामयाब हो जाएंगे,
2: आपका आशीर्वाद लगे
1: जी। जी प्रार्थना लगे।
2: चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है नाना, क्या बात है, मतलब रफी साहब के बिना महफिल सुनी थी।
0: हाँ सर,
1: कह रहे रफी साहब के बिना ये महफिल सुनी सुनी सी थी।
0: अरे नहीं, हमारे पहले तो रफी साहब के सांग सुना गए।
1: जी वो तो मतलब जन्माष्टमी जो कल त्योहार बीता उसकी शुभकामनाएं आपको भी और उनको भी। और इसके पश्चात आपने बताया कि चले थे साथ मिलकर। वास्तव में रिश्ते ऐसे ही होना चाहिए जहाँ पर हम बहुत ही आदेश पूर्वक कह सकें कि तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। मतलब मेरी आवाज़ सुनकर आप मुझको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और क्या उनसे भी बात हो सकती है जिनके बिना आप पूर्ण नहीं हैं?
0: वो तो हमसे दूर हैं, मतलब आगे वाले कमरे में हैं।
1: हाँ तो उनसे कहिएगा,
0: सुन रहे होंगे हमारी बात तो।
1: जी
0: जरूर सुनाएंगे, पहले दुकानों को आप दीजिए जो लाइन में लगे।
1: जो श्री तेज नारायण शुक्ल जी हैं उन्होंने लिख दिया है, शानदार जानदार बंधु।
0: अरे उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और उनसे भी हम चाहेंगे कुछ गावें कुछ।
1: हाँ, आज मतलब कुछ आज शिक्षक दिवस है तो उनकी कुछ रचनाएं हम जरूर सुनना चाहेंगे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ प्रेरणादायक, कुछ ऐसा जो हम लोग बच्चों को बता सके, उनको इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सके। दादा चरण स्पर्श आपको। जी हाँ भाई, तो गजल के बाद ये बहुत ही प्यारा सा गीत, मैसा श्याम नाम की पगली है जी। माताजी चरण स्पर्श आपको और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मनु जी आपको भी। और आप तो हमसे वरिष्ठ शिक्षिका हैं तो हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें। और जी हाँ, तो आइए भाई, दो गीत हो चुके हैं, अब आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी गजल की ओर। मखमली आवाज, और जब मखमली आवाज की बात आती है तो सिर्फ मैं कहता हूँ कि मखमली आवाज मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ गजल की दुनिया में जगजीत सिंह साहब की है। फैज अनवर ने इस प्यारी सी गजल को लिखा, निखिल और विनय की प्यारी सी जोड़ी ने इसको संगीतबद्ध किया और जगजीत सिंह साहब ने इस प्यारी सी गजल को गाया। आइए अब आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह की एक प्यारी सी गजल और लौटते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। और तब तक श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपने खजाने को रखे तैयार, हम उनसे मिलेंगे इस प्यारी सी गजल के बाद। कार्यक्रम चल रहा है सैटरडे स्पेशल, गजलें हमारी गीत आपके। तो ये गजल आपको सुनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। सुनते रहिए और रेडियो गाना 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए फैज अनवर की लिखी हुई।

0: जी हाँ, शिक्षा। आज बात भाई, आज तो शिक्षक दिवस है और जिस शायर की हम बात करने जा रहे हैं वो स्वयं एक अध्यापक रहे लंबे अरसे तक, प्रोफेसर रहे, और उनका नाम हम सभी जानते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। उन्होंने एक शेर कहा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मका नहीं होता। तो उनसे पूछा गया था कि ये आपने किस रिफरेंस के तहत, किस मौजू के तहत इस बात को कहा। तो उन्होंने बताया कि मेरा ये उद्देश्य एक शिक्षक के लिए, वो जहाँ कहीं भी होता है वो अपने ज्ञान से अपने आसपास के समाज को देदीप्यमान करता है, उज्ज्वलित करता है, प्रज्वलित करता है। तो बात मुझे याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं, वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि आज आप दुखी लग रहे हैं, उनको उन्होंने मुशायरे में कहा कि मुझे एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाना नहीं आता। और इसके बाद उन्होंने एक प्यारी सी गज़ल पढ़ी थी, मुझे इस मौके पर वो याद आ गई क्योंकि वो स्वयं बहुत एक उर्दू अदब की दुनिया में उनका एक नाम है, मतलब उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को। उन्होंने कहा कि अपने चेहरे से जो जाहिर हैं छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। मतलब हर व्यक्ति डबल फेस नहीं हो सकता, कुछ होते हैं जिनको, जो रहते हैं अपनी मस्ती में अपना एक सा चेहरा लिए हुए। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर, मतलब ख्याल, कल्पना, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे, और कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। ये उनकी बहुत प्यारी पंक्ति है, हमारे पास कल आ चुका है श्रोता का, उनको भी लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक पंक्ति कही कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। उन्होंने कहा कि जो एक कतरा है, जो एक पानी की बूंद है, जिसको पता ही नहीं कि समुद्र क्या होता है, तो वो हमको नहीं समझ पाएगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि मेढक का कुआं, कुएं का मेढक, मेढक का अपना एक कुआं होता है। तो कहते हैं कि नदी में एक बार बाढ़ आई तो एक कछुआ जो मेढक था वो जाकर कुएं में गिर गया। तो वहाँ पर एक कछुआ मिला, पूछा कौन हो, तो उसने कहा भाई हमारी बिरादरी के लग रहे हो, कहाँ से आए हो, तो उसने कहा नदी से। नदी कितनी बड़ी होती है, क्या कुएं की आधी होता है, इससे बड़ी होती है, नहीं कहा इससे बड़ी होती है, कहा तीन चौथाई हिस्सा लिया, कहा इससे बड़ी होती है, कहा हाँ। फिर उसने कहा क्या इस कुएं से बड़ी होती है, तो उसने कहा हाँ। झूठ बोल रहे हो, हमारे बाबा यहीं पर जिए और मर गए, बताए कि यही दुनिया है, पिताजी यहीं पर रह गए, और आज तुम बता रहे हो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो गलत ना वो मेढक था, ना ये मेढक था, बस वो है कि उसने नदी देखी है तो वो जानता है कि पानी कितना हो सकता है, और ये कुएं में रहे हैं। तो वसीम अली साहब कहते थे कि अगर कोई आपको ना समझ पाए तो आप ये समझो कि वो एक कतरा है, और आप हो समंदर तो वो आपको इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो एक पानी की बूंद है और उन्होंने कभी शायद दरिया नहीं देखा। जी हाँ, अब चलते हैं भाई, मैं तुम्हारे पास कोई प्यारे से श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बातचीत। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: अरे नमस्कार आपको,
1: कैसे हैं आप?
0: जी हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
1: हैप्पी टीचर्स डे सर, मुझे बोलना था, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
0: जी नहीं नहीं, आपको भी, आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है तो।
1: अच्छा हमसे?
0: जी जी।
1: चलिए ये तो तारीफ के काबिल है फिर तो। लेकिन वैसे हमको पता नहीं कि आपने हमसे क्या सीखा है।
0: अब यही तो हम बताएंगे थोड़ी ना, तो फिर वो आप हमको सिखाएंगे नहीं।
1: चलिए वैसे कुछ चीजें राज रहे तो ज्यादा बेहतर है।
0: हाँ, ज्यादा बेहतर है कि क्या सीखा है।
1: जी सर, तो आज शिक्षक दिवस है तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट किया जाए।
0: जी अरे क्या बात है, मतलब
1: जी तो आपको डेडिकेट करते हुए ये सॉन्ग मेरी तरफ से।
0: बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि चलो भाई कोई हमें भी डेडिकेट करता है गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी इजाजत है?
0: अरे नहीं नहीं, निवेदन है।
1: जी सर।

0: प्रभु,
1: क्या बात है, क्या बात है। और ये बता दीजिए कि ये इस प्यारे से गीत की धुन किस फिल्मी गीत से ली गई है?
0: सर फिलहाल मैं झूठ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे ये तो नहीं याद आ रहा, बट तो सुना सुना सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई पुरानी सॉन्ग का जो किशोर दाजी ने गाया, मुझे ऐसा लग रहा है।
1: मतलब हम काफी, जब आप गा रही थी तो हम उस धुन तक सोच रहे थे।
0: जी सर, इसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, को कंपोज बहुत प्यारे तरीके से किया गया है, क्योंकि ये प्रेयर है एक, तो इसमें जो एक खासकर एक जो लाइन है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम,
1: जी हाँ,
0: और ये मुझे लगता है जिंदगी भर हर उस शख्स को याद रखनी चाहिए जिसने किसी से कुछ भी सीखा हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: है ना। चाहे वो रास्ते में मिला कोई एक शख्स हो, चाहे आपकी जिसने राह में मदद की हो, या उस स्कूल में, उस कॉलेज में, या फिर आपके घर में अपने बड़ों से, तो कहीं ना कहीं उनका सत्कार हमेशा करना ही चाहिए, तभी इंसान बड़ा बन सकता है।
1: तभी बड़ा बन सकता है।
0: क्योंकि किसी को नीचा दिखा के, किसी को झुका के, मुझे लगता नहीं कि अमीर तो बन सकता है लेकिन बड़ा नहीं बन सकता। तो
1: क्या बात कही आप, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अमीर हर इंसान बन सकता है लेकिन बड़ा बनने के लिए सत्कार करना पड़ेगा,
1: नहीं बिल्कुल,
0: उसके बिना
1: उन्होंने
0: तो कुछ पॉसिबल नहीं है।
1: एक पंक्ति है जो आपकी बात को साबित करती है। जे गरीब परहित करें ते रहीम बड़ लोग, कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो।
0: क्या बात है सर, क्या बात है।
1: मतलब ये
0: जी
1: बात उन्होंने लिखी, हमको तो सिर्फ अचानक उस मौके पर याद आ गया।
0: जी बिल्कुल, कबीर के दोहे तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: रहीम ने लिखा था इसको कि जे रहीम बड़े परहित
0: और
1: करें।
0: कबीरदास जी ने एक लाइन और कही थी,
1: हाँ
0: जो मुझे एक ही लाइन याद है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक।
1: अतिका भला न बरस न अति की भली न थूक। हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मतलब वास्तव में तो बड़ा वो होता है जो दूसरों का हित
0: मेरी
1: करे।
0: मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा धन से बड़े बन जाओ, जब मन से बड़े बनो तब बात
1: हाँ,
0: करो।
1: धन से इंसान अमीर हो सकता है, बड़ा होने में
0: हाँ,
1: टाइम लगता है।
0: बड़ा होना पड़ता है, तो ये चीज मैंने भी मम्मी से सीखी है।
1: बहुत प्यारी चीज सिखाई आपकी माता जी ने, और
0: जी
1: माँ बालक की प्रथम गुरु होती है।
0: वो तो मेरी हमेशा से रही है, लाइफ टाइम रही है और आगे भी रहेंगी,
1: जी
0: और इस मामले में तो मेरी मम्मी से बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई होगा।
1: नहीं, मतलब सबकी माँ उनकी प्रथम गुरु होती है और परिवार बालक की
0: बिल्कुल
1: प्रथम
0: बिल्कुल जी
1: पाठशाला होती है।
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूर्णिमा जी,
0: जी धन्यवाद, और शिक्षक दिवस की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको,
1: बहुत
0: क्योंकि आज
1: बहुत।
0: आपका दिन है।
1: नहीं,
0: जी
1: आप ये आप सभी करेंगे।
0: जी नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ भाई, तो अरविंद जी हैं मनकापुर से, हैप्पी टीचर्स डे मनुष्य जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सविता शास्त्री जी हमारी एकदम भाभी माँ की जैसी हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आज शिक्षक दिवस है तो कुछ उनसे भी सुने, बहुत प्यारा लगेगा हमको। सिर्फ ये दूसरों की बड़ाई करने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ आपके कंठ से निकलना चाहिए। और लिखा है भाई, नाइस अरविंद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पर हैं। और वास्तव में गुरु शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो गु माने अंधकार, जू माने प्रकाश। जो अंधकार को निकालकर प्रकाश भर दे वही गुरु। सिंपल सी परिभाषा। हम भारत देश में रहते हैं, भारतात ज्ञान रत मतलब लगा हुआ, जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ है वो भारत, और जो अंधकार को निकालकर प्रकाश भर दे वही गुरु। तो वो हर कोई हो सकता है। संस्कृत का एक श्लोक है कि उदेति सविता ताम्र ताम्र वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है, डूबते समय भी लाल रंग का होता है। तो वो ये बताता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप अपने असली स्वभाव को मत छोड़िए। उगते समय इस बात की खुशी है कि हम उग रहे हैं, और डूबते समय इस बात की खुशी है कि कल हमको फिर उगना है। मतलब सूरज सिखाता है, पेड़ सिखाते हैं, पत्ते भी भागते हैं, होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक। पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। बुरे इंसान में जल्दी कोई आपका साथ नहीं देता। जब पतझड़ आता है तो सबसे पहले पत्तियां ही पेड़ों का साथ छोड़ जाती हैं। जी हाँ साहब, तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमको लगता है वो बहुत अच्छी गुरु है। नदी बताती है कि बहता हुआ पानी नहीं सड़ता और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। जिंदगी अगर रुक गई, ठहर गई तो सड़ जाएगी। सब पर्वत हम इसको सिखाता है, धरती कहती है कि धैर्य होना चाहिए आपके पास। तो हम अपने चारों ओर नजर डालें तो सब तो गुरु हैं, कुछ ना कुछ तो हम सबसे सीख सकते हैं। हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, आइए अब चलते हैं फिर आपको लेकर एक बार गजलों की दुनिया में पुनः। और अब की बार गजल बहुत प्यारी है, जी हाँ, और दो गजलकारों ने मिलकर इस गजल को गाया है। जी हाँ, सुनिए ये गजल और लौटते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

0: गुड इवनिंग सर और हैप्पी टीचर्स डे।
1: हाँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
0: मैं रिवांशी पांडे बात कर रही हूँ।
1: जी जी प्रणाम, कैसी हैं आप?
0: सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस आपका।
0: और सर आप इतने बड़े हैं तो मुझे प्रणाम क्यों बोल रहे हैं?
1: अरे बड़ा वो है जो विनम्र है, मतलब आप हमको आशीर्वाद देंगे तो आपका कुछ आशीर्वाद हो सकता है हमको लग जाए।
0: हाँ सर, मैं तो हमेशा आशीर्वाद देती हूँ आपको।
1: हम प्रणाम नहीं करेंगे तो आप आशीर्वाद कैसे दे पाएंगे?
0: इसीलिए हम सर, लेकिन पता है गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए।
1: नहीं ठीक है, बिल्कुल
0: ढेर सारा।
1: हाँ,
0: और आज तो शिक्षक दिवस है और आप ना बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए मुझे।
1: नहीं बिल्कुल, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है
0: सर। और मैं एक पोएम भी सुनाना चाहती हूँ।
1: जी,
0: बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक हमें गुरु ही पढ़ाते हैं। रोज सुबह हम उठकर शिक्षा लेने जाते हैं, छोटी मोटी गलती करने पर लंबी चौड़ी डांट सुनाते हैं, बाद में फिर करियर की बात सुनाकर खड़े खड़े मुस्काते हैं। क्लास में कोई शोर मचाए तो जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं, प्यार से उसे पास बुलाकर दो चाटे जड़कर सही बैठने को बताते हैं। ये कर लो वो कर लो, ऐसा बन जाओ वैसा बन जाओ कि संसार की महान हस्तियों में छा जाओ। गुरु ही नहीं होते तो हम कुछ कर नहीं पाते, नाम अमर कहने की तरह दूर की बात, हम लोग अपना नाम ही भूल जाते।
1: क्या बात है भाई, क्या शानदार कविता लिखी और स्वयं लिखी है आपने।
0: यस सर।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा। और अपनी इस
0: सर मैं एक लाइन और बोलना चाहती हूँ कि गुरु ही एक शख्स को शख्सियत बना देता है, कि गुरु ही एक शख्स को शख्सियत बना देता है, गुरु ही एक इंसान को IAS ITS और डॉक्टर बना देता है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और
1: जी
0: सर मैं गुरु के लिए और एक बोलना चाहती हूँ कि जो अध्यापक होते हैं हमारे, वो एक सुनार की तरह होते हैं। जैसे सुनार सोने को खूब आग में तपाकर एक नया रूप देता है, जिसे दुनिया देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु भी हैं जो हमें ज्ञान रूपी भट्टी में तपाकर एक ऐसा रूप देते हैं जिसे दुनिया वैज्ञानिक विचारक और इंजीनियर का नाम देती है।
1: बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छे विचार हैं आपके।
0: सर अध्यापक एक साबुन की तरह भी होता है, जिस तरह साबुन हमारे शरीर के मैलों को काट कर हमारे शरीर को स्वच्छ करता है, उसी तरह अध्यापक भी है, हमारे अंदर के मैलों को दूर करके और हमें एक अच्छा इंसान बना देता है।
1: क्या बात है।
0: और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत प्यारे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं।
1: बहुत बहुत ये आपकी खुशकिस्मती है और आपके इस भाग्य को हम प्रणाम करते हैं।
0: जी सर,
1: बहुत अच्छा।
0: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं।
1: बहुत बहुत बहुत,
0: और उसमें से आप भी एक अच्छे बहुत अच्छे गुरु हैं।
1: बस ये आपका बड़प्पन है
0: सर, क्योंकि आप हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते, शो के जरिए बताते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान हम लोगों को देते ही रहते हैं। किताबी ज्ञान ना सही पर जिंदगी जीने का तरीका तो बताते हैं।
1: जी जी, वो आपको पहले से पता होता है, हम बोल देते हैं, आपको लगता है कि आपने कोई नई बात सुनी।
0: नहीं सर, गुरु जो बताता है ऐसा नहीं कि हम लोगों को पहले से पता, वो बताता है तभी हम लोग जान पाते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत प्यारी सी बात आपने की।
0: जी
1: सर, ओके सर, बाय। जी प्रणाम। जी हाँ कक्का जी, शुभंदा हो। शिक्षक पास मानिए खुद को लोहा मान, उसको छूते ही बने सारे कनक समान। घड़ी की सुइयां बता दी हैं कि आपसे अनुमत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान आसमान वाले ने चाहा। तो कल रविवार है, दोपहर को ठीक 1 बजे आपसे मिलते हैं ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।
2: नई उम्मीदें और एक ऐसा मिशन जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो कैंटीन में जाता है, बेहद हलचल है, कोई कॉफी ले रहा है, कोई खाना ऑर्डर कर रहा है। एडम अपनी ट्रे लेकर के एक टेबल पर बैठ जाता है। सामने 3 सीनियर सैनिक बैठे थे, माइक, जैक और लुइस। एडम मुस्कुराते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर, पहला हफ्ता है मेरा, कोई सलाह मेरे लिए? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माइक धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तीन बातें यहाँ हमेशा याद रखना। पहली, सूरज डूबने के बाद पहाड़ी के तरफ कभी मत जाना। दूसरी, अगर रेडियो अपने आप चालू हो जाए तो जवाब मत देना। और तीसरी, वो एडम की आंखों में देखता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम बुला रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। लेकिन एडम हंसते हुए कहता है, अरे ये सीनियर सर लोगों का रैगिंग का तरीका है क्या? मगर कोई नहीं हंसता। एकाएक बेस कैंप का गेट खुलता है। तीन काली गाड़ियां अंदर आती हैं। उन पर कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई निशान नहीं। 6 लोग उतरते हैं। सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे पूरी तरह ढके हुए। एक सैनिक फौरन सलामी देता है, लेकिन उनमें से कोई सलामी का जवाब नहीं देता। वो सीधे कमांडर के रूम में चले जाते हैं। एडम पूछता है, ये कौन है? माइक ने कहा, जिस दिन पता चल गया उस दिन या तो हमें प्रमोशन मिलेगा या तुम्हारा नाम इस रिकॉर्ड से गायब ही हो जाएगा। एडम धीरे से पूछता है, क्या ये CIA है? माइक धीरे धीरे सिर हिलाता है, लोग उन्हें यही कहते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनकी आंखें नहीं देखी। एडम की पहली रात थी, हवा चल रही थी। रात के करीब 2 बजे एडम की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके टेंट के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। वो घड़ी की तरफ फिर देखता है, 2:17 हो चुके थे। कदमों की आवाज रुक जाती है, फिर किसी के सांस लेने की आवाज बिल्कुल टेंट के बाहर। एडम धीरे से टेंट का जिप खोलता है। बाहर कोई नहीं, लेकिन रेत पर तो जूते के ताजा निशान थे, सिर्फ एक जोड़ी। वो निशान टेंट तक आए थे लेकिन वापस नहीं गए, जैसे जो भी आया था वो अंदर आ चुका हो। एडम घबरा कर पीछे मुड़ता है, टेंट खाली था, लेकिन उसके तकिए पर लाल धूल का एक छोटा सा निशान था। अगली सुबह रेडियो पे मैसेज आती है। ऑपरेटर कहता है, सर पास की पहाड़ी से फिर से संदेश आया है। कमांडर रेडियो उठाता है, पूछता है क्या हुआ। कुछ सेकंड सब कुछ स्टैटिक, फिर एक बुजुर्ग आदमी कांपती हुई आवाज में कहता है, उसे फिर देखा गया है। कमांडर एकदम गंभीर हो जाता है, किसे? रेडियो फिर शांत। कुछ देर बाद एक वाक्य सुनाई देता है, लाल धुंध फिर उतर आई है और सिग्नल अपने आप कट जाता है। पूरा कंट्रोल रूम एकदम खामोश। एडम ने तो पहली बार ये नाम सुना था, लाल धुंध। कमांडर धीरे से रेडियो नीचे रखता है, फिर सिर्फ इतना कहता है, सभी लोग 10 मिनट में ब्रीफिंग रूम में पहुंचे। कोई भी कोई सवाल नहीं पूछता। ब्रीफिंग रूम में टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, क्लासिफाइड। कमांडर फाइल खोलता है, पहला पन्ना, उस पे सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगर लाल धुंध दिखाई दे तो उसे देखने की कोशिश मत करना। एडम हैरानी से पूछता है, सर ये लाल धुंध क्या है? कमांडर कुछ क्षण चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आज भी हर रात नींद में चीख कर नहीं उठता। कमरे में इतना गहरा सन्नाटा छा जाता है कि सबको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। दोस्तों, अभी तक एडम ने सिर्फ एक नाम सुना है, लाल धुंध। लेकिन नाम सुनना और उसे अपने आंखों से देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अगले भाग में 7 सैनिक उस गांव की तरफ निकलेंगे जहां लोग दरवाजे बंद करके नहीं आईने ढककर सोते हैं, और जहां बच्चों को रात में अपना नाम लेने की भी मनाही है। क्यों, यही जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, क्योंकि डर अब धीरे धीरे आपके और करीब आने वाला है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। रात जितनी खामोश होती जा रही है, लाल धुंध का रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM का सबसे पसंदीदा लेट नाइट हॉरर शो। दोस्तों, अभी तक आपने सुना एक सैन्य बेस, एक रहस्यमय फाइल और एक ऐसा नाम जिसका जिक्र होते ही अनुभवी सैनिकों की आंखों में भी डर उतर आया था। लेकिन अब वो सात सैनिक उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद कोई खिड़की से बाहर भी नहीं देखता। सुबह के 9 बजे थे, लेकिन जैसे जैसे सैन्य गाड़ी पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी, धूप कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज जानबूझकर उस इलाके से दूर रहना चाहता हो। ड्राइवर कहता है, सर ये देखिए, सबकी नजर जीप के डिजिटल तापमान के मीटर पे जाती है। कुछ सेकंड पहले 18 डिग्री था और अब सिर्फ 1 डिग्री। माइक कहता है, ये मशीन खराब है क्या? ड्राइवर ने कहा, मशीन नहीं सर, ये इलाका ही खराब है। सभी हल्की सी हंसी हंसते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं टिकती। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। ऑपरेटर फौरन उसे बंद कर देता है, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। अब हर जीप के स्पीकर से आने लगती है। फिर उस शोर के बीच एक छोटी सी बच्चे की आवाज आती है, मम्मा मम्मा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एडम कहता है, किसने सुना? माइक ने पूछा, क्या अभी किसी बच्चे ने कुछ कहा? बाकी सैनिक सर हिलाते हैं, नहीं नहीं, हमें तो शोर सुनाई दे रहा था, नहीं हमें तो कोई कुछ बुला रहा था। एडम चुप हो जाता है। श्रोतागण, डर यहीं से शुरू हुआ क्योंकि उस जीप में हर इंसान कुछ अलग सुन रहा था। गांव पहुंचते हैं, दूर बकरियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज आ रही है, ठंडी हवा बह रही है, लकड़ी के दरवाजे चरमरा रहे हैं। करीब आधे घंटे के बाद वो गांव पहुंचते हैं, लेकिन गांव वैसा नहीं था जैसा उन्हें बताया गया था। न बच्चे, न जानवर, न कोई चूल्हा जल रहा था। हर घर का दरवाजा बंद था, हर खिड़की मोटे कपड़े से ढकी हुई थी, और सबसे अजीब बात, अगर घर के अंदर जाओ तो एक भी आईना कहीं नहीं दिख रहा था। एडम ने कहा, इतने बड़े गांव में एक भी शीशा नहीं। तभी एक छोटी सी लड़की ने दरवाजे के पीछे से झांका। वो एडम को देखती रही, फिर अपने होठों पर उंगली रख देती है और दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। गांव के बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसकी उम्र शायद 80 से भी ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखें किसी जवान इंसान से भी ज्यादा बेचैन थी। वो कोई और भाषा में बात कर रही थी, इसलिए इंटरप्रेटर ने उससे बात करनी शुरू की। कुछ देर बाद वो सैनिकों की तरफ मुड़ता है, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। कमांडर ने पूछा, क्या कहा उसने? इंटरप्रेटर धीरे से वो पूछ रही है, तुम लोगों में से किसी ने रास्ते में अपना नाम सुना था? एडम एकदम चौंक जाता है और धीरे से अपना हाथ उठा देता है। बूढ़ी औरत उसे देखती है, रोने लगती है और कांपते हुए उसके माथे को छूती है और फिर अपनी भाषा में एक ही बात बार बार दोहराती है। इंटरप्रेटर सुनकर जड़ हो जाता है। माइक ने पूछा, क्या कह रही है वो? इंटरप्रेटर धीरे धीरे एडम की तरफ देखता है। वो कह रही है, इसने एडम को चुन लिया है। अचानक हवा बहुत तेज हो जाती है। बूढ़ी औरत अब उनकी ही जबान में धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वो कभी पहले हमला नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, फिर तुम्हारा नाम सीखता है, फिर तुम्हारी आवाज और आखिर में तुम्हारा चेहरा। पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। एडम पूछता है, अगर कोई उसे देख ले तो? औरत कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, उस दिन से उसे आईनों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर एडम के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। एडम पानी की बोतल निकालता है, ढक्कन खोलते समय पानी जमीन पर गिर जाता है। गीली पट्टी में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, लेकिन कुछ बेहद अजीब था। बाकी सैनिक चल रहे थे, उनकी परछाइयां चल रही थी। एडम स्थिर खड़ा था, लेकिन गीली मिट्टी में उसकी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। एडम एकदम घबरा जाता है। वो नीचे झुक कर हाथ से पानी फैला देता है। परछाई गायब। माइक पूछता है, क्या हुआ? एडम कुछ नहीं कहता। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर है, बाकी घरों से एकदम अलग। उसके दरवाजे पर कीलों से दर्जनों लकड़ी के तख्ते जड़े हुए थे और उन तख्तों पर एक ही निशान बार बार उकेरा गया था, एक गोल घेरा जिसके बीच एक आंख बनी हुई थी। कमांडर पूछता है, ये किसका घर है? बूढ़ी औरत धीरे धीरे सिर झुका लेती है। यहाँ कोई नहीं रहता। फिर दरवाजा किसने बंद किया है? वो कांपती आवाज में बोली, ताकि वो अंदर ही रहे। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं। कमांडर आदेश देता है, दरवाजा खोलो। दो सैनिक लकड़ी के तख्ते हटाने लगते हैं। जैसे ही आखिरी तख्ता हटता है, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन अंदर एकदम घना अंधेरा था कि दिन के उजाले में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी उस अंधेरे में बहुत धीरे से किसी बच्ची के हंसी की आवाज सुनाई देती है। सातों सैनिक अपनी राइफलें एक साथ अंदर की ओर तान देते हैं। दोस्तों, उस कमरे के भीतर उन्हें क्या मिला? क्या सचमुच कोई बच्चा था या कुछ और, जिसने एडम का नाम पहले से ही सीख लिया था? कहते हैं उस दरवाजे के खुलने के बाद उन सात सैनिकों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले भाग में पहली बार लाल धुंध किसी के सामने अपना खेल शुरू करेगी। और यकीन मानिए, उसके बाद वापसी आसान नहीं होगी।

नंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा समंदर सारी दुनिया।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो। दोस्तों, अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा इस कहानी की शुरुआत में तीन चेतावनियां दी गई थी। सूरज ढलने के बाद पहाड़ की तरफ मत जाना, रेडियो अपने आप चालू हो तो जवाब मत देना, और अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन सवाल था, क्यों पूरे गांव के आईने ढके हुए थे? क्यों उस बुरी औरत ने एडम को देखते ही कहा था, इसने तुम्हें चुन लिया है? और आखिर उस बंद कमरे के अंदर क्या था जिसके दरवाजे को गांव वालों ने सालों से कीलों और तख्तों से बंद कर रखा था? दरवाजा अब खुल चुका था और अंदर से एक बच्ची के हंसने की आवाज आ रही थी। चलिए वहीं लौटते हैं, कमांडर ने अंदर टॉर्च डाली। रोशनी कुछ फीट आगे जाकर अंधेरे में खो गई। कमांडर ने कहा, माइक मेरे साथ चलो, बाकी सब लोग पीछे पीछे आओ। एडम ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसके बूट के नीचे कुछ टूटा। वो नीचे झुका, शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन उसमें एडम का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें। एडम ने टुकड़ा उलट दिया। माइक ने पूछा, क्या हुआ? एडम ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन श्रोतागण, एडम जानता था जरूर कुछ है, क्योंकि उसकी छोटे से शीशे में उसकी आंखें पलक झपका रही थी, जबकि एडम अपनी आंखों को नहीं झपका रहा था। कमरे के अंदर एक दीवार पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थी। धीरे धीरे अंदर रोशनी अपने आप आने लगी। गांव के लोग, परिवार, बच्चे, पहाड़, लेकिन हर तस्वीर में एक ही चीज अजीब थी। सभी लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे सिवाय एक छोटी सी बच्ची के। जहां उसका चेहरा था वो तस्वीर धुंधली सी थी। जैक कहता है, सर इसे देखिए। एडम रोशनी होने के बावजूद टॉर्च भी तस्वीर पे डालता है और जैसे ही वो बच्ची के कपड़ों को देखता है उसकी सांसें रुक जाती है। वो कहता है, ये तो वही बच्ची है। माइक पूछता है, कौन? वही जिसने मुझे बाहर देखकर चुप रहने का इशारा किया था। सब एक दूसरे को देखते हैं। कमांडर तस्वीर उतारता है। पीछे अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो बिल्कुल मिट चुका था, लेकिन तारीख बिल्कुल साफ 17th October 2003, और उसके नीचे सब्जेक्ट 4 फीमेल सर्वाइव्ड। पूरा कमरा शांत हो जाता है। इसका क्या मतलब है? गांव की बच्ची को सब्जेक्ट किसने लिखा? कमांडर कुछ जवाब नहीं देता। तभी एडम की नजर तस्वीर के पीछे बने एक चिन्ह पर जाती है, गोल घेरा और उसके बीच एक आंख, वही निशान जो इस घर के दरवाजे पर था। एडम को अचानक कुछ याद आता है। एडम कहता है, सर मैंने ये निशान पहले देखा है। कहाँ देखा तुमने? एडम धीरे से जवाब देता है, कल जो काले कपड़े वाले लोग बेस में आए थे उनके एक ब्रीफकेस पे। सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब पहली बार कमांडर के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सातों सैनिक एक साथ हथियार तान कर मुड़ते हैं। दरवाजे पे वही छोटी लड़की थी। एडम कहता है, तुम? लड़की तस्वीर की तरफ देखती है, फिर कहती है, ये मेरी माँ है। एडम ने कहा, लेकिन इस तस्वीर में तो तुम हो। लड़की सिर हिलाती है। नहीं, वो मेरी माँ है, जब वो मेरी उम्र की थी। सैनिक एकदम चुप हो जाता है। कमांडर तुरंत तस्वीर के पीछे लिखी तारीख दोबारा देखता है, 2003। कमांडर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की कमरे की ओर देखती है और फिर कहती है, वो लाल धुंध में कहीं चली गई थी। लड़की बताने लगी, 5 साल पहले हमारे पहाड़ पर लाल धुंध नहीं आती थी। फिर एक रात कुछ गाड़ियां आई, काले कपड़े पहने लोग थे, उन्होंने पहाड़ के अंदर कुछ किया। कमांडर ने पूछा, क्या किया? पता नहीं अंकल, लेकिन 3 रात तक पहाड़ के अंदर से सिर्फ आवाजें आती रही, वो लोग बाहर नहीं निकले। 4th सुबह धुंध नीचे आई, लाल, बहुत लाल। जो भी उसमें गया वो वापस तो आया, लेकिन कुछ बदल गया था। एडम ने पूछा, क्या? लड़की उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, पहले वो आपका नाम सीखती है। एडम का चेहरा बदल जाता है, फिर वो आपकी आवाज, फिर आपका चेहरा। कमरे में एकदम सन्नाटा, और फिर लड़की धीरे से आखिरी बात कहती है, और जब वो आपका चेहरा पूरी तरह सीख जाती है, तब किसी को पता नहीं चलता कि असली कौन है और नकली कौन। माइक अचानक पूछता है, इसीलिए तुम लोग सारे आईने ढक कर रखते हो? लड़की हाँ में सिर हिलाती है। आईना उसे सीखने में मदद करता है। एडम फिर पूछता है, और तुम्हारी माँ? लड़की चुप हो जाती है। उसके साथ क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद वो कहती है, एक सुबह माँ ने आईने में देखा, और आईने वाली माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरी माँ नहीं मुस्कुरा रही थी। माँ डर गई, माँ ने आईना तोड़ दिया, पर उस रात वो गायब हो गई। एडम लड़की के पास बैठ जाता है, और तो लड़की बेहद डरी हुई लगने लगती है। मैं उसे ढूंढने धुंध के अंदर चली गई। माइक पूछता है, तुम वापस कैसे आई? लड़की धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। फिर एक पल रुककर बताती है, लेकिन जब मैं वापस आई, तब से आईना मुझे नहीं दिखाता। कमरे के कोने में एक पुराना आईना कपड़े से ढका था। लड़की धीरे से उसके पीछे खड़ी होती है, कपड़ा हटाती है, कमरा दिखाई देता है, एडम दिखाई देता है, माइक दिखाई देता है, कमांडर दिखाई देता है, बाकी सब सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब के बीच खड़ी वो लड़की आईने में थी ही नहीं। जैक कहता है, हे भगवान। एडम डर के कदम पीछे हट जाता है, और तभी उसे आईने में कुछ और दिखाई देता है। वो अपना हाथ नीचे किए खड़ा था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा था। एडम चिल्लाता है, नहीं। आईने वाला एडम उंगली पर उंगली होठों पर रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गांव में उस बच्ची ने किया था। फिर आईने वाला एडम धीरे धीरे मुस्कुराता है, असली एडम मुस्कुरा नहीं रहा था। एडम चीखता है, आईना ढको। माइक कपड़ा फेंक कर आईना ढक देता है। उसी क्षण कमरे के बाहर हवा का भयानक झोंका आता है, और दरवाजे खिड़कियां सब हिलने लगते हैं। लड़की का चेहरा सफेद पड़ जाता है, कहती है, बहुत देर हो गई है। कमांडर ने पूछा, क्या? वो लड़की धीरे से कहती है, वो आ गई। सब बाहर देखते हैं, पहाड़ गायब हो चुके थे, गांव गायब, रास्ता गायब, चारों तरफ गाड़ी लाल धुंध फैल रही थी। गांव वाले चीखते हुए अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बूढ़ी औरत दूर से चिल्ला रही थी, अपना नाम मत बोलना, कोई बुलाए तो जवाब मत देना, और किसी भी चीज में अपना चेहरा मत देखना। लाल धुंध धीरे सब घरों के अंदर आने लगती है, पहले सिर्फ फर्श पर, फिर घुटनों तक, और उसके साथ आवाजें। माइल हर चौंकता है कि आवाज उसकी पत्नी की थी। जैक, जैक की आंखों में आंसू आ जाता है, ये उसके पिता की आवाज थी। फिर एडम सुनता है, एडम, एडम भैया। एक छोटी सी बच्ची, एडम की सांस रुक जाती है। एमा, मेरी बहन। लड़की तुरंत उसके मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है, जवाब मत दीजिए। खुद के अंदर से फिर से वही आवाजें आती है, भैया मैं यहीं रहती हूँ। एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहता है। फिर आवाजें बदलती है, अब वो एडम की अपनी आवाज थी। एडम पीछे देखो, मैं तुम हूँ। कमांडर चिल्लाता है, सब बाहर भागो, गाड़ियों तक पहुँचो। सातों सैनिक, लड़की भी साथ घर से बाहर भागती है। लाल धुंध इतनी गहरी कि सामने वाला इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो, एडम चिल्लाता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। एडम लड़की का भी हाथ पकड़ लेता है, तभी धुंध के भीतर उसे अपने ठीक सामने खुद का चेहरा दिखाई देता है। बस एक पल के लिए, वही यूनिफॉर्म, वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। एडम रुक जाता है, माइक कहता है, रुको नहीं, चलते रहो, वहाँ कोई नहीं है। कुछ देर के बाद धुंध से बाहर निकल आते हैं। गाड़ियों के पास पहुंचकर कमांडर चिल्लाता है, हेड काउंट। सब अपने अपने नाम बोलने ही वाले थे, लड़की चिल्लाई, नहीं नाम मत बोलना। कमांडर धीरे धीरे काउंट करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सांस। वो सब राहत की सांस लेते हैं, सब है, लेकिन लड़की पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो एडम ने अभी तक नहीं देखा था। एडम ने पूछा, क्या हुआ? लड़की कुछ नहीं बोलती है, बस एक एक सैनिकों को फिर से गिनती है, और इस बार 1 से लेकर 8 तक। सन्नाटा, कमांडर फिर गिनता है, इस बार उसका चेहरा भी बदल जाता है। वास्तव में उनके सामने 8 सैनिक खड़े थे। घबरा कर लड़की पूछती है, ये कैसे हो सकता है? घबरा कर एडम लड़की से पूछता है, ये कैसे हो सकता है? लड़की पीछे हटते हुए कहती है, आप लोग 7 अंदर गए थे, बाहर 8 आए हैं। प्यारे दोस्तों, 7 अंदर गए थे और 8 बाहर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि 8वां कौन था। सबसे बड़ा सवाल था, क्या उन 7ों में से किसी को पता था कि वो असली है? अब इस कहानी में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, एडम पर भी नहीं, क्योंकि जिस लाल धुंध ने उसका नाम सीख लिया था, उसकी आवाज सीख ली थी और आईने में उसका चेहरा पहनना शुरू कर दिया था, हो सकता है वो अब भी उस घर के अंदर ही हो। हो सकता है उन 8 लोगों में से किसी एक के रूप में बाहर आ चुका हो। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कुछ कहानियाँ सुनाई देती हैं और कुछ आपके साथ घर लौटती है। जल्दी ही मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी 89.6 FM पर। दोस्तों, अब तक शायद आपके मन में भी वही सवाल गूंज रहा होगा जो उस रात अफगानिस्तान की उस वीरान पहाड़ी पर वे सात लोग अंदर गए थे लेकिन लाल धुंध से बाहर निकले आठ, एक चेहरा, एक आवाज, एक शरीर ऐसा था जो उनमें से किसी का नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसे देखकर कोई ये नहीं बता पा रहा था कि वो कौन है। और अब उन्हें उसी के साथ बेस तक वापस जाना था या यही पता लगाना था कि आठवां कौन है। तो आइए आज की कहानी के आखिरी सफर पे चलते हैं। कमांडर कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आठों सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं। एडम था, माइक था, जैक था, लुइस था, रेडियो ऑपरेटर था, ड्राइवर था, कमांडर और एक और सैनिक। सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी, सभी के पास बेस कैंप का सही हथियार था, सही बैच था। और माइक तभी आठवें आदमी को घूरते हुए देखता है। तुम कौन हो? वह आदमी हैरान होके बोलता है, क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। कहता है, मैं डैनियल हूँ। कमांडर जैसे जब सा किया, डैनियल? हाँ सर। डैनियल ने अपनी जेब से टैग निकाला। उस पे साफ साफ लिखा था, डैनियल रीव्स। वो गुस्से में बोला, सर आपको क्या हो गया है? मैं सुबह से आपके साथ हूँ। कुछ सेकेंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर जैक ने कहा, हाँ डैनियल तो हमारे साथ ही था। माइक ने जैक की तरफ देखा, नहीं डैनियल नाम का कोई आदमी था ही नहीं। जैक चिल्लाया, था। लुइस बोला, हाँ मुझे भी याद है। अब डर सिर्फ आठवें आदमी से नहीं था, डर अपनी याददाश्त से था। छोटी लड़की फिर से धीमे धीमे बोलने लगती है, मैंने कहा था ना वो पहले नाम सीखती है, फिर आवाज, फिर चेहरा, फिर। लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई। लड़की के आंख में आंसू आ गए क्योंकि मुझे डर था। किस बात का डर था तुम्हें? वो डैनियल की तरफ देखते हुए बोली, जब वो चेहरा पूरा सीख जाती है तो वो आपकी यादों में अपनी जगह बनाने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब सब समझ चुके थे इसलिए कुछ सैनिकों को डैनियल याद आ रहा था और कुछ को नहीं। माइक ने कहा, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये असली कौन है? लड़की ने कहा, आईना। एडम एकदम चौंक जाता है, तुमने कहा था आईने में मत देखना। लड़की बोली, अपने आप को मत देखो, उसे देखो। ड्राइवर धीरे से जीप का साइड मिरर निकालता है। कमांडर डैनियल को उसके सामने खड़ा होता है। डैनियल घबरा के चिल्लाता है, सर ये पागलपन है। कमांडर ने कहा, आईने में देखो। मैं क्यों देखूं? देखो। डैनियल आईने की तरफ नजर करता है, कुछ नहीं। उसका चेहरा सामान सब राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी लड़की अचानक चिल्लाई, नहीं उसका चेहरा मत देखो, उसके पीछे देखो। एडम आईने में ध्यान से देखता है, डैनियल का चेहरा था लेकिन उसकी परछाई के पीछे सिर्फ लाल धुंध खड़ी थी। और सबसे अजीब बात, डैनियल सांस ले रहा था लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्थिर था। फिर प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कमांडर आईना नीचे कर देता है और उसी क्षण डैनियल की हंसने की आवाजें आने लगती है, लेकिन हंसी उसकी नहीं थी, पहले एक बच्ची की, फिर एक बूढ़ी औरत की, फिर माइक की और फिर कमांडर की और अंत में एडम की अपनी आवाज। डैनियल की आवाज आती है, मैं तुमको सबको जानता हूँ। कमांडर हथियार उठाता है लेकिन लड़की चिल्लाती है, गोली मत चलाना, तुम उसको नहीं मार सकते। डैनियल धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लाल धुंध फिर उसके पैरों के आस पास जमा होने लगती है और वो सभी की तरफ देखकर एक आखिरी बात कहता है, तुमने सिर्फ उसके चेहरे को पहचान लिया जिसे मैंने तुम्हें पहचानने दिया। और अगले पल धुंध उसके चारों तरफ भर जाती है। कुछ सेकंड बाद धुंध हटती है, डैनियल गायब, सात सैनिक फिर से सिर्फ साथ। माइक राहत की सांस लेता है लेकिन लड़की तुरंत उसकी तरफ देखती है और कहती है, उसने कहा जिस चेहरे को उसने पहचानने दिया, इसका मतलब समझते हो? एडम धीरे से समझता है, मतलब डैनियल सिर्फ हटकाने के लिए था। लड़की कोई जवाब नहीं देती और यही सबसे डरावना जवाब था। एडम उसके पास बैठता है फिर पूछने लगता है, तुम्हारे माँ के साथ भी यही हुआ था? लड़की सिर हिलाती है, माँ धुंध से वापस आई थी। एडम चौंकता है, तुमने तो कहा था वो गायब हो गई थी। हाँ वो बाद में गायब हुई, पहले वो घर वापस आई, मुझे खाना दिया, मुझे सुलाया, मेरे बाल बनाए, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। उसकी आवाज कांपने लगती है, लेकिन अगली सुबह मैंने देखा माँ आईने के सामने खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी, लेकिन आईने में माँ का चेहरा मेरी तरफ नहीं किसी और की तरफ देख रहा था। तभी मुझे समझ में आया, जो वापस आई थी वो मेरी माँ नहीं थी, तो फिर असली माँ कहाँ गई? लड़की पहाड़ की तरफ देखती है और कहती है, शायद आज भी वो वही है। सैनिक जब जीप से अपने बेस कैंप पहुंचे तो वो काले कपड़े वाले लोग फिर से आए हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। उनका मुखिया कमांडर के पास आया, उसने न गांव के बारे में पूछा न डैनियल के बारे में, उसने सिर्फ एडम की तरफ देखा और पूछा, रेडियो पर किसका नाम आया था? पूरा कमरा खामोश। कमांडर ने कहा, एडम। वो आदमी कुछ सेकंड एडम को देखता रहा, फिर टीम से बोला, फेस थ्री। एडम ने पूछा, ये फेस थ्री क्या है? कोई जवाब नहीं मिलता। बस उस आदमी ने एडम से कहा, आज रात किसी आईने में मत देखना। एडम पूछता है, आप लोग सब जानते हैं क्या, बताते क्यों नहीं? आदमी रुका फिर बिना मुड़े बोला, हम जानते हैं कि 5 साल पहले हमने पहाड़ के अंदर कुछ खोजने की कोशिश की थी। क्या? एक लंबा विराम। फिर वो काली ड्रेस वाला आदमी बताने लगता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में हमें लगा कि वो इंसानी दिमागों की यादों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमने कुछ बनाया नहीं था। वो पहली बार एडम की तरफ मुड़ा, हमने सिर्फ उसे जगा दिया। उस रात एडम अपने कमरे में अकेला था, हर आईना ढक दिया, खिड़की के शीशे पे कंबल डाल दिया, स्टील का ग्लास तक उल्टा रख दिया। रात के 2:17 वही समय जब पहली रात उसके टेंट के बाहर कदम रुके थे। एडम बिस्तर पे बैठ गया, फिर रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसको अपनी आवाज आई, एडम एडम। वो जवाब नहीं देता है, एडम आईना मत देखना। फिर भी वो चुप रहता है और फिर हंसी की आवाज आती है, क्योंकि मैं पहले इस तरफ हूँ। उस क्षण कमरे के कोने में ढके हुए आईने पर पड़ा कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। एडम अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे आईने में अपनी ही आवाज सुनाई देती है, एडम आंखें खोलो। इस पोस्टिंग के बाद एडम के 12 साल बीत गए। उस रात एडम के कमरे में क्या हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अगली सुबह वो जिंदा मिला बिल्कुल सामान। कुछ महीने बाद उसने सेना छोड़ दी, शादी की, एक बेटी हुई और उसने उस घटना के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, बस अपने घर से सारे आईने हटवा दिए। एक रात उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, बोली, पापा। हाँ बेटा, आप आईने से इतना डरते क्यों हैं? एडम मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी आईना वो दिखाता है जो हमें नहीं देखना चाहिए। बेटी बात नहीं समझ पाती और हंस देती है, लेकिन पापा आज मैंने आपको आईने में देखा। एडम का चेहरा बिल्कुल जम गया, कहाँ? स्कूल से जो छोटा आईना लाई हूँ उसमें? लेकिन आप तो बहुत अजीब लग रहे थे। एडम की सांस धीमी हो गई। कैसे? लड़की ने बहुत मासूमियत से कहा, आप कमरे में मेरे पीछे खड़े थे पापा, लेकिन आईने वाले पापा तो नहीं खड़े थे, वो मेरे सामने खड़े थे। एडम दौड़ कर छोटे आईने के पास पहुंचा, आईना टेबल पर पड़ा था। वो उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नजर पड़ गई। आईने में एडम था, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें। एडम ने अपना हाथ उठाया, प्रतिबिंब ने भी हाथ उठाया। एडम ने हाथ नीचे किया, प्रतिबिंब ने भी हाथ नीचे किया, कुछ नहीं हुआ। एडम ने राहत की सांस ली और आईने से दूर जाने के लिए पीछे मुड़ गया। जैसे ही असल एडम ने आईने की तरफ पीठ की, आईने वाला एडम वहीं खड़ा रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। उस रात अफगानिस्तान के उस गांव में 7 सैनिक अंदर गए, 8 बाहर आए। उन्होंने 8वें को पहचान भी लिया और

सचमुच एडम था। आज रात जब आप अपने कमरे में की लाइट बंद करें और किसी आईने के सामने से गुजरें, तो अपना चेहरा देखकर कुछ मत कीजिएगा, बस एक कदम आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए और आपका प्रतिबिंब वहीं रुक गया तो पीछे मत रुकिएगा। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे थे 89.6 एफएम पर लाल धुंद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए खौफ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आज रात कोई आपकी आवाज में आपका नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत दीजिएगा। शुभ रात्रि अगर नींद आ जाए।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कहीं दोस्ती की वफा है तो कहीं सत्यम शिवम का शोर, इनके बिना हर महफिल अधूरी, हर साज लगता है बेनूर।
2: मेलोडियन की वो प्यारी तान और वायलिन का वो मीठा शोर खींच ले जाता है हमें फिर से बीते सुनहरे दौर की ओर। एक लक्ष्मी की धुन तो दूजे प्यारे का सांझ निराला था, इन्होंने तो हर टूटते दिल को अपने संगीत से सवारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो चलते हैं रात के सफर में आज बहुत ही दो प्यारे से हमारे अनमोल सितारों को लेकर के, जिनके सफर में आज हम बताने वाले हैं उनके कुछ बीते लम्हों को और कुछ गानों के पीछे की कहानियों को। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर भूले बिसरे गीत जो रात के सफर में है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि दोस्ती अगर किसी से हो जाती है तो वो इस जन्म की मुझे लगता है कि नहीं होती है, वो दोस्ती होती है हमारे काफी पुराने जन्मों की। कुछ ऐसी ही मिसाल इन दोनों की दोस्ती ने करी, कुछ ऐसी मिसाल जो कि हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हम सब बताएंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कैसे बनी। बिल्कुल, इन दोनों की मुलाकात किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मैच के फील्ड में हुई थी। प्यारेलाल जी अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे। लक्ष्मीकांत जी ने आकर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। बस फिर क्या था, वहीं उनकी दोनों की शुरुआत हुई और मुलाकात। कह सकते हैं कि दोस्ती की मुलाकात या शुरुआत उसी समय, लक्ष्मीकांत जी करीब 15 साल के थे और प्यारेलाल जी मात्र 12 साल के। ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये दोस्ती की मिसाल बनने के लिए ही इन दोनों को ईश्वर ने मिलवाया था। और शायद आज उनकी जोड़ी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कि कोई न भूलने वाला कुछ ऐसा फूल हो। जैसे हम कई बार कभी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है, गुलाब के फूल पे, है ना। तो ठीक वैसे ही इन दोनों जोड़ियों के लिए हम गुलाब की दोस्ती को कायम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा

0: अभी आपने सुना आरजे ख्वाहिश की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। क्यों आरजे ख्वाहिश?
1: बिल्कुल आरजे गुमसुम, और ये गाना आज बड़ा ही बेहद सुरीला सा लगा। वैसे कभी कभी हम लोग कभी जाते हैं ना तो सफर के दौरान सुनते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा ही मजा आ गया।
0: यही तो बातें होती है पुराने गानों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर्स, कि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है कि हमारे स्ट्रगल में कोई ना कोई हमारा साथ दे, हमें आगे बढ़ाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जीवन में इस रोल को अदा किया हमारी हम सभी की प्यारी लता मंगेशकर जी ने। लता जी ने इन्हें आगे बढ़ाया, बहुत साथ दिया इनका। लता जी ने ही कोलाबा के रेडियो क्लब में लक्ष्मीकांत जी को मेडोलिन बजाना सिखाया। उनके हुनर से वो बहुत ही प्रभावित थीं। लता जी को उनका मेडोलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने ही इन दोनों को संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में दाखिला भी दिलाया। इतना ही नहीं, लता जी उस वक्त बड़े संगीतकारों से इनकी सिफारिश भी करती थी ताकि इन्हें काम मिल सके और इनके हुनर को पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल, तो आपने सुना ना कि किसी न किसी एक मेंटोर को होना जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जो कि दोनों ने फिल्माया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और जिनका साथ दिया था हम सबकी स्वर कोकिला लता जी ने।

कहते हैं कि हर किसी के नाम के आगे कोई न कोई ऐसी पहचान जुड़ी हुई होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। नाम का अर्थ अगर हम जान लें तो उसके बारे में पूरी ही पूरी उनके जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। और बिल्कुल हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। लक्ष्मीकांत जी के नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है, आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। साथ ही साथ प्यारे लाल जी के नाम के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि हमें जब सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तब हम उनके घर में निकनेम रख देते हैं, यानी कि उनके घर का नाम। आजकल सभी के घर का नाम कुछ न कुछ है। निकनेम मतलब छोटा किसी का नाम का स्वरूप। ऐसे ही प्यारे लाल जी का जब नाम पड़ा तो वो घर में सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, इसीलिए आज तक उनके नाम के आगे प्यारे लाल फेमस हो गया। एक बार प्यारे लाल जी विदेश जाकर म्यूजिक सिखाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें बड़े भाई की तरह समझाया कि हम एक साथ कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, और प्यारे लाल जी रुक गए। और फिर क्या था वो तो आप सभी को पता ही है। इनकी जोड़ी के तौर पर पहली रिलीज फिल्म पारसमणि, जो कि 1963 में आई थी। इनके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी वो सबके दिलों में छाया हुआ है। और एक गीत और भी था जो वो जब याद आए, ये जबरदस्त हिट हुए थे दोनों सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

इस जोड़ी ने 1963 से 1998 के बीच करीब 635 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, हम सबका फेवरेट 1 2 3 तेजाब मूवी का ये गाना, जिसमें की धुन जो दी थी वो दी थी लक्ष्मीकांत जी ने। और ये गाना उन्होंने कहाँ सुना आपको पता है? ये गाना उन्होंने गणेश पंडाल में बजते हुए सुना था और फिर उन्होंने इसे डमी लिरिक्स में लिखा और जावेद अख्तर जी को सुनाया। जावेद अख्तर जी को ये बहुत ही पसंद आया और उसके बाद उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। 1964 की फिल्म दोस्ती ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा संगीत।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी, ये नाम भी उनकी जोड़ी की बहुत बड़ी उपलब्धि के बाद ही उन्हें मिले। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इनके बनने और सफलता इन दोनों की कहानियों में किसी एक पटकथा से कम नहीं है। मोहम्मद रफी के साथ इनका रिश्ता सबसे ज्यादा और सबसे अहम जोड़ी के नाम पर माना जाता है। 1998 में लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद ये ऐतिहासिक सफर खत्म हुआ, लेकिन प्यारेलाल जी ने आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा हुआ है। दोनों ही बेहद करीब परिवारों में से एक और संगीत के जरिए अपनी किस्मत को संवारने वाले थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे तो प्यारेलाल जी की धुन अपने आप बन जाया करती थी। बस तब क्या था, आप उनकी जोड़ी के संगीत और उनके गानों को आज भी दिल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से एक और गीत को।

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। जहाँ लक्ष्मीकांत जी गानों की धुन बनाते थे और गायकों के साथ काम करते थे, वहीं पर प्यारे लाल जी को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और उन्हें अरेंज करने का बहुत शौक था और वो इसमें बहुत माहिर भी थे। वे लगभग अपने सभी गानों में वायलिन जरूर बजाते थे और इसी के लिए बहुत मशहूर भी थे। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।